एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ पलों में समाचार हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से, और समाचारों के तुरंत बाद आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय

0: एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम अभियान शामिल है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपये तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान NMBA के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता के एक अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती वंदन वार।

चिंतन, आपका लक्ष्य किसी जादू से पूरा नहीं होगा, बल्कि आपको ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना होगा। ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, झरोखा। सुनिए विविध भारती से दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का लिखा जोखा। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचंद्र।

कृत मानस गान आज भाग 222 गजतत वाद्य संगीत सरिता में चल रही है ये श्रृंखला। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक। आज इस श्रृंखला की छठवीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। सुबह 7 बजे भूले बिसरे गीत, 7:30 पर हम हैं रही प्यार के, सुबह 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 पर त्रिवेणी, 8:30 पर आप सुनेंगे चित्रलोक, 9:30 पर केंद्रित है आज के फनकार कार्यक्रम। ये कार्यक्रम सुबह 9:30 पर और रात 9:30 पर सुना जा सकता है। सेल्युलॉइड के सितारे कार्यक्रम में सुबह 10 बजे अभिनेत्री वहीदा रहमान से कमल शर्मा की बातचीत का दूसरा भाग प्रसारित किया जाएगा। दिन में 11 बजे रंग तरंग, 12 बजे हिंदी में समाचार, 12:05 पर यादों की महफिल, 1 बजे सुरीला सफर, 2 बजे त्रिवेणी, 2:15 पर दोपहर समाचार, 2:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार नगमे।

तीन बजे से की सहेली कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस, इस पर चर्चा, डायरी लिखने की आदत, साड़ियों का संसार, आज बांधनी साड़ी की बातें होंगी, शब्द हमारा, विचार आपके,

तीन बजे से की सहेली कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस, इस पर चर्चा, डायरी लिखने की आदत, साड़ियों का संसार, आज बांधनी साड़ी की बातें होंगी, शब्द हमारा विचार आपके, आज का शब्द है प्रोत्साहन। आज का कार्यक्रम ममता सिंह और मंजरी वर्मा के साथ, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। शाम 4 बजे आज के मेहमान कार्यक्रम में अभिनेता विजय राज से कमल शर्मा की बातचीत सुनवाई जाएगी। शाम 5 बजे छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने, 6:35 पर संध्या रंजन कार्यक्रम होगा, 7 बजे जयमाला, 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग, रात 8 बजे हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा नाटिका मेनू कार्ड, मूल कहानी ओ हेनरी की है, रेडियो नाट्य रूपांतरकार मुरली मनोहर जोशी, निर्देशक मुख्तार अहमद, 8:15 पर सुनिएगा चित्रलोक। रात 9 बजे आपके लिए कार्यक्रम होगा, 9:30 पर अभिनेता मोतीलाल पर केंद्रित आज के फनकार। रात 10 बजे छाया गीत, 10:30 पर ढलती जाए रात और रात्रि 11 बजे रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

राजा जनक के दूत चित्रकूट आ पहुंचे हैं। वशिष्ठ जी ने उनसे राजा जनक का कुशलक्षेम पूछा तो दूत आदर तथा संकोच से नतमस्तक होकर बोले, आपका आदर के साथ पूछना ही कुशल हो गया मुनिवर, नहीं तो कुशलक्षेम तो अयोध्यापति के साथ ही लुप्त हो गए थे। उनके जाने के साथ ही सारा जगत, विशेष रूप से कोशल और मिथिला अनाथ हो गए थे। भरत को राज्य और श्री राम को वनवास, ये सुनकर मिथिलापति का दुख और भी अधिक हो गया। जनक जी ने भरत जी की वास्तविकता जानने के लिए अपने गुप्तचर अयोध्या भेजे। लौटकर गुप्तचरों ने अपनी बुद्धि के अनुरूप स्थिति का वर्णन किया, जिसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच तथा स्नेहवश व्याकुल हो गए हैं। और अब जनक जी अपने सभासद तथा कुटुंबियों समेत चित्रकूट पधार रहे हैं।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: गज तत् वाद्य प्रस्तुत है गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक।
1: श्रोताओं, आज हम गज से बजाए जाने वाले एक और वाद्य दिलरुबा पर बात करेंगे। इसके नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि यह मुगल कालीन वाद्य है, किंतु मुगल कालीन वाद्यों में इस नाम का अथवा इसके स्वरूप से साम्य रखने वाला कोई वाद्य दिखाई नहीं देता है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक के ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं है, अतः स्पष्ट है कि इस वाद्य की रचना आधुनिक काल में ही की गई है। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति का आधार सारंगी मानते हैं। सुविधा युक्त गज वाद्य की आवश्यकता होने के कारण इसका निर्माण किया गया। यह भी संभव है कि इसराज की मृदु ध्वनि को गंभीर बनाने की दृष्टि से इसराज में ही कुछ परिवर्तन किए गए हों, फलस्वरूप दिलरुबा वाद्य की उत्पत्ति हुई हो। इस संभावना को भी अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक प्रचलित ताउस वाद्य के नीचे लगे मयूर वाले भाग को हटाकर उसके स्थान पर सारंगी का मंथान अर्थात नीचे वाला भाग लगाकर इसका निर्माण किया गया हो। उत्पत्ति का कारण जो भी रहा हो, किंतु यह सत्य है कि दिलरुबा वाद्य सितार और सारंगी का मिश्रित रूप है। दिलरुबा वाद्य 3 आकार में प्रचलित है। आकार के अनुसार ही कुंडी और दांड का नाप रखा जाता है। दिलरुबा में 19 पर्दे होते हैं, जिन्हें आवश्यकता अनुसार थोड़ा सरकाया भी जा सकता है। इसमें मुख्य 4 तार होते हैं। कुछ दिलरुबा में 6 तार भी लगाए जाते हैं। इसमें 20 अथवा 22 तरबों को लगाया जाता है, जिन्हें राग के अनुसार मिलाते हैं। कुछ कलाकार तरबों को अचल थाट में रखते हैं। दिलरुबा के तार अलग अलग पद्धति से मिलाकर वादन करने का प्रचलन रहा है, फिर भी सामान्यतः इसके बाज के फोलाद के तार को मंद्र सप्तक के मध्यम में, इसके बाद के फोलाद के तार को मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर में, तत्पश्चात के पीतल के तार को अति मंद्र सप्तक के पंचम स्वर में और अंतिम पीतल के तार को अति मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर में मिलाते हैं। तरबो हेतु पीतल के तार प्रयुक्त करते हैं। ऊपर आड़ के पास तरब के 5 तार

शेष तरफ के तार दान के बाजू में लगाने का प्रचलन है। कुछ कलाकार इसको घुटने पर रखकर या गोद में रखकर बजाते हैं। इसकी कुंडी वाला भाग नीचे रहता है। दाहिने हाथ में गज को पकड़ा जाता है। यह गज तारों पर घर्षण करते हैं। दान के पीछे की ओर बाएं हाथ का अंगूठा रखा जाता है और आगे की तरफ से तर्जनी, मध्यमा और अनामिका अंगुलियों से कर्ण, खटका, मुरकी, गमक और घसीट के साथ विभिन्न स्वर निकाले जाते हैं। दिलरुबा के नाम से स्पष्ट है कि हृदय को मोहित करने वाला एक सुंदर, मधुर और आकर्षक वाद्य है। किंतु दुख की बात है कि अब इसका प्रचलन कम होते जा रहा है। अब इसे दुर्लभ वाद्यों की श्रेणी में रखा जाता है। लगभग 50 वर्षों पूर्व दिलरुबा पर पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड का साउंड बॉक्स व हॉर्न लगाकर तार शहनाई वाद्य की रचना की गई। अब हम श्री विनायक बोरा का तार शहनाई वादन सुनते हैं।

अभी आप श्री विनायक वोरा से तार शहनाई पर बजाया राग अहीर ललित सुन रहे थे। गज तत् वाद्य, गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की ये थी अंतिम कड़ी। कलाकार थे डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति सहायक थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारुबाला खरे। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल की सौजन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है
0: 21

0: आइए सुने भूले बिसरे गीत। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आज मौसी फिल्म का गाना सुनवा रही हैं, कम सुना गाना। मौसी फिल्म का एक गाना आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, ये
1: टिम टिम टिम तारों के दीप जले नीले आकाश तले।
0: लेकिन आज के कार्यक्रम का आगाज इस गाने से करते हैं, आशा भोसले की आवाज, भरत व्यास के बोल, संगीत वसंत देसाई का। ये फिल्म सन 1958 में आई थी।

बोलिए फिर से गीत कार्यक्रम में अब प्रदीप जी की आवाज़ गूंजेगी। नागमणि फिल्म का ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: नागमणी फिल्म का ये गीत गीत और रॉय की आवाज में था। प्रदीप जी की आवाज वाला संस्करण फिर कभी आपको सुनवाएंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि इस गाने को कवि प्रदीप ने लिखा और संगीत अविनाश व्यास का था।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद हुए हैं, जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से भूले बिसरे की

0: के मत जाना, तुम रूठ के मत जाना, मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना, मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना।
1: फागुन फिल्म का ये गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में था। कमर जलाल आबादी के बोल थे, संगीत ओपी नैयर का था। अब कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक की बारी है, ब्रेक के उस पार कुछ और गाने हैं।

लता मंगेशकर की आवाज में पिया मिलन फिल्म का गीत अभी आपने सुना। हसरत जयपुरी के बोल थे, संगीत रमेश का था। मोहम्मद रफी और गीता रॉय की आवाज में 12 o'clock फिल्म का गाना। मजरू सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर की तर्ज।

0: साधना फिल्म का गीत की तरह की आवाज में आपने सुना। साहिर लुधियानवी की भूल थे, संगीत एन दत्ता का था और यही आज के इस कार्यक्रम का आखिरी नगमा था।
1: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। सुबह के 7:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास में आप सभी का स्वागत है और आज के इस अंक के साथ मैं हूं आपका रेडियो दोस्त लाल बहादुर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए श्रोताओं, रोज की तरह कार्यक्रम शुरू करते हैं आज के सुविचार के साथ। स्वामी विवेकानंद का कथन है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। तो ये था आज का सुविचार।

अब डालते हैं एक नज़र 17 जून की महत्वपूर्ण घटनाओं पर। 1858 ईस्वी में आज के दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नायिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी। 1917 में आज के दिन महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम के हृदय कुंज में अपना निवास बनाया था। आइसलैंड को डेनमार्क से स्वतंत्रता मिली थी 1944 ईस्वी में आज ही के दिन। 1970 में आज ही के दिन शिकागो में पहली बार किडनी प्रत्यारोपण का ऑपरेशन हुआ था। सन 2008 में आज ही के दिन अपने देश भारत में विकसित हल्के लड़ाकू विमान तेजस का बेंगलोर में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। और साइना नेहवाल तीसरी बार इंडोनेशिया ओपन चैंपियनशिप बनी थी आज ही के दिन सन 2012 ईस्वी में।

अब एक नज़र उन विभूतियों पर जिनका निधन आज ही के दिन यानी 17 जून को ही विगत के वर्षों में हो गया था। 1895 में निधन हुआ था आज ही के दिन प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल गणेश अगरकर का। भारत के पहले वायसराय और कुशल राजनीतिज्ञ लॉर्ड कैनिंग का भी निधन हुआ था आज ही के दिन 1862 ईस्वी में। 1858 में निधन हुआ था आज ही के दिन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का। और स्वतंत्रता सेनानी एवं साहित्यकार गोप बंधु दास भी इस दुनिया को अलविदा कह गए थे आज ही के दिन सन 1928 ईस्वी में। तो श्रोताओं, ये था आज का इतिहास। और अब अवसर की बात करें तो आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस हम मना रहे हैं। श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भूमि को बंजर होने से बचाने और सूखे के प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु इस प्रमुख दिवस की घोषणा की थी। आकाशवाणी सासाराम से आप सुन रहे हैं प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। कार्यक्रम में हम आगे नजर डालेंगे स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर। पहले हम आपको सुना रहे हैं एक भक्ति रचना।

अमिताभ बच्चन के सुर में आप सुन रहे थे ये गणेश आरती, और इसे हमने लिया था सरकार 3 फिल्म से। कार्यक्रम नमस्ते रोहतास में आइए अपना नजर डालते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर।

कैमूर को सीएम सम्राट चौधरी ने दी 196.06 करोड़ की 60 विकास योजनाओं की सौगात। मुंडेश्वरी धाम में रोपवे निर्माण जल्द। जहां बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सीएम सम्राट चौधरी मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर कैमूर पहुंचे। सबसे पहले सीएम मां मुंडेश्वरी धाम गए, उन्होंने माता के दर्शन किए, उन्होंने पूजा अर्चना की, उन्होंने राज्य एवं प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस दौरान मां मुंडेश्वरी मंदिर न्यास समिति से जुड़े लोगों ने मुख्यमंत्री को अंगवस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इसके बाद सीएम ने सहयोग शिविर का निरीक्षण किया। मुंडेश्वरी धाम स्थित धर्मशाला परिसर में आयोजित सभा को संबोधित भी किया। सीएम ने शिलापट का अनावरण किया। उन्होंने 196.06 करोड़ रुपए लागत की 60 विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इनमें 162.69 करोड़ रुपए की लागत से 20 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। सीएम ने कहा, सासाराम और भभुआ के बीच एयरपोर्ट बनेगा। उधर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों ने जनता की समस्याओं के समाधान के लिए करीब एक माह पहले 19 मई को सहयोग शिविर कार्यक्रम शुरू किया है। सहयोग पोर्टल के माध्यम से भी लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं।

मेदांता के सहयोग से कैमूर जिले के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान सदर अस्पताल भभुआ में न्यूरो सर्जन की विशेष ओपीडी सेवा शुरू की गई है। इस पहल से जिले के हजारों मरीजों को स्थानीय स्तर पर विशेषज्ञ चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध होगी। अस्पताल प्रशासन के अनुसार मेदांता के वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉ. हिमांशु कुमार वर्मा प्रत्येक माह के तीसरे सोमवार को अस्पताल पहुंचकर मरीजों की जांच, परामर्श एवं उपचार करेंगे।

शतचंडी महायज्ञ को लेकर जलभरी यात्रा। पालेजा गांव में काली मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एवं मां काली के पिंड स्थापना के अवसर पर शतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया। महायज्ञ के प्रथम दिन 501 कलशों के साथ भव्य जलभरी यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं ने भाग लिया।

प्रियांशु राज का बिहार अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयन। जी हां, डालमिया नगर थाना क्षेत्र के न्यू प्रयाग बीघा निवासी 18 वर्षीय युवा विकेटकीपर व बल्लेबाज प्रियांशु राज का चयन बिहार अंडर 19 क्रिकेट टीम में हुआ है, जिसमें उन्होंने जुलाई माह में ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम में होने वाले नेशनल चैंपियनशिप अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में चयनित किया गया है।

शांति सद्भाव के साथ मुहर्रम पर्व मनाने की अपील। शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम संपन्न कराने की अपील को लेकर शांति समिति की बैठक सासाराम के पुराना गोला स्थित थाना टीओपी 1 स्थित परिसर में की गई। पुराने थाना परिसर में सासाराम सदर एसडीओ डॉक्टर नेहा कुमारी व डीएसपी विप्लव कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सासाराम नगर निगम शहरी क्षेत्र के राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों तथा दोनों समुदाय के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। बैठक में शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम का पर्व मनाए जाने को लेकर चर्चा की गई।

रोहतास जिले के विभिन्न पंचायतों में आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान एवं सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिवसागर प्रखंड के नाथ पंचायत सरकार भवन में जिला पदाधिकारी रोहतास श्रीमती उदिता सिंह की अध्यक्षता में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उप विकास आयुक्त भी शामिल हुए। शिविर के दौरान लाभुकों के बीच राशन कार्ड, विभिन्न प्रमाण पत्र एवं शौचालय निर्माण की राशि का वितरण तथा कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान कराया।

तो ये थी संक्षिप्त जानकारी स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में। और अब एक नज़र डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। आज 17 जून है और आज के दिन 6 मिलीमीटर वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 60% और न्यूनतम 20% रहने की संभावना है। और हवा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सासाराम से प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। आगे हम नजर डालेंगे समाचार।

पात्रों की खास खास सुर्खियों पर। लेकिन पहले हम सुनवा रहे हैं एक और गाना, और इसे हमने लिया है अंदाज फिल्म से। आवाज है किशोर कुमार की।

किशोर कुमार की आवाज़ में आप सुन रहे थे अंदाज फिल्म का ये गीत। अब आइए एक नज़र डालते हैं समाचार पत्रों की खास खास सुर्खियों पर। आज भी हमारे पास है हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर समाचार पत्र। हिंदुस्तान अपने मुख्य पृष्ठ पर मोटे अक्षरों में लिखता है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से कि भभुआ सासाराम के बीच एयरपोर्ट बीएचयू का कैंपस खुलेगा। अखबार लिखता है, मुख्यमंत्री कैमूर और सिवान के सहयोग शिविरों में हुए शामिल, आवेदकों से भी मुलाकात की। इसी खबर को प्रभात खबर लिखता है, शिक्षकों को मिलेगी हर सुविधा और सिवान में खुलेगी चीनी मिल, सीएम के हवाले से लिखता है प्रभात खबर ने। यह खबर दिया है कि नीट से पहले टेलीग्राम ऐप पर भारत में अस्थाई प्रतिबंध, अब 22 जून के बाद शुरू होगी सेवा।

बिना वारंट अब इंस्पेक्टर कर सकेंगे गिरफ्तार। भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई और जांच में आएगी तेजी, अधिसूचना जारी। दैनिक जागरण ये भी समाचार दिया है कि मानसून पर हावी होने लगा अलनीनो, धीमी हुई रफ्तार। देश में अभी तक 28% कम हुई मानसूनी वर्षा। पश्चिम में हफ्ते भर से मानसून ठिठका, पूर्व में भी सुस्त। दैनिक जागरण ने भी ये समाचार दिया है कि देश भर में मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध। दैनिक जागरण ये भी लिखता है कि सिपाही भर्ती के लिए आज 544 केंद्रों पर 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा।

दैनिक भास्कर लिखता है कि चांद दिखा, इस्लामिक कैलेंडर का नया साल शुरू, यौमे अशूरा 26 जून को। जहां पटना समेत देश के कई भागों में मंगलवार को चांद देखा गया, इसलिए बुधवार यानी आज मुहर्रम की पहली तारीख होगी। बुधवार से ही इस्लामिक कैलेंडर का नया साल 1448 हिजरी शुरू हो जाएगा।

और खेल समाचारों में है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ईरान ने न्यूजीलैंड को 2-2 की बराबरी पर रोका। महिला T20 क्रिकेट मैच में लगातार दूसरी जीत की तलाश में भारतीय टीम, पहली बार नीदरलैंड से खेलेगा भारत। और टेनिस में 5 साल बाद एक साथ खेलेंगी विलियम्स बहने। इसी के साथ प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास अब समाप्त होता है। दीजिए इजाजत अपने रेडियो दोस्त लाल बहादुर को। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। हम आकाशवाणी के साझारम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 8 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात भी रेखांकित किया।

0: भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्यौता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
4: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
2: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को हेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश

0: प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
1: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट यूजी पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्ता की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजाद मुआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है क्या ये तेहरान की जीत है। इस लेख में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर अमरीकी सैन्य दखल जटिल संघर्ष में बदलती गई जिसे शायद ही कोई जीत कहे।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ

0: आने के लिए किछाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला में दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के साथ आरंभ केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:15 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे लीडर फिल्म का ये देशभक्ति गीत, और इसी के साथ देशभक्ति संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को आपके रेडियो दोस्त लाल बहादुर का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं फकीरा फिल्म के इस गाने से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है, और सुनना चाहते हैं कलेर बिहार से हमारे श्रोता मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निकात परवीन, सद्दा फारजू, साहिल अरमान, शमा परवीन, सादिया तस्नीम और अलीशा। वाराणसी उत्तर प्रदेश से किशोरी श्रीवास्तव, पिंकी श्रीवास्तव, संध्या श्रीवास्तव, आशु और टुनटुन। और आप सब हैं सिविल कोर्ट सासाराम से मंटू सिंह छपरा वाले, राजू सिंह और अश्वनी कुमार। फोटानी चौक नारायण एस्टेट से भाई फटफटिया जा, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, ललन मिश्रा, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित। नारायण एस्टेट से ही हमारे श्रोता हैं नूतन मिश्रा, सुमन मिश्रा, अमृता, अनुपम, विनीता मिश्रा और स्नेहलता जैन। और आप सब हैं नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसरत जहनाज, तलत जहनाज, फरहत जहनाज, रिफत जहनाज, नुजहत जहनाज, साजिया शाहिनाज और नाजिया नूरीनाज। तो पेश है आप सबों की पसंद पर फकीरा फिल्म का ये गीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए
3: आकाशवाणी सासाराम से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। चलिए अब कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं आप सबकी पसंद पर गीत फिल्म का ये गीत जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। आनंद बख्शी के बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी की धुन। सुनना चाहते हैं थाना मोड़ ग्रानोखा जिला रोहतास से मुन्ना भाई मंसूरी नजमुन्निशा सद्दाम मंसूरी नगमा निशा लाल बाबू सिमरन अली अरबाज मंसूरी सैफ अली शबाना और शाहबाज। गोकुल चौक गंगजला सहरसा से हमारे श्रोता है राधे कुमार विद्यार्थी सविता राधे विद्यार्थी राकेश रंजन विद्यार्थी राजीव रंजन संजय कुमार ओम कुमार गुंजेश कुमार रिया रानी कुमकुम कुमारी साक्षी और बोलकी वाली फलना झा। नयानगर सुपौल से श्वेता रंजन पप्पू जी रजनीश कुमार आनंद कुमार आशुतोष कुमार अमिताभ कुमार और गजेंद्र कुमार निराला। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरबा से भाई कारीरायकारी श्रीमती मीनाकारी पुंजराज आर्यन आरती पुंज आकर्षण पुंज जयश्री पिंकी रिंकी रिक्की और नीतू। डोली सकरा से हमारे श्रोता हैं जयंत कुमार वैरागी। तो पेश है आप सबकी पसंद पर गीत फिल्म का ये खूबसूरत गीत।

चलिए अब पसंद आपके कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं राजकुमार फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जी किशन का संगीत। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं खमारिया बिलासपुर से साबित खान, सावित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापति और प्रतीक कुमार। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। पुराना तालाब डुमराव से हमारे श्रोता हैं वल्लीहुल अंसारी, आसमानाज अंसारी और सोनम। सारिमपुर बक्सर से

पुराना तालाब डुमराव से हमारे श्रोता हैं वल्ली फुल अंसारी, आसमान आज अंसारी और सोनम, सारिमपुर बक्सर से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, मोहम्मद समी अंसारी और छठिया फोकरा डुमराव से हमारे श्रोता हैं लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती। तो लीजिए आप सब सुनिए अपनी पसंद पर राजकुमार फिल्म का ये गीत।

0: और अब पसंद आपकी कार्यक्रम का आखिरी गीत हम सुनवा रहे हैं एक फूल दो माली फिल्म से। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की, प्रेम धवन की रचना है और रवि का संगीत। इस गाने को सुनना चाहते हैं मछली गोदाम कैदीमुड़ा रायगढ़ से भाई पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू और रितु सिंह। आदर्श नगर मालोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव और सैन्या शर्मा। यहीं से हमारे श्रोता हैं निवान शर्मा। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा और कालका से सुभाष चंद्र, शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर राही, श्रीमती सरिता गवाणकर और प्रिंस एकांश गवाणकर। तो लीजिए आप सब सुनिए अपनी पसंद पर एक फूल दो माली फिल्म का ये गीत।
1: ये पर्दा हटा दो

0: और इस खूबसूरत गीत के साथ ही आज का फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी अब समाप्त होता है। दीजिए इजाजत अपने रेडियो दोस्त लाल बहादुर को। नमस्कार। प्रस्तुत करता थे संतोष कुमार, ये आकाशवाणी सासाराम है। अब हम कुछ ही पलों में रिले करेंगे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें। समय समय पर फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं।
2: जब होगा पूरा प्रयास हमारा, तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा। जीवंत बिहार, सपना हो साकार। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
4: और इस गीत के बाद
5: छाया गीत।

All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में चल रहे सहयोग शिविरों में प्राप्त लगभग 90% शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पटना के नौबतपुर में आयोजित खेत बचाओ अभियान में शामिल होंगे। प्रदेश की पंचायतों में जनभागीदारी बढ़ाने और विकास कार्यों की समीक्षा के लिए प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को मनाया जाएगा पंचायत विकास दिवस।

0: मद्य निषेध कारा और परिवहन विभाग में सिपाही तथा कक्षपाल की नियुक्ति के लिए आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हो रहा है परीक्षा का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में चल रहे सहयोग शिविरों में प्राप्त लगभग 90% शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। अब तक 3 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2,61,000 से अधिक मामलों का निष्पादन हो चुका है। कैमूर और सिवान में आयोजित सहयोग शिविरों में उन्होंने कहा कि 30 दिनों के भीतर आवेदन का निपटारा नहीं होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी।
1: साथियों, हम लोगों ने शिविर कार्यक्रम शुरुआत किया है और लगभग 1 महीना पूरने वाला है 1-2 दिनों के अंदर, और इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 3,03,678 लोगों का आवेदन प्राप्त हुआ। 2,61,628 लोगों का आवेदन निष्पादित किया गया। कार्यक्रम का मकसद है जनता से संवाद, जनता के समस्या का हल करना।
0: इधर मुख्यमंत्री आज पटना के फुलवारी शरीफ प्रखंड स्थित नदियावा में आयोजित प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर में शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पटना के नौबतपुर में आयोजित खेत बचाओ अभियान में शामिल होंगे। वे किसानों के साथ संवाद भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने आज सुबह स्वच्छता कार्यक्रम में भाग लिया। श्री चौहान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर कृषि, ग्रामीण विकास और केंद्र राज्य समन्वय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वे न्यू विधायक फ्लैट परिसर में पौधारोपण करेंगे तथा दारोगा राय पथ से अटल पथ गोलम्बर तक आयोजित प्रगति पथ यात्रा में भी शामिल होंगे। दोपहर में केंद्रीय मंत्री विद्यापति भवन में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में भाग लेकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों और आगामी प्राथमिकताओं पर अपने विचार रखेंगे। राज्य सरकार ने पंचायतों में जनभागीदारी बढ़ाने और विकास कार्यों की नियमित समीक्षा के लिए प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को पंचायत विकास दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इस दिन सभी पंचायतों में ग्राम सभा आयोजित होगी, जिसमें विकास योजनाओं की प्राथमिकताएं तय की जाएंगी और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि ग्राम सभा में मुखिया, पंचायत प्रतिनिधि, पंचायत सचिव तथा विभिन्न विभागों के स्थानीय अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में वित्त आयोग की राशि के उपयोग, पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, सड़क, नाली, सफाई और अन्य विकास योजनाओं की प्रगति पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम का भी प्रसारण किया जाएगा। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत आम निर्वाचन 2026 के तहत आरक्षण निर्धारण से जुड़े दस्तावेज प्रपत्र 1 का अंतिम प्रकाशन कर दिया है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित यह दस्तावेज ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम कचहरी के विभिन्न पदों पर आरक्षण तय करने का वैधानिक आधार है। आयोग के अनुसार प्रपत्र 1 के आंकड़ों का जिला गजट में प्रकाशन 20 जून को किया जाएगा, जबकि इसकी प्रति 23 जून तक आयोग को उपलब्ध कराई जाएगी। मद्य निषेध कारा और परिवहन विभाग में सिपाही तथा कक्षपाल की नियुक्ति के लिए आज 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती से प्राप्त जानकारी के अनुसार परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 544 केंद्र बनाए गए हैं। 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इधर रेलवे ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आज 25 विशेष ट्रेनों के संचालन की व्यवस्था की है। ये ट्रेनें पटना, बक्सर, गया, सोनपुर, सहरसा, मधुबनी और बेतिया समेत विभिन्न स्टेशनों से परिचालित की जाएंगी। रेल प्रशासन ने अभ्यर्थियों से समय से पहले स्टेशन पहुंचने और निर्धारित ट्रेनों का उपयोग करने की अपील की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं

0: जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने कहा है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। एनटीए ने महानिदेशक अभिषेक सिंह का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि देश में टेलीग्राम ऐप को क्यों फिलहाल बंद किया गया।
1: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर अश्लील द्व्यर्थी और जाति सूचक गीतों के प्रसारण पर सख्ती के निर्देश दिए हैं। कला और संस्कृति विभाग के सचिव प्रणव कुमार ने गृह विभाग को पत्र भेजकर ऐसे गीतों के प्रसारण पर प्रभावी रोक लगाने और आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। पटना हाईकोर्ट ने मिशन वात्सल्य योजना के तहत राज्य में चल रही संविदा बहाली प्रक्रिया पर अंतिम रोक लगा दी है। बहाली की शर्तों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई तक नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित रहेगी। बहुचर्चित टेंडर घोटाला मामले में ठेकेदार रेशो श्री उर्फ रंजन सिन्हा को पूछताछ के लिए 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर एसवीयू को सौंप दिया गया है। पटना स्थित निगरानी की अदालत की अनुमति के बाद उसे एसपीयू को सौंपा गया। इधर इसी मामले में आईएएस अधिकारी संजीव हंस की अग्रिम जमानत याचिका पर अब 24 जून को सुनवाई होगी। अदालत ने एसपीयू से मामले की केस डायरी और साक्ष्य तलब किए हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ने से राज्य में बारिश की भारी कमी दर्ज की गई है। 1 जून से अब तक राज्य में सामान्य से 32% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली मॉनसून की दोनों शाखाएं कमजोर हैं। मॉनसून मुजफ्फरपुर के आसपास ठहर गया है, जिससे अधिकतर जिलों में बारिश नहीं हो पा रही है। बारिश की कमी के चलते पटना समेत 7 जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 42.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के उत्तर, दक्षिण पूर्व और दक्षिण मध्य हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
4: राज्य के उत्तर, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों में वर्षा होने की संभावना है, जबकि शेष भाग शुष्क रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भागलपुर, कटिहार, किशनगंज एवं पूर्णिया जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कम बारिश की स्थिति को देखते हुए कृषि संबंधी विशेष कार्ययोजना बनाने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
5: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस

0: बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उप मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि राज्य में बाढ़ पूर्व सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पटना जदयू कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि कटाव निरोधक कार्य समाप्त हो चुके हैं और बाढ़ से निपटने के लिए आवश्यक सामग्रियों का पर्याप्त भंडारण किया जा चुका है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने बेतिया अंचल कार्यालय में कार्यरत डेटा एंट्री ऑपरेटर राजकुमार मिश्र को 15,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर्मी शिकायतकर्ता से जमाबंदी का लॉक खोलने के लिए रिश्वत ले रहा था। गया जिले के बांके बाजार स्थित टुमरी नाला जंगल में सीआरपीएफ और जिला पुलिस ने संयुक्त सर्च अभियान चलाकर हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। बरामद सामानों में एक भरमार बंदूक, AK-47 और SLR के जिंदा कारतूस, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, बैटरी और वायर शामिल हैं। सुरक्षा बलों के अनुसार नक्सलियों ने हथियार और विस्फोटक जमीन के अंदर प्लास्टिक में छिपाकर रखे थे। मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा में कदाचार कराने के आरोप में पुलिस ने नवादा से 2 भिक्षकों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों KLS कॉलेज परीक्षा केंद्र पर वीक्षण कार्य में तैनात थे। पूर्णिया जिले की एक अदालत ने चर्चित ताराबाड़ी दोहरे हत्याकांड मामले में 8 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। औरंगाबाद जिले के रिसेप थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक चारपहिया वाहन से 51 किलो गांजा के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अररिया जिला प्रशासन ने नेपाल से सटे भारतीय सीमा क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंप से पेट्रोलियम उत्पादों की कालाबाजारी रोकने के लिए दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मुख्यमंत्री सीवान और कैमूर में सहयोग शिविरों में शामिल हुए, आवेदकों से संवाद भी किया। दैनिक जागरण ने लिखा है, SBU की बढ़ी शक्ति, बिना वारंट इंस्पेक्टर कर सकेंगे गिरफ्तार। प्रभात खबर ने G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, दुनिया में संसाधनों की कमी नहीं, भरोसे की कमी यह सबसे बड़ा संकट। दैनिक भास्कर लिखता है, नीट में पेपर लीक नहीं हो इसलिए टेलीग्राम 22 तक बंद, नीट का पेपर ले वायुसेना का विमान पटना पहुंचा। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, 2 एनकाउंटर, गयाजी में 48 लाख लूट के 2 आरोपियों को पुलिस ने दौड़ाकर गोली मारी। आज अखबार लिखता है, बिहार को मिलेगी 400 ई बसों की सौगात। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में चल रहे सहयोग शिविरों में प्राप्त लगभग 90% शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पटना के नौबतपुर में आयोजित खेत बचाओ अभियान में शामिल होंगे। प्रदेश की पंचायतों में जनभागीदारी बढ़ाने और विकास कार्यों की समीक्षा के लिए प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को मनाया जाएगा पंचायत विकास दिवस। और मद्य निषेध कारा और परिवहन विभाग में सिपाही तथा कक्षपाल की नियुक्ति के लिए आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हो रहा है परीक्षा का आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

FM बैंड की 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह 9:10 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका। सुबह 9:30 पर और रात्रि 9:30 पर हम रिले करेंगे विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार। सुबह 10:05 पर हमारे केंद्र से सुनिएगा कार्यक्रम श्रम संसार। सुबह 10:30 लोक माधुरी कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे भोजपुरी एल्बम से लोकगीत और 10:45 पर रसधार कार्यक्रम में सुनिएगा भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स और 11:00 से हम आपको सुनवाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम

हमारी शाम की सभा में संध्या 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। शाम 5:30 महिलाओं के लिए कार्यक्रम प्रसारित होगा घर आंगन। इसमें बहनों से बातें होंगी घर परिवार में बढ़ते बच्चों का पोषण विषय पर और रसोई घर से हरी सब्जियों के व्यंजन के बारे में जानकारी दी जाएगी। संध्या 6:05 पर भोजपुरी समाचार बुलेटिन हम रिले करेंगे पटना केंद्र से। संध्या 6:10 पर ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम प्रसारित होगा गांव घर और इस कार्यक्रम में आज चर्चा होगी उपजाऊ जमीन के मरुस्थलीकरण और सूखे से बचाव कैसे करें विषय पर और एक वार्ता सुनवाई जाएगी, विषय होगा जन संरक्षण नियंत्रण। वार्ताकार होंगे भूपेंद्र नारायण सिंह। संध्या

बजकर 40 मिनट से आप सुनेंगे भोजपुरी लोक फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत। शाम 7 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस, और संध्या 7:15 पर हमारा सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम होगा गुड इवनिंग रोहतास। शाम 7:30 प्रादेशिक समाचार और उसके बाद जिले के हलचल हम रिले करेंगे पटना केंद्र से, और शाम 7:50 से आप सुनेंगे हमारा फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मनपसंद। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि इसकी रिकॉर्डिंग हर बुधवार को प्रातः 11 से 12 बजे के बीच होती है, तो आज बुधवार है, आप अपना रिकॉर्डिंग करा सकते हैं। समय याद रखें, दिन के 11 बजे से 12 बजे के बीच। रात्रि 9:45 समाचार संध्या हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:00 से आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुर सौरभ, आज सुनिएगा पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन। रात्रि 10:00 से आप सुनेंगे कार्यक्रम रसरंग में हिंदी एल्बम सॉन्ग्स, और रात्रि 10:30 कार्यक्रम होगा चित्रपट तराने। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से, और रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा समाप्त होगी। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, यह आकाशवाणी सासाराम है। अब लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका। श्रोताओं, गीत मालिका कार्यक्रम में आज हम सुना रहे हैं कुछ जोश और उत्साह से भरे नगमे, क्योंकि यदि जोश ना हो, उमंग ना हो, उत्साह ना हो, हिम्मत ना हो, तो छोटा सा काम भी कठिन लगने लगता है। तो आप अपने मन को हमेशा उमंग और उत्साह से भरे रखिए, तभी आप हर मैदान फतेह कर सकते हैं।

कर हर मैदान फतेह। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संजू फिल्म से ये गाना सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में। कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, और श्रोताओं जीतता वही है जिसमें जोश और उत्साह लबालब भरा हो, और हताश करने वाली बातों को दरकिनार कर सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान रखता है, और यह कहने की हिमाकत रखता हो कि हम यहाँ के हम सिकंदर।

यहाँ के हम सिकंदर। यह श्रोता अभी आप सुन रहे थे जो जीता वही सिकंदर फिल्म से ये गीत उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ों में मजरू के बोल थे और जतिन ललित का संगीत। श्रोता यदि आप जो चाहते हैं वो पाने की तमन्ना रखते हैं, चाहे वह चांद तारे पाने की ही तमन्ना क्यों न हो, तो इसके लिए भी अपने आप को जोश और उत्साह से भरे रखना अति आवश्यक है। तभी आप दुनिया पर छा सकते हैं और अपनी खास पहचान बना सकते हैं।

अभिजीत की आवाज़ में आप सुन रहे थे यस बॉस फिल्म का ये गीत। और श्रोतावंत में हम यही कहेंगे कि हर सफलता में आपका हिम्मत और जुनून ही काम आएगा। तो लीजिए कार्यक्रम का आखिरी गाना सुनिए, हिम्मत और जुनून से भरा हुआ।

0: जुबाने तू उसको ले उसको दे पहचान तेरा ही दादा तुझसे भी दादा उसको पता है। सुल्तान फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह और सद्दाव फरीदी की आवाज़ों में। और सदा इसी के साथ गीत मालिका कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी सासाराम है, सुबह के 9:30 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे कुछ ही पलों में विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों की बात।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से।
1: ये कौन है? कबाब में हड्डी।
0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज जिक्र उस अभिनेता का जिसने सन 1955 में बनी बिमल रॉय की फिल्म देवदास में चुन्नी लाल की यादगार भूमिका निभाई थी।
2: हाय हाय, तुम क्यों रुक गई? तुम रुकी क्या, दिल हमारा रुक गया, गम के मारे आसमां भी झुक गया।
3: ए देवदास, तुम कहां चले? घबराने की क्या बात है? बैठो बैठो बैठो। हाँ तो शुरू हो जाओ उस्ताद।

0: ख्वाब है।
1: मोतीलाल को हिंदी फिल्मों के बेहद सौम्य और शिष्ट अभिनेताओं में गिना जाता है। सन 1910 में शिमला में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम था मोतीलाल राजवंश। सन 1934 में आई फिल्म शहर का जादू से मोतीलाल की अभिनय यात्रा की शुरुआत हुई थी। सागर मूवी टोन के बैनर तले बनी इस फिल्म के निर्देशक थे केपी घोष। 30 के दशक में नायिका सविता देवी के साथ फिल्मों में उनकी जोड़ी बड़ी मशहूर रही। इस जोड़ी की कुछ खास फिल्में थीं डॉक्टर मधुरिका, जिसके लेखक थे जाने माने साहित्यकार कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, रंजीत मूवी टोन।

0: की बड़ी मशहूर रही। इस जोड़ी की कुछ खास फिल्में थीं डॉक्टर मधुरिका, जिसके लेखक थे जाने माने साहित्यकार कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, रंजीत मूवीटोन की फिल्म अछूत, जयंत देसाई की फिल्में दीवाली और शादी, जिनमें मोतीलाल और सविता देवी नायक नायिका थी। बाद में चतुर्भुज जोशी की सन 1941 में आई फिल्म परदेसी और ससुराल में वे अभिनेत्री माधुरी के साथ दिखाई दिए। भारतीय सिनेमा की यात्रा पर शुरुआती दौर में पारसी रंगमंच और नौटंकियों के बेहद कलाबाजी भरे अभिनय की गहरी छाप पड़ी थी। अभिनय में अति नाटकीयता का समावेश होता था, लेकिन कहा जाता है कि मोतीलाल ने हिंदी सिनेमा में स्वाभाविक और सहज अभिनय की शुरुआत की, जिसमें संवादों की अदायगी उतनी नाटकीय न होकर बिल्कुल आम जिंदगी की बोलचाल जैसी होती थी।
1: देखते हुए रंगीन जिंदगी, ये वो लोग हैं जिन्हें सड़कों पर बटुए मिले और उन्होंने लौटाए नहीं।
2: इसे मुझे जानने की जरूरत नहीं, मुझे इजाजत दी।
1: क्या काम करते हो?
2: बेकार।
1: नौकरी चाहते हो?
2: मुझे नौकरी मिलेगी।
1: इस पते पे कल चले जाना और मैनेजर साहब से मिलना।
0: जाने माने फिल्मकार महबूब खान की शुरुआती फिल्मों में मोतीलाल नायक रहे थे, जैसे सन 1943 में आई तकदीर, सन 1937 में आई जागीरदार और सन 1938 में आई फिल्म हम तुम और वो। केदार शर्मा की फिल्म अरमान और कलिया में भी मोतीलाल ने काम किया था। सन 1945 में आई थी फिल्म पहली नजर, जिसमें वीणा मोतीलाल की नायिका थी। हम आपको याद दिला दें कि इसी फिल्म से पार्श्व गायक मुकेश की गीत यात्रा शुरू हुई थी। मोतीलाल मुकेश के चचेरे भाई थे और वे ही मुकेश को फिल्म संसार में लाए थे। फिल्म पहली नजर में संगीतकार अनिल विश्वास के निर्देशन में मुकेश ने गाया था अपना पहला नगमा।

सन 1948 में आई फिल्म गजरे, जिसमें सुरैया मोतीलाल की नायिका थीं। इस फिल्म के संगीतकार थे अनिल विश्वास और गीतकार गोपाल सिंह नेपाली। ये है सुरैया का गाया नगमा।

सन 1949 में आई रूप शौरी की फिल्म एक थी लड़की, इसमें मोतीलाल की नायिका थी मीना शौरी। आपका ये दोस्त इस फिल्म का एक दुर्लभ गीत ढूंढ कर लाया है खास तौर पर आपके लिए।

0: मोतीलाल की सबसे उल्लेखनीय फिल्म मानी जाती है सन 1952 में आई जेमिनी प्रोडक्शंस की मिस्टर संपत। आर के नारायण के प्रसिद्ध उपन्यास पर बनी इस फिल्म में मोतीलाल ने एक शरीफ बदमाश का किरदार निभाया था।
1: इतना ही नहीं जनाब, मैं कहता हूँ कि आज आधी से ज्यादा दुनिया 420 है। जिधर निगाह उठा के देखिए, चोर बदमाश डाकू नजर आते हैं, और मजा यह है कि देखने में आपसे और हमसे ज्यादा शरीफ मालूम होते हैं। कौन जाने यहाँ हम लोगों में कौन शरीफ है और कौन 420। ना जाने क्या होने वाला है दुनिया का। 8 आने के 12 केले, लूट मची हुई है चारों तरफ। जिसको देखो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। आपने वो केले वाले को मुझे ना बताया, सीधा पुलिस की हिरासत में भेज देता उसको।
2: अच्छा
1: जी हाँ, आप लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्यों हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि मैं थर्ड क्लास पैसेंजर हूँ। जी नहीं, मैं चाहूँ तो फर्स्ट क्लास में सफर कर सकता हूँ, सैलून में भी सफर कर सकता हूँ, लेकिन चाहता नहीं। पूछिए क्यों। मैं ये जानना चाहता हूँ कि थर्ड क्लास के पैसेंजरों को क्या क्या तकलीफें हैं, उनको किन किन सहूलियतों की जरूरत है। मैं आप लोगों का हूँ, जनता का हूँ। बाय द वे, जनता एक्सप्रेस के बारे में तो आपने सुना होगा, वो मेरा ही आइडिया था।
2: आपका आइडिया?
1: ऑफ कोर्स।
2: टिकट प्लीज, टिकट, टिकट प्लीज।
1: पास।
2: क्या मैं देख सकता हूँ?
1: ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। मैंने तुम्हें कहीं देखा है, शर्मा जी के घर।
2: कौन शर्मा?
1: अरे भाई, वो तुम्हारे DTS।
2: आपका मतलब वर्मा जी से है?
1: वर्मा जी, वर्मा शर्मा में क्या फर्क है, दोनों मेरे जिगरी दोस्त हैं। क्या तनख्वाह मिलती है तुम्हें?
2: 125 रुपए।
1: 125 रुपए और डियरनेस अलाउंस और भत्ता?
2: 50 रुपए।
1: 50 और 125, 175 रुपए मिलते हैं, और दिन रात बैल की तरह से काम करते हैं। जुल्म है ये, सरासर जुल्म है। मैं तुम्हारे लिए वर्मा जी से बात करूंगा। क्या नाम है तुम्हारा?
2: रामप्रसाद।
1: रामप्रसाद, मैं वर्मा जी से तुम्हारे लिए बात करूंगा और तरक्की कराने का इंतजाम करूंगा। अब तुम जा सकते हो।
2: थैंक यू सर, थैंक यू।
0: सन 1954 में HS रावेल की फिल्म मस्ताना में मोतीलाल ने एक यादगार भूमिका निभाई। इस फिल्म में उनकी नायिका थी निगार सुल्ताना।

0: कार फिल्म देवदास।
1: अरे देवदास, अरे चुनिंदा हो तुम, ये क्या सूरत बना रखी है, पहचाने भी नहीं जाते, क्या खबरें हैं?
2: खबर बस यही है कि जिंदा हैं। तुम यहाँ कैसे?
1: भाई कलकत्ता हमें रास नहीं आया, दिल्ली में एक नौकरी कर रखी है, उस सिलसिले में दौरे पर जा रहे हैं, आज यहाँ कल वहाँ। तुम कहाँ जा रहे हो?
2: ये अभी कुछ तय नहीं किया।
1: मकसद?
2: जिंदगी में अब कोई मकसद ही नहीं रहा चुनी बाबू।
1: तुम रहे वही देवदास। अच्छा ठहरो, इतने दिनों के बाद मिले हैं, मुलाकात को रंगीन किया जाए, क्या ख्याल है? अब तो हम सोडा मिलाने के भी कायल नहीं रहे, क्यों फजूल सोडे पे पैसे जाया किए जाए, लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी, थोड़ा पानी मिला लो।
2: मैंने पीना छोड़ दिया है चुनी बाबू।
1: किसी ने अपने सर की कसम तो नहीं दिला दी?
2: ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस नहीं पीऊंगा।
1: अरे अरे, मगर ये गिलास कहाँ ले जाते हो? तुम नहीं पियोगे तो मैं पी लूंगा। अच्छा ये वो पुराना मर्ज है या कोई नया रोग लगा लिया? अरे कुछ कहते क्यों नहीं?
2: क्या कहूँ चुनी बाबू, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अब तो बस यही अच्छा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगे।
1: तुम्हें क्या दुख है? मैं अच्छी तरह समझता हूँ देवदास, लेकिन ये ना समझो कि सिर्फ तुम ही इस दुख के शिकार। जब इस दुख की आग सीने में भड़कती है तो इसी का सहारा लेना पड़ता है, इसी आग से उस आग को बुझाया जा सकता है, और कोई चारा नहीं।
0: सन 1956 में फिल्म जागते रहो, जिसमें मोतीलाल के अभिनय की मिसाल आज भी दी जाती है।

0: सन 1959 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनाड़ी में मोतीलाल एक कड़क बिजनेसमैन के किरदार में नजर आए थे।
1: आज ही इस घर में हो क्या रहा? तुम बैठो, मैं भी आता हूँ।
2: ये क्या गाना पूछी हो रही तुम लोग?
3: कुछ नहीं चाचा जी, यूं ही बात कर रहे थे। वो राजकुमार नीचे आए हैं ना।
1: तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उसका नाम राजकुमार है?
3: जी मुझे आशा ने बताया।
1: आशा को कैसे मालूम हुआ कि वो कौन है, क्या है, कहाँ काम करता है?
3: जी मैं जी आरती। घबराओ नहीं आशा, चाचा जी तुम्हें काट थोड़ी ही खाएंगे, बताओ ना।
1: हाँ, डरने की क्या बात है, राजकुमार को तो मैं खुद पसंद करता हूँ, मेरे यहाँ तो काम करता है वो।
3: सॉरी।
1: हाँ मैं क्या कह रहा था, राजकुमार बड़ा काबिल लड़का है, बड़ा होनहार है, बड़ा ईमानदार है।
3: हाँ और बड़े अच्छे चित्रकार भी हैं और गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं।
1: अच्छा,
3: मुझे आशा ने बताया।
0: सन 1959 में दिलीप कुमार और मोतीलाल एक साथ नजर आए फिल्म

0: 1960 बिमल रॉय की फिल्म परख, मोतीलाल का यादगार अभिनय।
1: ये क्या पागलपन फिर से शुरू कर दिया है तूने? कहाँ था डेढ़ महीने से?
2: तुम्हारे ही काम के लिए गया था मैं।
1: मेरा काम?
2: हाँ, तुम्हें याद नहीं, पिताजी की वसीयत के मुताबिक वो 5 लाख रुपए का चेक जो राधा नगर मैंने भेजा था, उस वक्त तुम्ही ने कहा था कि ये रुपया किसी गलत आदमी के हाथ में ना पड़ जाए, इसलिए मैं वहाँ गया। वहाँ जाके पोस्ट ऑफिस में एक डाकिया की नौकरी कर ली और वहाँ से छुट्टी लेके अब अपनी माँ के दर्शन करने के लिए आया हूँ।
1: लेकिन तुझे इस पोशाक में देख कर मुझे बड़ा डर लगने लगता है।
2: डर लगने लगता है क्यों माँ?
1: कुछ ऐसी ही पोशाक में तेरे पिताजी को वो गांव छोड़ना पड़ा था, इसलिए अब तुझे उस जिंदगी के नजदीक जाके देख मेरा रोम रोम कांपता है।
2: माँ तुम बहुत ही भोली हो, मैं को असली डाकिया थोड़ी बन गया हूँ, ये तो एक स्वांग है, देखो तुझे तमाशा क्या क्या होता है।
0: सन 1965 में मोतीलाल ने एक फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था। ये फिल्म थी छोटी छोटी बातें, जिसमें नादिरा उनकी नायिका थी।

ये फिल्म नाकाम रही थी और मोतीलाल को इससे गहरा सदमा पहुंचा था। इसी साल यानी सन 1965 में मोतीलाल का देहावसान हो गया था।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता मोतीलाल पर। अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर हर रोज दिन में एक बजे विविध भारती की गीतमाला आपके साथ।
1: जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा।
0: इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी।
1: हम और तुम,
0: तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ।
2: हम साथ साथ है,
0: जुड़े रहे। एक बेटी की यादों में उसके पिता
3: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
3: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
3: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन डेर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फेडरिक मर्स के साथ भी बैठक करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों से घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताहांत तक खुल जाएगा। इससे ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इसराइल की सैन्य कार्रवाई के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैकाल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज

0: भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से होगा। भारत ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। सुबह के 10:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम श्रम संसार।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का श्रम संसार कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने एक ऐसे व्यवसायी मेहनतकश व्यक्ति से बातचीत करने की कोशिश की है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है। तो आइए जानते हैं इनके व्यवसाय के बारे में, जिन्होंने अपने गिरते व्यवसाय को संभाला, बल्कि अपने संघर्ष और धैर्य से उसे आज एक अच्छे मुकाम पर खड़ा भी किया है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं कि उनके संघर्ष की कहानी उनकी जुबानी। श्रम संसार कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप अपना नाम बता दीजिए।
3: हमारा नाम राशिद एहसान है और हमारे पिताजी का नाम एहसान करीम है और हमारे 7 भाई हैं, जिसमें से मैं चौथे नंबर पर हूँ। हमसे 3 बड़े हैं और 3 छोटे हैं और सभी में कारोबार करने वाले हम ही थे। और
2: सबसे पहले ये बताइए कि आप कौन सा रोजगार करते हैं?
3: हम लेडीज पर्स का काम करते हैं और हमारी कलकत्ता में भी एक छोटी सी फैक्ट्री थी और हम 2002 से इस लाइन में हैं। उससे पहले हमारे पिताजी थे और 2002 के बाद हमने काम शुरू किया और हमारे जो 3 बड़े भाई 3 छोटे भाई थे वो पढ़ रहे थे। हमने कहा कि हम भी पढ़ाई कर रहे थे लेकिन पिताजी की हालात कुछ ख़राब हो गए। हमने सोचा कि अगर हम पढ़ाई करते हैं तो फिर 6 जो हमारे भाई हैं वो पीछे रह जाएंगे, उनकी पढ़ाई चली जाएगी। तो हमने कहा कि नहीं, हम पिताजी के गिरते हुए काम को संभालेंगे। बहुत तेज़ी से उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा था, गिर रहा था, तो मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी और कलकत्ता में ही थे हम, वहीं कारोबार भी हम लोगों का था। तो हमने काम शुरू किया, ऊपर वाले क्रम से काम बहुत अच्छा संभाला, बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ गया। हमने इतना किया कि अपने भाइयों को पढ़ाया, 2 भाई को हमने दिल्ली में पढ़ाया, 1 भाई जामिया में आर्किटेक्ट बना, 1 छोटा भाई जो सबसे छोटा है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना और हमारे बड़े भाई जो थे वो यहाँ MA कर रहे थे, पहले वो पटना में पढ़ रहे थे, फिर MA किया उन्होंने। और 1 भाई हमारे हैं जो मेडिकल लाइन में, आज भी सासाराम मेडिकल ये सरकारी हॉस्पिटल है उसमें जॉब है उनकी, उसमें वो सर्विस करते हैं। और हमने मेहनत की कि देखिए, सिर्फ हमारे अगर पढ़ाई छोड़ देने से 6 लोगों की पढ़ाई जारी रहती है, हमने इसको बेहतर समझा और हमने पूरी लगन के साथ अपने भाइयों को पढ़ाया। आज हमारा भाई का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट है, हमारा छोटा भाई आदिल एहसान अपना डायग्नोसिस सेंटर है, हमारे बड़े भाई शाहिद एहसान। तो हमने इन लोगों पर बहुत खर्च किया, इन लोगों को पढ़ाया और काफ़ी अच्छी तरक्की की। हम लोग के हालात ऊपर वाले क्रम से बहुत अच्छे हैं और हमारी कलकत्ता में जो कारोबार था, हम 17 साल तक कलकत्ता में थे। फिर मैंने सोचा कि सारी ज़िंदगी प्रदेश में रहना हमने मुनासिब नहीं समझा। हमने अपने बड़े भाई को कहा, जिनका नाम साजिद एहसान है, कि भैया आप आ जाइए कलकत्ता, कारोबार को मैंने बड़े अच्छे हालात में कर दिया है, पोजीशन भी अच्छी है, इसको आप संभालिए क्योंकि अब मेरी तबीयत यहाँ से घबरा गई है। हम सोचते हैं कि अपने शहर में कुछ करें। तो 2014 में मैं सहसराम आ गया। सहसराम आने के बाद यहाँ छोटा सा अपना कारखाना शुरू किया, लेकिन वो कारखाना बढ़ते बढ़ते फिर मैंने आटी दुकान ली और सारी वैरायटी उसमें बैग उसको किया। आज ऊपर वाले क्रम से हमारे हालात बहुत अच्छे हैं और बढ़िया चल रहा है। और बात सबसे बड़ी ये है कि हम लोग सब भाई आज भी एक में रहते हैं। हम लोगों का व्यवहार आज भी वैसा ही है कि अगर त्यौहार होता है तो सब भाई हम एक जगह हो जाते हैं और अगर कोई भाई को किसी तरह की परेशानी आती है तो हम सब खड़े हो जाते हैं।
2: ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए, पैसा कमाना तो मतलब एक ठीक है कि इंसान पैसा कमाता है, लेकिन परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है और परिवार के साथ मिलकर जो खुशी होती है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी।

0: अनुभव लेना है तो आप हमसे आइए मिलिए, देखिए कितनी खुशी होती है। हमने सबसे पढ़ाने के बाद भाइयों को जो सबसे पहले पैसा की बचत की,
1: और ये कहिए कि आपने परिवार को संभाला और अपने भाइयों हो या अपने परिवार
0: जी,
1: को
0: जी।
1: उस मुकाम तक पहुंचाया, ये आपकी वजह से है क्योंकि आपने वो शुरू से संघर्ष किया।
0: जी जी जी, बात बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए ये हमारे पिताजी की देन है, क्योंकि हमारे पिताजी दो भाई थे, हमने कभी दोनों भाइयों को जुदा नहीं देखा, एक ही घर में दोनों भाई रहते थे। जबकि हम लोगों की ज़मीन थी, चाहते तो भाई अलग हो सकते थे, लेकिन हमारे दोनों पिताजी, जो बड़े पिताजी थे और हमारे पिताजी, बड़े पापा कहते थे उनको, तो दोनों एक साथ आखिरी वक्त तक साथ रहे, यहाँ तक कि वो भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन साथ रहे। उन लोगों से हमने प्रेरणा ली कि नहीं, परिवार का मतलब है कि एकजुट रहना।
1: ये आपने बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि आज भी देखा जाता है कि अगर कुछ ही दिनों में अगर दो भाई हो या चार भाई हो, वो लोग अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन इंसान कहता है कि जो पीढ़ी से आदमी इंसान सीखता है, जैसे कि अभी हमारे पिताजी हैं जो छह भाई एक साथ रहते हैं, तो उन्हें देखते हुए भी उनके बच्चों में भी वो संस्कार आते हैं कि
0: बिल्कुल,
1: हमें
0: बिल्कुल।
1: भी उस परिवार को एक साथ अपने परिवार के साथ चलना है।
0: एकदम यही होता ही है, क्योंकि कहते हैं ना कि संगत सबसे बड़ी चीज है
1: जी।
0: तो हमने अपने पापा को देखा, अपने पिताजी को और बड़े पापा को भी देखा कि उन लोगों की संगत बहुत अच्छी थी, एकजुट थे और आज भी
1: एक साथ जब
0: हाँ,
1: साथ रहते हैं कि मजबूती परिवार की जो नींव है वो बनी रहती है
0: जी।
1: हाँ, अच्छा ये बताइए कि आपके दुकान में लेडीज आइटम के अलावा भी और भी कुछ आइटम अलग से होते हैं?
0: जैसे स्कूल बैग हो गया, बच्चों का लंच बॉक्स है, वाटर बोतल है, और लेडीज पर्स तो सब है ही है, लगेज बैग है, ये सारी वैरायटी हमने रखी है, बेल्ट है और वॉलेट है, माने कि ऐसा समझ लीजिए कि बैग लाइन की हर सब कुछ हमारे पास है। हाँ हाँ, उचित मूल्य पे सब मिलता है और क्वालिटी हमारे यहाँ सबसे अच्छी होती है। हम परचेज भी करते हैं तो यही इसी चीज़ को देखते हैं कि हमारी क्वालिटी अच्छी हो, दो पैसा ऊपर नीचे वो तो बिजनेस में चलता रहता है, लेकिन क्वालिटी अच्छी होने से कस्टमर आपके पास रिपीट आएगा,
1: यानी कि आप ग्राहक को संतुष्ट रखते हैं अपनी कीमतों के आधार पर और क्वालिटी के आधार पर।
0: जी जी जी, और सबसे बड़ी चीज देखिए बिजनेस में माना जाता है, आप अगर व्यापार कर रहे हैं तो व्यवहार अच्छा रखिए, अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो कस्टमर रिपीट जरूर आएगा, अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आपने वैरायटी बहुत रखी है, तो भी कस्टमर की उम्मीद ना रखें।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ग्राहक को संतुष्ट करना सबसे बड़ी चीज है, व्यवहार से संतुष्ट।
0: व्यवहार।
1: आप गीत संगीत भी सुनते हैं? गाने
0: सुनते हैं, बिल्कुल बिल्कुल।
1: अच्छा, तो अपने पसंद का कोई गीत बताइए, हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करना चाहेंगे।
0: हमारे पसंद का मोहम्मद रफी साहब का है सॉन्ग, वो आया सावन झूम के, बहुत अच्छा गाना है, उसको आप सुना दीजिएगा।
1: तो आइए इनकी पसंद का ये गीत सुनते हैं।

0: हमने आज एक और मेहनत कश इंसान से बातचीत करने की कोशिश की है जो वाकई में सालों से वे अपने इलाके में किराने की दुकान चला रही हैं और लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा भी कर रही हैं। आइए उनसे भी जानते हैं कि किराने की दुकान को चलाने में उनके सामने क्या अनुभव और चुनौतियाँ आती हैं।
1: अच्छा, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप अपना नाम बताइए।
2: नाम खुशबू मौर्य।
1: अच्छा, आप किस प्रकार का व्यवसाय करती हैं, कौन सा काम करती हैं?
2: किराना दुकान है, मैं किराना सामान बेचती हूँ और यही सब बेचते हैं।
1: अच्छा, आप अपने दुकान में कौन कौन सा आइटम रखती हैं?
2: सिर्फ सब बच्चे का खाने वाला है और थोड़ा मोड़ा सामान पूजा पाठ का है और कुछ नहीं।
1: अच्छा, यानी कि जनरल स्टोर के तहत आपने चॉकलेट, टॉफी, बिस्किट्स वगैरह यही सब आपके दुकान आइटम है?
2: हाँ, सब यही सब आइटम है।
1: अच्छा अच्छा, आप अपने दुकान को चलाते हुए कितने साल हो गए?
2: मेरा हो गया 10-12 साल।
1: अच्छा, आप अपना दुकान 10-12 साल से चला रहे हैं। अच्छा, आपने जब अपना ये दुकान चालू किया था तो आपने ये दुकान अपने शौक से चालू किया था या मजबूरी में चालू किया था, या मतलब किस प्रेरणा से?
2: देखिए, हमारा कोई मजबूरी नहीं था। बच्चा लोग इतना बोल रहा था दुकान खोल लीजिए, ऐसे मम्मी का शौक था खोलने का कि ताकि बच्चा रोड क्रॉस ना करे, इधर से ही सामान लेकर अपना स्कूल में चला जाए। इसी की वजह से मम्मी सोची कि का दिक्कत है, घर बैठने से अच्छा है अपना रोजगार करके तो पैसा कमाएंगे, अपना काम भी होगा और बच्चा लोग इधर नहीं जाएगा, रोड क्रॉस नहीं करेगा, इसकी वजह से मम्मा दुकान खोल लिए।
1: ये आपकी बहुत अच्छी सोच है कि आप बच्चों का ध्यान में रखते हुए और साथ ही आपने सोचा कि भाई घर बैठने से अच्छा है कि हम कुछ करें,
2: कर ले रोजगार, कर ले दो पैसा आएगा, बच्चा भी उधर नहीं जाएगा। पहले नका होता था रोड क्रॉस करने से ना लोगों को धक्का लग जाता था, इसके वजह से ना मम्मी सोची है, चाहे बच्चा लोग भी बोला अपना दुकान कर लीजिए, आपका खुद घर है, मैं ये नहीं रेंट पे है कि दिक्कत होगा, फिर छोड़ना पड़ेगा इसे उसे, तो इसीलिए मामा सोच कर उन लोग को भी बोलने लगा तो मम्मी दुकान खोल ली, अपना अच्छा खासा इनकम भी होता है और
1: समय भी पास हो जाता
2: है, मामा के समय पास होता है, मेरा तो पढ़ाई हम अभी कर रहे हैं।
1: अच्छा, आप रेडियो वगैरह सुनती हैं?
2: हाँ, सुनते हैं।
1: तब तो आप गाने वाने भी सुनती होंगी?
2: गाने हाँ सुनते हैं।
1: अच्छा, तो आप अपनी पसंद का कोई गीत बताइए, हम आपकी पसंद को इस कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे।
2: कन्यादान गीत कोई भी सुनवा दीजिएगा, मेरा अच्छा लगता है कन्यादान गीत सुनने में।
1: अच्छा, तो कन्यादान फिल्म का, आइए इनकी पसंद का ये गीत सुनते हैं।

0: आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है? आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम श्रम संसार, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड नंबर 821115। अब अपनी रेडियो दोस्त चंदा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वर एवं संकलन चंदा देवी, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रम संसार। कार्यक्रम आकाशवाणी सासाराम से प्रसारित किया गया। यह आकाशवाणी सासाराम है, आइए सुनते हैं योगा गीत।

अभी आप सुन रहे थे योगा गीत, ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे केंद्र से लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोक माधुरी। इसमें हम सुनवा रहे हैं भोजपुरी एल्बम से कुछ लोकगीत। पहले लीजिए सुनिए भरत शर्मा ब्यास के स्वर में ये श्रृंगार गीत।

लोक माधुरी कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं भोजपुरी एल्बम से लोकगीत। अब लीजिए सुनिए भरत शर्मा व्यास के ही स्वर में एक और श्रृंगार गीत।

भरत शर्मा व्यास के स्वर में आप सुन रहे थे ये श्रृंगार गीत। रचना और संगीत भरत शर्मा व्यास का ही था। और श्रोताओ, इसी के साथ लोकमाधुरी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी सासाराम है। हमारे केंद्र से अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम रसधार। इसमें हम सुनवा रहे हैं भोजपुरी एल्बम गीत। अरे मिली जी सुनिए ये निर्गुण भजन।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: विज्ञापन से पहले आप सुन रहे थे तनु प्रियंका के स्वर में निर्गुण भजन। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सासाराम से कार्यक्रम रसधार में भोजपुरी एल्बम गीत। अब लीजिए सुनिए तनु प्रियंका की ही आवाज में राजा राजेश तिवारी की ये रचना।

और अब कार्यक्रम के अंत में लीजिए, सुनिए आलोक कुमार और ज्योति कुमारी की आवाजों में अशोक कुमार दीप की ये रचना, गोरिया चांद के अंजुरिया जैसन गोर बाड़ू हो।

0: और श्रोताओं, इसी के साथ रसधार कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 11 बजे हैं। कुछ ही पलों में हम आपके लिए रिले करेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम रंग तरंग लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आप सभी का

0: साधना सरगम और साथियों की आवाज़ में आप सुन रहे थे ग्रेटेस्ट भजन ग्रेटेस्ट सिंगर्स। इस एल्बम से मीराबाई का लिखा ये भजन, जिसमें संगीत केदार पंडित का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत, सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में आप सुन रहे थे गुलदस्ता एल्बम से ये गज़ल, जिसे लिखा अमी खनफी ने और इसे संगीत से सजाया अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन ने। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

तलत अजीज की आवाज में आप सुन रहे थे गजल जिसे लिखा कतील शिफाई ने। तलत अजीज के का संगीत गिफ्ट्स ऑफ सॉन्ग्स एंड गजल इस एल्बम से हमने आपको इसे सुनाया। आपको ये बता दें कि रोजाना शाम 7:45 पर विविध रंगों से सजती है इंद्रधनुष के रंग, जिसमें अलग अलग कार्यक्रम आपको रोजाना सुनाई पड़ते हैं। और आज आप सुन सकते हैं शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम राग अनुराग, तो सुनिएगा शाम 7:45 पर। और इस समय विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग, जिसमें कव्वाली गीत गजल और पॉप गीतों की होती है एक साथ बंदिश और आप इन्हें सुनते हैं। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: पलाश सेन और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे यूफोरिया एल्बम से ये गीत, और विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

बरसात की रात फिल्म से ये कव्वाली आप सुन रहे थे। मन्ना डे, मोहम्मद रफ़ी, एसटी बतीश, सुधा मल्होत्रा, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ आप सुन रहे थे, माफ़ कीजिएगा, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाज़ आप सुन रहे थे। इस कव्वाली में साहिल ध्यानवी ने इसे लिखा, रोशन का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

मैं चंदन हूँ बहू हूँ। इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो, इशारों को अगर समझो।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे धर्मा फिल्म से गीत, वर्मा मलिक का की बोल और सोनी कुमी का संगीत। आपको बता दें कि शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं अभिनेता विजय राज से कमल शर्मा की बातचीत। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की है और विविध भारती पर अगर आप रोजाना रात 10 बजे छाया गीत सुनते ही हैं, लेकिन किसी दिन अगर चूक जाएं तो शाम 5 बजे आप सुन सकते हैं पिछले दिन का छाया गीत जो पुनः प्रसारित होता है। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

जगजीत सिंह की आवाज में सरफरोश फिल्म से ये सुन रहे थे कलाम आप। निदा फाजलीक ने इसे लिखा, जतिन ललित का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

उस्ताद सुजात खान की आवाज़ में सुनिए उन्हीं के संगीतबद्ध किया ये गीत, जिसे लिखा है कमलेश सोनावाला ने और इसे हमने लिया है हवा के झोंकों में एल्बम से।

0: उस्ताद सुजात खान की आवाज़ में आप सुन रहे थे उन्हीं का संगीतबद्ध किया ये गज़ल आपने सुनी। कमलेश सोनावाला ने इसे लिखा और इसे हमने आपको सुनवाया रेड रिबन एल्बम से। इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: रंग

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों

0: दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉर्डर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ भी बैठक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में बनी। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय NR कांग्रेस के विधायक P राजवेलु और VP शिव कोलुंधु तथा भाजपा विधायक GNH राजशेखरन को उपराज्यपाल K कैलाशनाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोनाको के शासक अल्बर्ट द्वितीय से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि इस दौरान नवाचार और उभरते प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत मोनाको साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताह तक खुल जाएगा। इससे ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। ICC महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने आज अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोन मेसी ने मैच में हैट्रिक लगाते हुए इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

0: किशोर कुमार को आप सुन रहे थे जावेद अख्तर की बोल के साथ मशाल फिल्म के इस गीत में हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: अनजान के बोल आप सुन रहे थे राहुल देव बर्मन की तर्ज के साथ। लता मंगेशकर की आवाज जमीन आसमान फिल्म के इस गीत में आपने सुनी। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी

0: GI problem is education, nutrition, एक्सरसाइज एंड वेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर. ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी.
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
0: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है. और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं.
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं समय कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: झूठा सच फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

सोहनी महिवाल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और शब्बीर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, अनु मलिक का संगीत। कार्यक्रम यादों के महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और मेन्यू कार्ड, गीतों का मेन्यू कार्ड नहीं बल्कि मेन्यू कार्ड नामक नाटिका आप सुन सकते हैं रात 8 बजे हवा महल में। मूल कहानी लिखी है ओ हेनरी ने, जिसका हिंदी नाट्य रूपांतरण किया है मुरली मनोहर जोशी ने और निर्देशन है मुख्तार अहमद का। तो आज रात 8 बजे सुनिएगा नाटिका मेन्यू कार्ड हवा महल में। और इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

प्यार झुकता नहीं फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ें। माफ कीजिएगा, लता मंगेशकर की आवाज़ में ही ये गीत फिलहाल आपने सुना। एसएच बिहारी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत। इसके साथ ही यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम के शुरुआत के पहले आपको बता दें आज की इबारत यानी टेक्स्ट क्या है। तो आज की इबारत है, हर सवाल का जवाब हो ये जरूरी तो नहीं, हर जवाब का सवाल हो ये भी कहां जरूरी है। अब आप ही सोचिए कब कौन कहां किससे क्यों और कैसे मिलेगा और क्या कहेगा, ये कोई जानता है भला? नहीं, या जानकर भी कुछ सवाल और जवाब अनजान से राहों में भटकते रहते हैं। वैसे सवालों को उनके जवाबों से मिलाने की कोशिश में ही तो हम कभी सवालों के पीछे जवाब लिए तो कभी जवाबों के लिए सवाल ढूंढने घूमते रहते हैं। पर जिंदगी भाई वो तो इन सारे सवालों जवाबों से परे होती है। तो ये है आज की इबारत और टेक्स्ट। और जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों या कहें कि जब से सुरीला सफर शुरू हुआ है तो हम एक इबारत रोजाना फेसबुक पर पोस्ट करते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। आप इस इबारत या टेक्स्ट को जानते हैं और इसमें ही कुछ शब्द छुपे होते हैं जिनसे गीत कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। अगर आप अब तक हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो टाइप कीजिए फेसबुक पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai और आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के पेज पर पहुंच जाएंगे। हिंदी में लिखा है ये विविध भारती राष्ट्रीय सेवा और इसमें जाकर आप हमारे सभी कार्यक्रमों की जानकारी भी हासिल कर पाएंगे और सुरीला सफर की पोस्ट भी आपको वहीं मिल जाएगी जिसके कमेंट के जरिए आप अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं। तो हमारे साथियों ने आज की इबारत और टेक्स्ट पढ़कर ये अंदाजा लगाया है कि कुछ सवाल जवाब की बातें होने वाली हैं। सुरीला सफर में तो खैर वैसे भी सवाल जवाब की बातें होती ही हैं, लेकिन हमारे एक साथी लिखते हैं कि कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ काम, सवालों से मिलता है हर बात का नाम, जिज्ञासा जगाती है ज्ञान की आस, उत्तर से खुलते हैं समझ के प्रकाश। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारे बहुत से साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं, लेकिन क्योंकि कार्यक्रम में गीत भी तो जरूरी हैं तो गीत आपको सुनाएंगे। उससे पहले आपसे हम पूछना चाहते हैं कुछ सवाल। तो ये बताइए कि ऐसे कौन से सवाल हैं जिनके जवाब आपको अब तक नहीं मिले, या ऐसे कौन से जवाब हैं जिनके सवाल आपसे पूछे ही नहीं गए, और कौन सा सवाल ऐसा है जो आपको सबसे कठिन लगता है, और कौन सा ऐसा सवाल है जो आपको लगता है कि इसे तो पूछना ही नहीं चाहिए किसी से भी, किस तरह के जवाब आपको पसंद नहीं आते, और किस तरह का जब जवाब देने का आपका मन नहीं होता है तो किस तरह से आप टालते हैं कोई बात। तो ये सारी बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं, अपने अनुभव हमसे साझा कर सकते हैं कि कभी आपसे अगर पूछा गया हो ऐसा सवाल जिसने आपको असमंजस में डाल दिया हो कि इसका जवाब क्या दें। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी सवाल का जवाब हमें पता होता है लेकिन हम कह नहीं पाते क्योंकि कुछ परिस्थिति ऐसी होती है। तो इस तरह की कोई परिस्थिति अगर आपके सामने आई हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, और कुछ फिल्मों से जुड़ी बातें भी आप हमें बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी फिल्म है जिसने आपके मन में कई सवाल छोड़ दिए, या कोई ऐसी फिल्म भी हो सकती है जिसने आपके मन के सवालों को हल कर दिया हो कोई जवाब देकर। तो ये सारी बातें होंगी इस एक घंटे के दौरान। तब तक हम आपको सुनवाने वाले हैं कार्यक्रम का पहला गीत। हालांकि आप सभी ने बहुत सारा अंदाजा तो लगाया है, कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, आवाज किसकी है ये पहचानिए।

देख कबीरा रोया फिल्म का ये गीत मन्ना डे की आवाज में आप सुन रहे थे और हमारे साथियों ने ये भी बताया कि अनूप कुमार पर फिल्माया गया है ये गीत, तो बिल्कुल सही जवाब। वही हमारी एक साथी कहती है कि इतने सारे सवाल एक साथ धीरे धीरे पूछिए सवाल, तो भाई एक साथ इसलिए हमने सारे सवाल आपसे कह दिए क्योंकि आप अपनी सुविधा अनुसार धीरे धीरे जवाब देते रहें और अगर आपको चाहिए तो बीच बीच में तो हम अपना सवाल दोहराते भी रहेंगे। वैसे हमारे एक साथी ने कह दिया है कि उन्हें नापसंद आने वाले सवालों में से पुरुषों के लिए है उनकी आय और महिलाओं के लिए है उनकी आयु, ये सवाल पसंद नहीं आते। वैसे हम कहें कि तो इसका उल्टा भी हो सकता है भाई, महिलाओं से भी अब उनकी आय ना पूछी जाए और ना ही पुरुषों से पूछी जाए उनकी उम्र, तो ये सवाल तो बिल्कुल ही हमें छोड़ देने चाहिए। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सवालों जवाब पर तो कई फिल्मों में गीतकारों ने गीत लिखे हैं, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन कार्यक्रम के अनुसार समय के अनुसार गीत शामिल किए जा रहे हैं। हाँ, तो इस गीत में पूछा गया कि कौन आया मेरे मन के द्वारे, एक सवाल था, लेकिन जब कोई हमारे मन के द्वारे या कहें कि घर के द्वारे तक आ ही जाता है तो हम पूछते हैं उससे सबसे पहले एक सवाल, और जब भी किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले भी वही सवाल पूछते हैं। कुछ ऐसा ही एक गीत है जिसमें किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें हैं, तो अगर आप वो गीत पहचान सकें तो बड़ी अच्छी बात होगी। और तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत जो कि शायद सभी के लिस्ट में है, और इस गीत में बोल किसके हैं ये आपको हमें बताना है।

0: शैलेंद्र का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे ससुराल फिल्म में।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर, जिसमें सवाल जवाब का सिलसिला जारी हो चुका है और कई सवाल हमने आपने पूछे, ये कि ऐसे कौन से सवाल हैं जिनका जवाब आपको अब तक नहीं मिला, या ऐसे कौन से जवाब हैं जिनके सवाल आपसे पूछे नहीं गए, कौन सा सवाल ऐसा है जो कठिन लगता है और कौन से ऐसे सवाल हैं जो पूछे नहीं जाने चाहिए। अगर आपको पसंद ना हो तो आप जवाब न देने के क्या क्या तरकीबें लगाते हैं, और जब जवाब देने आपको पसंद नहीं आए तो कैसे जवाब वो थे जो आपको पसंद नहीं आते। वहीं हमने पूछा था कि कौन सी फिल्म है जिसने कई सवाल आपके मन में छोड़ दिए थे, तो इसके बारे में मारिक साथी ने लिखा है कि बागबान फिल्म ऐसी फिल्म थी जिसको देखने के बाद कई सारे सवाल मन में चल रहे थे। हमारिक साथी लिखती है कि जिंदगी एक अनसुलझी पहेली है जहां हर मोड़ पर एक नया सफर हमारा इंतजार कर रहा है, कौन कब और कहां हमें मिल जाए ये कोई नहीं जानता, अनजाने रास्ते, अजनबी चेहरे और अचानक होने वाली मुलाकातें ही तो इस सफर को खूबसूरत और रोमांचक बनाते हैं, बस हर पल का खुले दिल से स्वागत करें। और हमारे साथियों ने, हमने तो ये गीत सुनवाया ही, एक सवाल मैं करूं एक सवाल तुम करो, इससे थोड़ा ज्यादा ही संजीदा रूप में ले लिया और उन्होंने भी हमसे सवाल करने शुरू कर दिए हैं, जैसे कि आप कहाँ थीं, क्यों नहीं आ रही थीं। इसी तरह से हमारे कई साथियों ने लिखा, एक साथी ने तो लिखा कि अमर अकबर एंथनी में जो माँ होती है, छोटा बच्चा तो उनके सामने ही रोता रहता है, तो उसे पहचाना क्यों नहीं उन्होंने, क्योंकि वो उसकी आवाज तो सुन पा रही थी। भाई, इन सवालों का जवाब तो हमारे पास नहीं है फिलहाल, लेकिन हम जो सवाल आपसे पूछेंगे उनका जवाब जरूर आपके पास है, ये हमें पता है। वैसे एक सवाल मैंने जो पूछा है आपसे, उसका भी जवाब आपने हमें दिया नहीं कि जब हम किसी से मिलते हैं तो क्या पूछते हैं। कुछ ऐसा ही एक गीत है जिसे किशोर कुमार और आशा भोसले ने गाया है। अगर आपको और भी ज्यादा हिंट चाहिए, नहीं, देखिए जवाब आ गया। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, चलती का नाम गाड़ी फिल्म का ये गीत है। हमारे साथी ने बिल्कुल सही जवाब दिया और ये गीत हम आपको सुनवाएं, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाने वाले हैं

जैनिता अख्तर ने लिखा इस गीत को। ब्लैक कैट फिल्म से गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में आपने सुना और एनदत्ता का संगीत था। कार्यक्रम सुरीला सफर चल रहा है इस वक्त विविध भारती पर और आप सवालों जवाबों के बारे में सोच रहे हैं। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें कही, कौन सा सवाल कठिन लगता है या कौन से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए, इस पर बहुत से साथियों ने जवाब दिया कि मुझे ये सवाल हमेशा कचोटता रहता है। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि इस दुनिया में कोई अमीर कोई गरीब क्यों है, फिर यकायक गीत मेरे होंठों पर आ जाता है कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। उसी तरह से हमारे साथी कह रहे हैं कि सैलरी के बारे में पूछना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत से लोग पूछते हैं तो उसका जवाब देना भी पसंद नहीं आता। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मैथ्स के जो सवाल होते हैं वो बड़े कठिन होते हैं, वो ना पूछे जाए। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो कई सवालों का जवाब नहीं दे पाते थे, कुछ तो डर के मारे भूल जाते थे। जब फिजिक्स वाले सर सवाल का जवाब पूछते थे तो डर के मारे नहीं बता पाते थे, आते हुए भी पता नहीं क्यों हम उनसे डरते थे, बाकी सब टीचर से मस्त आराम से बातें करते थे, मस्ती भी करते थे। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आपने सवाल क्या पूछा, हम तो समझ नहीं पाए। तो ठीक है, फिर से हम आपको सवाल तो दोहराने वाले ही हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि धैर्य रखें, आज आप जिसे जवाब नहीं दे पा रहे उसे समय स्वयं जवाब देगा। वहीं हमारी एक और साथी ने लिखा कि कभी किसी स्त्री से कोई पुष्टि ही नहीं की जाती कि तुम क्या चाहती हो, मशीन के तरह घर के बाहर के काम करते रहती है परिवार के लिए, अगर आन पड़े तो कमाने भी लग जाती है, लेकिन सभी बातों में एक सवाल अधूरा ही रह जाता है कि तुम क्या

चाहती हूँ। बिल्कुल, बहुत ही जरूरी सवाल आपने लिख भेजा। ये सवाल तो पूछा ही नहीं जाता, जिसे जरूर पूछना चाहिए। वहीं एक और जरूरी सवाल है जिससे रोजाना हम दो चार होते हैं। हमारे साथी ने लिखा, मुझे रोज एक ही सवाल परेशान करता है कि आज खाने में क्या बनेगा, और जब लोग ये कहते हैं कि कुछ भी बना लो, तो ये कुछ भी क्या होता है? वाकई, तो ये कुछ भी क्या होता है, ये सवाल जो है इनके मन में चल रहा है, और खाने में क्या बनेगा ये भी इनके मन में हमेशा चलता रहता है। लेकिन मन में क्या चल रहा है ये तो तभी पता चलेगा जब आपका मनचाहा गीत हमारे गीत के साथ शायद मैच हो जाए। चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगले गीत। बताइए किस फिल्म का ये गीत है।

गैमलर फिल्म से गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं सुरीला सफर, और सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। वैसे हमारे साथी कह रहे हैं कि बहुत सी बातें कह रहे हैं और क्या क्या सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए

उन पर हमारे साथी कह रहे हैं कि जब किन का जवाब नहीं देते बनता है, इस पर भी हमारे साथी कह रहे हैं कि भाई जब पत्नी पूछे कि क्या बना कैसी लग रही हूं, तो उसका जवाब देना बड़ा कठिन होता है। वहीं वो कह रहे हैं कि जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, इस प्रश्न का जवाब भी अभी तक नहीं मिला। तो कुछ मुश्किल सवाल जवाब के बारे में तो इन्होंने लिखा। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरे दो बेटे हैं और हरदम पूछा जाता है कि लाडला कौन है। ऐसे सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए क्योंकि माँ को अपनी संतान एक समान प्रिय होती है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जब उम्र पूछा जाती है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कोई भी अपनी उम्र, खासतौर से लड़कियों से अगर पूछी जाती है तो ये सवाल सही नहीं लगते। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कौन सा बच्चा प्यारा है जब पूछा जाए, या किसी ज्यादा भाई बहन से ज्यादा आपकी किससे ज्यादा दोस्ती है ये पूछा जाए, या पूछा जाए कि कौन से गाने आपको पसंद है, लता जी के, रफी जी के, या किसी भी इस तरह से गायकों के नाम लेकर पूछा जाता है, या कौन सा फिल्मी गाना अधिक पसंद है। इस तरह के जो सवाल हैं वो बड़े मुश्किल लगते हैं। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि जीवन में इस तरह के सवाल जवाब, यानी कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों, ये बहुत होते हैं। दुख सुख के सुर तो आते जाते रहते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं जिसके पास हर सवाल का जवाब हो, बल्कि वो है जो ये समझ सके कि कुछ चीजों को वक्त के भरोसे छोड़ देना और इन सुरीले सफर का मजा लेना ही जिंदगी है। ना इब्तिदा की खबर है, ना इंतहा का पता है, जिंदगी बस एक सुरीला सफर है और तू ही मेरी रहनुमा है। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से जवाब हमारे साथी लिख भेज रहे हैं, लेकिन ये तो बताइए कि वो कौन सा ऐसा जवाब है, किस तरह का जवाब है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता। या एक और बात आप बता सकते हैं ये कि अगर खुद से कोई सवाल पूछना हो, क्योंकि कई बार हमें खुद से भी कुछ सवाल पूछने पड़ते हैं कि आखिर तुम चाहते क्या हो, इस तरह के कई सवाल होते हैं, तो अगर आप खुद से कोई सवाल पूछना चाहें तो वो सवाल क्या होगा। मान लीजिए कि आज ही आपको अगर अपने आप से कोई सवाल पूछना है तो ये बताइए कि वो सवाल क्या होगा। और तब तक हम आपको कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा रहे हैं, क्योंकि भाई इतनी देर हो गई हम सभी को मिले हुए, लेकिन हमने तो आपसे आपका हाल ही नहीं पूछा। तो वो हाल पूछ रहा है ये गीत और आपको सुनवा रहे हैं। हमें ये बताइए कि इस फिल्म में नायक नायिका कौन थे।

चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, और इस फिल्म में नायक नायिका किशोर कुमार और मधुबाला इस गीत में नजर आते हैं। और हमारे साथियों ने तो इतनी सारी गाड़ी चला दी है सवालों की, उन्होंने तो हमसे ही सवाल पूछने शुरू कर दिए। भाई एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, जो गीत हमने सुनवाया उसका अर्थ ये थोड़ी था कि आप हमसे सवाल करते ही चले जाएं। देखिए आपके पास तो जवाब देने का ऑप्शन उपलब्ध है और आप देते रहते हैं जवाब। हमारे एक साथी ने कहा कि अज्ञात फिल्म ने बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में छोड़ दिए। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं और सवाल पूछते हैं तो शब्दों से ज्यादा हमारी आवाज का लहजा और आंखों की चमक मायने रखती है। सवाल चाहे जो भी हो, अगर उसके पीछे सच्ची आत्मीयता है तो सामने वाला अपनी हर फिक्र भूलकर मुस्कुरा देता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जिंदगी के दिए सवाल जवाब बहुत कठिन लगते हैं, ना तो सवाल समझ में आते हैं ना जवाब। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उनके घर में एक छोटी बेबी है, बच्ची है उनकी, और उनकी या उनकी नाती पोती वो हो सकती हैं, और वो जब सवाल पूछती हैं सवाल पर सवाल सवाल पर सवाल, तो उस नन्ही परी के सवालों के जवाब देते देते थक जाते हैं, लेकिन उसके सवाल बिल्कुल भी नहीं खत्म होते। लेकिन इसी तरह से तो वो अपने जान पाएंगी इस दुनिया को और आसपास के लोगों को। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बेसिर पैर बेतुका सवालों सवाल पसंद नहीं आते, परिचर्चा के विषय वस्तु से दूर अवांछनीय सवालों से इन्हें चिढ़ है। वहीं हमारे एक साथी तो ये पूछ रहे हैं कि आपकी ड्यूटी कितने घंटे की होती है, ये सवाल जरा छोटा सा ही है, ऐसा वो कह रहे हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब आप इबारत तैयार करते हैं तो उसमें बहुत कुछ सोच के आते होंगे, पर प्रोग्राम शुरू होता है तो सब कुछ अलग हो जाता है संदेशों के साथ, तो आप ये सब कैसे मैनेज करते हैं? तो भाई हम तो यही कहेंगे कि आप सभी का साथ मिलता है तो जो भी हम सोच कर आते हैं उससे ज्यादा अच्छी हो जाती है सोच, और कार्यक्रम में आप सभी का सहयोग जब मिलता है तो कार्यक्रम भी बहुत अच्छा होता जाता है। तो आप सभी के सहयोग से ये सवाल जवाब जो हो रहा है, या कहें कि ये कार्यक्रम जब होता है तो आपका सहयोग भी पूरी तरह से होता है, तो 50-50% पार्टनरशिप पे चल रहे हैं हम, ऐसा कह सकते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, इसे वक्त पर छोड़ देना चाहिए, और वक्त इतना सटीक हल उसका निकाल कर जवाब देता ही है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नाइट में भी आपकी ड्यूटीज होती हैं क्या, जैसे रेलवे में होती हैं? और हमारे एक और साथी पूछ रहे हैं कि भाई आप कौन तय करता है कि कौन आएगा सुरीला सफर में? तो ये विविध भारती से जुड़े जो भी सवाल आपने पूछे उसका जवाब तो आपको यहीं आकर मिलेगा, तो अगली बार जब आप आए तो यहाँ की सैर पर आइएगा और आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ये सवाल भी अक्सर जहन में आता है कि जीवन एक सफर है तो मृत्यु क्या है? भाई बहुत ही गहन सवाल है ये, और इसके बारे में जवाब ढूंढते ढूंढते कई दार्शनिक बहुत सी बातें लिख भी गए हैं, बट इस पे तो सोचना बहुत ही गहराई से सोचना पड़ सकता है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नए जोड़ों के साथी अंतरंगता की बातें अक्सर पूछते हैं, वो नहीं पूछने चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कही। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि शादी के लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो सवाल ये है कि शादी के लड्डू ही क्यों, कड़वा करेला भी तो हो सकता है। तो भाई नेक्स्ट टाइम जब आपके आसपास किसी की शादी हो तो आप कहिएगा कि इस बार लड्डू ना बनाएं और बनाएं करेला, देखें आपकी बात अगर वो मानते हैं तो फिर इस कहावत को हम बदल भी सकते हैं, क्योंकि शादी में तो भाई लड्डू वड्डू ही मिलते हैं, मिठाई मिलती है, करेला तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। चलिए तो अब हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला।

जवानी दीवानी फिल्म का ये गीत आपने सुना, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें। हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया और हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि कोई भी बच्चे जब आपस में एक दूसरे से सवाल करते हैं कि मम्मी ज्यादा अच्छे लगते हैं क्या पापा, वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि एक सवाल पूछ ही लेता हूँ, जन्म के समय आत्मा आई थी या देह परिवर्तन के समय आत्मा ही जाती है, तो ये सवाल है कि मन आया किधर से? और इस सवाल का जवाब हमारे पास तो नहीं है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बहुत सी बातें होती हैं जो नहीं पूछनी चाहिए, और इस फहरिस्त में हमारे एक साथी ने, उन्होंने अंग्रेजी में अपना जवाब लिखा है तो उसे हम हिंदी अनुवाद करके आपको सुनवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसी को भी, किसी भी युवा बच्चे जो होते हैं, लड़के होते हैं, उनके माता पिता से या उनसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि वो शादी कब करने वाले हैं, या जो नई नई इनकी शादी होती है, नवविवाहिता होती है, उनकी माओं से ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपकी बेटी कब माँ बनेगी, या फिर उनकी शादी, किसी की शादी से संबंधित सवाल नहीं पूछना चाहिए, और अगर उन्हें बुलाया गया है तो भी किस तरह से बातें नहीं पूछनी चाहिए, कि कभी भी कोई अगर कोई गर्भवती भी है तो उससे भी ये नहीं पूछना चाहिए कि गुड न्यूज़ कब दे रहे हैं, और इस तरह की बातें, क्योंकि परेशान करती हैं जिनको भी, जिनकी भी संबंधित होती हैं परेशानी, उन्हें परेशान करती हैं, इसलिए आपको इस तरह के सवाल नहीं पूछना चाहिए। वहीं हमारे एक साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उनको क्या सवाल नहीं पूछना चाहिए, वो कह रहे हैं कि एक सवाल पूछ रहा हूं कि आसमान में उड़ने वाले बादल इतना सारा पानी कैसे लेकर उड़ सकते हैं, जिनमें पानी के टैंकर होते हैं जिसमें शहर और गाँव में बरसते हैं और पूरा गाँव शहर तर बतर हो जाता है। विज्ञान का सवाल है, जवाब हो तो जरूर देना। भाई इसका जवाब इतना बड़ा है कि इसका जवाब तो आपको विज्ञान की किताब का एक पन्ना भेजकर ही हमारे

साथी दे देंगे। तो जिस भी साथी के पास वो पन्ना है वो उन्हें जरूर भेजें। और हमारे एक और साथी कह रही हैं कि कौन सा सवाल खुद से पूछना चाहेंगे, उसमें उन्होंने पूछा है कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, मैं अपने काम ठीक से नहीं कर पा रही, क्यों नहीं कर पा रही हूँ, इस तरह के सवाल वो पूछना चाहती हैं खुद से। तो हम उन्हें बस ये जवाब देना चाहेंगे कि आपको थोड़ा आराम करना चाहिए और खुद को लेकर थोड़ा नर्म पड़ना चाहिए, तो इससे आप जरूर अपने कामों को पूरी तरह से कर सकेंगी। और खुद को जज करना कुछ दिनों के लिए बंद कीजिए और अपने आप ये सोचिए कि आप जरूर कर पाएंगी उन कामों को, शायद थोड़ी थकान हो, तो इस तरह से इस जवाब से शायद आपको कुछ आराम मिले। और कुछ आराम आपको इस गीत से भी मिल सकता है। तो सुनिए ये गीत और हमें बताइए किस फिल्म का ये गीत है और लिखा किसने है।

0: चंद्रसेना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे।
1: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम

0: हर बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर, जिसमें बात हो रही है सवालों और जवाबों की। बहुत से ऐसे सवाल जिनके जवाब नहीं मिलते, या बहुत से ऐसे सवाल जिनसे हम चाहते हैं कि कोई हमसे पूछे ही ना, या जिनके जवाब हम देना ही नहीं चाहते, और कुछ ऐसे सवाल जो हम खुद से पूछना चाहते हैं। इन सभी के बारे में आपने लिखा है। हमारे एक साथी कहते हैं कि मैं क्या किसी के सवाल का जवाब दूंगी, मेरी तो फोन की बैटरी जवाब दे चुकी, बिजली धोखा दे गई और फोन की मानो चंद सांसें गिनती की रह गई, और अन्य कोई साधन भी उपलब्ध नहीं कि फोन चार्ज हो सके। बस अब श्रवण कुमार बनेंगे वक्ता बाबू तो बनने से रहे, सुनेंगे रेडियो सेट पर शेष प्रोग्राम। शुक्र है रेडियो की बैटरी अपने पूरे शबाब पर है। चलिए अच्छी बात है कि आप कार्यक्रम में किसी भी तरह से शामिल तो हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि स्कूल के समय में गणित का सवाल जब सबसे खतरनाक लगता था, 8वीं क्लास में 0 नंबर मिले थे और बहुत पिटाई हुई थी, उसके बाद पूरी नौकरी में गणित का ही काम करना पड़ा, लेकिन गणित आज भी नहीं आती। भाई तो हमारा सवाल तो यही कि गणित नहीं आती, फिर भी गणित का इतना काम कैसे कर लेते हैं आप। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज आपके सवाल जवाब ने बचपन में पिताजी की मार याद दिला दी है। जब वो गणित पढ़ाते थे तो सवाल का जवाब पता होता था, लेकिन उनके आगे जुबान नहीं खुलती थी, जब एक थप्पड़ पड़ते तो झट से जवाब देता था। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब कोई घर का सदस्य बाहर जा रहा हो किसी महत्वपूर्ण काम से, तो कहाँ जा रहे हो, इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए। और हमारी कौर साथी ने कहा, अगर मैं खुद से सवाल करती हूँ कि मैं सबके लिए जीती हूँ, खुद के लिए कब जी पाऊंगी, जिसमें कुछ पल मेरे बिल्कुल अपने हों, तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लगता है। भाई इस इम्पॉसिबल को आप पॉसिबल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कुछ वक्त अपने लिए निकालने लगेंगे तो वाकई घर के सदस्यों को भी इसकी आदत होती जाएगी और आप वाकई अपने लिए वो समय निकाल पाएंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही आप इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाएंगी, लेकिन इससे पहले हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का ये गीत, और ये गीत सुनकर हमें आप बताइए कि किसका संगीत है, फिल्म का नाम भी।

बुढ़ा मिल गया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मन्ना डे और अर्चना की आवाज है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव वर्मन का संगीत। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज की भारत एक ऐसे तथ्य को उजागर करती है जिसकी तलाश में सारी जिंदगी हम व्यतीत कर लेते हैं और मिलकर भी हमें वो चीज नहीं मिलती। हम पूरी जिंदगी या तो अपने सवालों के लिए सही जवाब ढूंढते रहते हैं या फिर मिले हुए अनुभवों को सही साबित करने के लिए नए सवाल खड़े करते रहते हैं। राहों में इन सवालों का भटकना भी इस सफर का एक खूबसूरत हिस्सा है। सवाल और जवाब के ताने बाने से इंसानी जहन की कश्मकश को बड़े ही सरल मगर गहरे शब्दों में पिरोया है। वहीं मारिक और साथी कहती हैं कि सवाल जवाब तो जब तक जीवन है चलते ही रहेंगे। हाँ, कुछ सवाल के जवाब हमेशा अनुत्तरित रह जाते हैं। दरअसल कभी कभी किसी सवाल का जवाब ना मिले उसी में बड़ी खूबसूरती छिपी होती है। हर सवाल का जवाब मिल जाए तो जिंदगी में फिर रोमांच ही खत्म हो जाए। जिंदगी के सवाल जवाब को जितनी गंभीरता से लोगे उतनी ही पीड़ा होगी। जीवन का सबसे निश्चल पक्ष है जो जैसा है वैसा ही ग्रहण करो, मगर सवाल जवाब भी करते रहना चाहिए क्योंकि इससे जीवन में जिज्ञासा बनी रहती है। वहीं हमारे और साथी कहते हैं कि आज की भारत जीवन केवल सवालों और जवाबों का गणित नहीं है। जीवन में कई मुलाकातें, घटनाएं और रिश्ते बिना किसी पूर्व योजना के बनते हैं। कई प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं, कई उत्तर समय के साथ स्वयं मिल जाते हैं। इसलिए हर बात को तर्क और उत्तरों में बांधने के बजाय जीवन के रहस्यों, संयोगों और अनुभवों को स्वीकार करना चाहिए। एक और साथी कहते हैं, सवालों जवाबों में उलझी जिंदगी आज आखिर मुकाम पर पहुंच चुकी है। तमाम सवाल अधूरे रह गए जिनके जवाब हमने खोजे ही नहीं और अपनी जिंदगी को तबाह करते चले गए। कुछ मजबूरियां थी जो कह रही थी कि जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, फिर सवाल जवाब में उलझे तो अच्छा होने के बजाय और बुरा हो सकता था। आज सवाल जवाब की बातें चली तो वो दिन याद आ गए कि एक कंपनी में सर्वे सर्वा था और कुछ लोग बेईमानी में शामिल होने का भरसक प्रयास किए। मैं उनके साथ नहीं गया। आज उन्हीं बेईमान लोगों के हाथों कंपनी की बागडोर चली है और हम सब कुछ छोड़कर घर में बैठ गए हैं। तो ये बातें हमारे साथियों ने लिख भेजी हैं जिसमें बहुत सी उनके मन की गूढ़ बातें शामिल हैं। वहीं मालिक साथी का कहना है कि रोज अपने दिल से एक सवाल पूछते हैं कि क्या हमारी वजह से आज कोई मुस्कुराया। अक्सर जवाब हाँ में होता है पर कभी कभी ना में भी होता है। तो हमारी कौर साथी ने कहा कि जिस सवाल का टेढ़ा जवाब दिया जाता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कोई भी टेढ़ा जवाब देता है, बदतमीजी से बात करता है तो अच्छा नहीं लगता। एक और साथी कहती हैं कि सवाल जवाब के बारे में उन्होंने लिख भेजा है कि जिंदगी वाकई इन कब कहां कैसे की उलझनों से कहीं ऊपर एक अनसुलझा खूबसूरत सफर है। कभी प्रश्न आईना बनकर हमारा असली रूप दिखाते हैं, कभी बादल बनकर मन के आकाश को नया आकार दे जाते हैं। कुछ सवालों को उत्तर चाहिए पर कुछ सवाल बस महसूस किए जाने के लिए होते हैं। अक्सर इन्हीं अनुत्तरित प्रश्नों की चुप्पी में जीवन की सबसे गहरी सीख छुपी होती है। अतः सवालों जवाबों के अंतहीन चक्र में उलझने के बजाय जिंदगी का असली मजा लीजिए तो अनजानी राहों की खूबसूरती को महसूस करने और हर पल को बिना किसी शर्त के जीने में ही जिंदगी का मजा छिपा है। और अब आपको कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनवाते हैं। बताइए किस फिल्म का है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजधानी पटना में विकसित होने वाले नए टाउनशिप का नाम पाटलिपुत्र करने की घोषणा की है। श्री चौधरी आज पटना के फुलवारी शरीफ में नदियाबा में प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से राज्य को मिलने वाली 4000 करोड़ रुपए की बकाया राशि 30 जून तक उपलब्ध करा दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि शीघ्र ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का शिलान्यास करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि कोइलवर से भागलपुर तक 83 किलोमीटर लंबे गंगा पाथवे का निर्माण कराया जाएगा। इस पर 17000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने शिविर में पहुंचे लोगों की शिकायतें सुनी और उनके समाधान के अधिकारियों को निर्देश दिए। समारोह को उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने भी संबोधित किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पटना के नौबतपुर स्थित राज्य बीज उत्पादन फार्म में खेत बचाओ अभियान में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्री चौहान किसानों के साथ संवाद भी करेंगे। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में कृषि ग्रामीण विकास, विकसित भारत जीराम जी अधिनियम, पीएम आवास योजना और केंद्र राज्य समन्वय से जुड़े मुद्दों पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री का विद्यापति भवन में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में भाग लेने का कार्यक्रम है, जहां वे केंद्र सरकार की उपलब्धियों और आगामी प्राथमिकताओं पर अपने विचार रखेंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूर।

0: दर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मद्य निषेध कारा और परिवहन विभाग में सिपाही तथा कक्षपाल की नियुक्ति के लिए आज दो पालियों में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती से प्राप्त जानकारी के अनुसार परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 544 केंद्र बनाए गए हैं। 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इधर रेलवे ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आज 25 विशेष ट्रेनों के संचालन की व्यवस्था की है। ये ट्रेनें पटना, बक्सर, गया, सोनपुर, सहरसा, मधुबनी और बेतिया समेत विभिन्न स्टेशनों से परिचालित की जाएंगी। रेल प्रशासन ने अभ्यर्थियों से समय से पहले स्टेशन पहुंचने और निर्धारित ट्रेनों का उपयोग करने की अपील की है। गृह विभाग ने केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती परीक्षा को स्थगित करने के संबंध में चल रही भ्रामक सूचनाओं का खंडन किया है। परिषद की ओर से जारी पत्र के अनुसार आज दोनों पालियों में आयोजित होने वाली लिखित परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही संचालित की जाएंगी। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता में कमी आने से 1 जून से अब तक सामान्य से 32% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली मानसून की दोनों शाखाएं कमजोर हैं। बारिश की कमी के कारण पटना समेत 7 जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 42.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। किशनगंज के तैयबपुर में सबसे अधिक 12.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों में गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सारण, सीतामढ़ी, नालंदा और शेखपुरा जिले में तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की आशंका है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
3: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला सम्राट चौधरी ने राजधानी पटना में तैयार होने वाली नई टाउनशिप का नाम पाटलिपुत्रा रखने का ऐलान किया है। जनाब चौधरी आज पटना के फुलवारी शरीफ के नदियावां में प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार के तारीखी और सकाफती वर्से को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। मिस्टर चौधरी ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासत को मिलने वाली 4,000 करोड़ रुपये की बकाया रकम 30 जून तक फराहम करा दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखा जाएगा। वजीर आला ने मालूमात दी कि कोइलवर से भागलपुर तक 83 किलोमीटर तवील गंगा पाथवे तामीर किया जाएगा। इस पर 17,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने खुशहाल बिहार और तरक्की याफ्ता बिहार का जिक्र करते हुए कहा कि आज मंजरनामा पूरी तरह बदल चुका है और रियासत में सरमायाकारी के इम्कानात बढ़े हैं। इससे पहले वजीर आला ने कैंप में पहुंचे लोगों की शिकायतें सुनी और उनके हल के लिए हुकाम को हिदायत दी। तकरीब से नायब वजीर आला विजय कुमार चौधरी और कोऑपरेटिव के वजीर रामकृपाल यादव ने भी खिताब किया। मरकजी वजीर बराए ज़रात और किसान फलाह बहबूद शिवराज सिंह चौहान आज पटना के नौबतपुर में वाक़ स्टेट सीड प्रोडक्शन फार्म में खेत बचाओ अभियान में शामिल होंगे। प्रोग्राम के दौरान जनाब चौहान किसानों के साथ तबादला ख्याल भी करेंगे। इससे कबल मरकजी वजीर ने आज वजीर आला सम्राट चौधरी के साथ एक आला सतही मीटिंग की। मीटिंग में बुनियादी तौर पर ज़रात, देही तरक्की, विकसित भारत, जी राम जी एक्ट, पीएम आवास योजना और मरकज और रियासत के तालमेल से जुड़े मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। हमारे नामानिगार ने बताया कि मरकजी वजीर मिस्टर चौहान ने आज सुबह पटना के गोलघर अहाते में सफाई मुहिम के प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया। साथ ही वो एमएलए फ्लैट अहाते में शजरकारी के

0: प्रोग्राम में शामिल हुए। मरकजी वजीर का विद्यापति भवन में मुनाकिद होने वाले विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शिरकत का प्रोग्राम है, जहां वो मरकजी हुकूमत की कामयाबियों और आइंदा की तरजीहात पर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। महकमा एक्साइज, जेल और ट्रांसपोर्ट में कांस्टेबल और वार्डन की तकर्री के लिए आज दो शिफ्टों में इम्तहान का इनाकाद किया जा रहा है। इम्तहान के पेश नज़र सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक इम्तहान के लिए रियासत भर में 544 मराकज बनाए गए हैं। 5 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार इम्तहान में शामिल हो रहे हैं। दूसरी तरफ रेलवे ने उम्मीदवारों की सहूलत के लिए आज 25 स्पेशल ट्रेनें चलाने का इंतज़ाम किया है। ये ट्रेनें पटना, बक्सर, गया, सोनपुर, सहरसा, मधुबनी और बेतिया समेत मुख्तलिफ स्टेशनों से चलाई जाएंगी। रेलवे इंतजामिया ने उम्मीदवारों से पहले वक्त पर स्टेशन पहुँचने और मुकर्रा ट्रेनों का इस्तेमाल करने की अपील की है। महकमा दाखला ने सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड सिपाही भर्ती इम्तहान को मुलतवी करने के सिलसिले में चल रही गुमराह कुन अफवाहों की तरदीद की है। बोर्ड की जानिब से जारी करदा मकतूब के मुताबिक आज दोनों शिफ्टों में मुनाकिद होने वाली तहरीरी इम्तहानात पहले से तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक ही मुनाकिद किए जाएंगे। महकमा की जानिब से उम्मीदवारों से गुजारिश की गई है कि वो मुस्तनद और ऑफिशियल मालूमात के लिए बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bihar.gov.in देखें। रियासत में मानसून की हरकत में कमी आने से 1 जून से अब तक मामूल से 32% कम बारिश हुई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बंगाल की खलीज और बहरे अरब से आने वाली मानसून की दोनों शाखें कमज़ोर हैं। बारिश की कमी के सबब पटना समेत 7 जिलों में दर्ज हरारत 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत के साथ भभुआ रियासत का गर्म तरीन मकाम रहा। किशनगंज के तैयबपुर में सबसे ज़्यादा 12.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस बीच महकमे मौसमियात ने आज रियासत के कई हिस्सों में हल्की से वस्त बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमा के मुताबिक आइंदा कुछ घंटों में गोपालगंज, मशरकी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सारण, सीतामढ़ी, नालंदा और शेखपुरा जिला में तेज़ हवा के साथ बारिश और आसमानी बिजली गिरने का खदशा है। वहीं जमुई, समस्तीपुर, दरभंगा, बांका, नवादा और लखीसराय जिलों में भी कुछ मकाम पर बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। इस वक्त दोपहर के 2:10 हुए हैं। अब सुनिए रोजगार सूचना। इलाहाबाद हाई कोर्ट रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एवं कंप्यूटर असिस्टेंट के कुल 543 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर साइंस में डिग्री या डिप्लोमा हो या ओ लेवल, सीसीसी लेवल का प्रमाण पत्र हो। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कंप्यूटर असिस्टेंट हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जून 2026 तक है। इसके अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट नोट कर सकते हैं, www.इलाहाबाद हाईकोर्ट.in। और इधर कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी सीजीएल 2026 के आलोक में कुल 12,256 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम किसी भी विषय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की

0: गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 तक है। इसके अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट नोट कर लें www.ssc.gov.in पर। और इधर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस के कुल 4,500 पदों पर भर्ती हेतु योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 31 मई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 तक है। इसके अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट नोट कर लें www.centralbank.bank.in पर। रोजगार सूचना समाप्त हुई।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। इस वक्त दोपहर के 2:15 होने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा, 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया, 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने हॉर्मुज हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं जो अभी कोरोना

0: महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वाशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताजा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
1: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है ये कई वायरों में हम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए, भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी CEOs के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन

0: उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
1: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात $53 अरब तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
2: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
3: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
4: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
5: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है।

0: उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्धविराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आजाद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: जोरू का भाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। तलत महमूद की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, जयदेव का संगीत।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव

0: अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
2: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी
1: हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: जानिसार अख्तर के बोल आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में सी रामचंद्र का संगीत फिल्म यास्मीन के इस गीत में आपने सुना।
1: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सुन रहे थे मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का ये गीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत।

0: वचन फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले की आवाज थी, प्रेम धवन के बोल, रविशंकर का संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूँ मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नक्मे। आइए सुनते हैं गीता दत्त की आवाज में CID फिल्म से ये गीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, OP नैयर का संगीत।

0: मंजरी जी, साड़ियों के संसार पर चर्चा हो रही है इन दिनों, और एक सेगमेंट है बाकायदा सखी सहेली में, तो आज हम चर्चा करेंगे। साड़ी वैसे भी पारंपरिक पोशाक है, और जब भी कहीं कोई फंक्शन होता है, कहीं घूमने जाना होता है, तो कौन सी वाली साड़ी पहनी जाए, बहुत पहले से चयन किया जाता है, साड़ियों का बक्सा खुल जाता है। आप क्या
1: खुल
0: करती
1: जाता
0: हैं?
1: है, मेरा भी खुल जाता है और उसमें देखते हैं तरह तरह की साड़ियां देखते हैं, लेकिन कहते हैं ना जैसा मौसम होता है उस हिसाब से साड़ी पहनने का मन करता है। तो अगर जैसे बारिश का मौसम होगा तो लगेगा कि भाई हरा भरा मौसम रहता है, तो लगेगा कि भाई ऐसी साड़ी पहने जिसमें कलर बहुत चटक रंग हो। तो ध्यान तो मेरा तो सीधा इसी पे चला जाता है कि बांधनी की साड़ी, लहरिया की साड़ी, बंधेज वाली साड़ी पहना जाए। तो उनका पहनने का एक अपना अलग मजा होता है। और जैसे आजकल गर्मी का मौसम है तो इस समय बस याद आता है कि हल्के कलर पहने, आसमानी, गुलाबी और क्या कहते हैं हल्का हरा धानी कलर पहने, और वो सूती साड़ियां हों जो बहुत अच्छी लगे। और सूती साड़ी पर अगर बांधनी का काम हो तो बहुत ही अच्छा लगता है, फिर तो लगेगा ये भी पहन लेते हैं, है ना।
0: सही बात है।
1: तो जो कहते हैं ना ममता जी, बांधनी जो साड़ी है इसका जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है, प्राचीन काल से इसका समझ लीजिए चला आ रहा है। और बांधनी जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, बंध से लिया गया है, और बांधनी या बंधेज भी इसको कहा जाता है। साड़ियां ये जो है मुख्य रूप से भारत के गुजरात में जामनगर और वहां पर कच्छ, भुज और अहमदाबाद में बांधनी के सबसे बड़े और प्रमुख केंद्र हैं। और वहीं राजस्थान में भी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और सीकर अपने बेहतरीन कामों के लिए, बंधेज के कामों के लिए, बांधनी साड़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और जब हम वहां जाते हैं तो देखते हैं दुकानों पर इतनी सुंदर सुंदर साड़ियां टंगी रहती है, और साथ में जो महिलाओं को हम देखते हैं विशेष त्योहारों पर, तो वो उनके जो रंग होते हैं बांधनी साड़ियों के तो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही बारीकी तरीके से बांधा जाता है। और इन साड़ियों को ममता जी टाई डाई तकनीक से हाथों के द्वारा धागों से बांधकर बनाया जाता है, और जिसके रंग कार जो है बेहद आकर्षक डिजाइन तैयार करते हैं। और बिल्कुल हाथ से और पतला पतला करके बांधा जाता है। कई लोग चने बांधते हैं, कई लोग दाल बांधते हैं, कोई छोटे छोटे पत्थर भी बांधते हैं उसमें डिजाइन अलग अलग तरह से देने के लिए।
0: मतलब काफी मेहनत लगती है, और समय भी लगता है, ऊर्जा भी लगती है। बांधनी बनाने की प्रक्रिया बड़ी मेहनत वाली होती है। सबसे पहले साड़ी के लिए कपड़ा चुना जाता है, और कपड़े पर हल्के निशान बनाए जाते हैं ताकि डिजाइन बिल्कुल सटीक बने। कारीगर कपड़े की छोटी छोटी

0: पोटलियां बना लेते हैं, उन्हें धागे से कसकर बांधते हैं। अब कपड़ों को रंगों में इसके बाद डुबोया जाता है। कई बार तो अलग अलग रंगों के लिए ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। रंग सूखने के बाद धागे खोले जाते हैं और सुंदर गोल, लहरदार या फूल जैसे डिजाइन दिखाई देते हैं।
1: बिल्कुल। और बांधनी साड़ी जो है वो कई प्रकार के कपड़ों पर बनाई जाती है, जैसे कि रेशम से आपको दिखेगी, जॉर्जेट, कॉटन, मलमल से भी बनाया जाता है, शिफॉन, क्रेप और सिल्क पर भी बांधनी का काम होता है। और राजस्थान में बांधनी में पारंपरिक राजस्थानी रंग और बड़े पैटर्न देखने को मिलते हैं, जबकि गुजरात में बंधेज में बारीक डिजाइन और चमकीले रंग खास माने जाते हैं। और ये बांधनी साड़ी विभिन्न रंगों और प्रिंटों में आती है, और खोमबी, पटोरी, घरचोला और चंद्रोखानी, इसके अलावा ये काम साड़ी, कुर्ता, सलवार कमीज और चनिया चोली में भी पाया जा सकता है। यानी कि अब इसका जो काम है, इसका वर्क है, बहुत तरीके से बढ़ गया है। हर तरीके के उसमें कांच से भी, सितारों से भी काम होगा और जरी के भी गोटे लगे रहते हैं, तो बहुत खूबसूरत बनाई बना दी जाती है इन साड़ियों को।
0: गुजराती बांधनी रेशम या कपास से बनी इस शैली में मोर होते हैं, फूल और हाथी जैसे आकर्षक पैटर्न बनाए जाते हैं। ये नवरात्रि और शादियों के दौरान बहुत ही लोकप्रिय होते हैं। और राजस्थानी बांधनी में जैसे कि भरे चटकलाल, पीला रंग, लहरिया और जैसे चक्करदार रूपांकन होता है, मोथरा जिसे कहते हैं, ये खास पहचान है राजस्थानी बांधनी की।
1: बिल्कुल।
0: और बाकी राजस्थानी बांधनी या गुजराती बांधनी के और जो प्रकार हैं, और जो हमारे जो राजस्थान और गुजरात के श्रोता हैं वो भी बता सकते हैं कि
1: बिल्कुल
0: क्या खासियत है साड़ियों की। भुज में खास तरह की बांधनी होती है। कच्छ के आदिवासी आकृतियां आमतौर पर काले और लाल रंग में, जिनमें बारीक ज्यामितीय बिंदु होते हैं। मॉडर्न बांधनी समकालीन सौंदर्य बोध के लिए डिजिटल प्रिंट के इस्तेमाल किए जाते हैं और पेस्टल रंगों का उपयोग भी किया जाता है, और कुछ फ्यूजन डिजाइन भी बनाई जाती है।
1: जी। और हमारे साथी भी लिखते हैं कि बांधनी साड़ी प्रमुख रूप से राजस्थान और गुजरात में पहनी जाती है और उसका डिजाइन बहुत ही सुंदर होता है, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और साथ में हमारे साथी और भी लिख रहे हैं कि बांधनी साड़ी भारत की सबसे प्राचीन और जीवंत डाई वस्त्र कलाओं में से एक है और मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान राज्यों में बहुत प्रचलित है। और बिंदियां बहुत बारीक होती हैं और चटक रंग की होती हैं, तो इसका जो है सांस्कृतिक महत्व भी है, त्योहार उत्सवों पर भी खूब पहनी जाती है।
0: और इन साड़ियों के साथ चूड़ी का भी कॉम्बिनेशन होता है।
1: बिल्कुल, साज श्रृंगार तो बहुत जरूरी है।
0: और उसी रंग की अगर चूड़ी पहन ली जाए तो फिर और लुक एकदम अलग आ जाता है। अब ये बात तो ये इस गाने के साथ हम जोड़ रहे हैं, तो सुनते हैं ये गाना, हरे कांच की चूड़ियां। फिल्म का नाम है

0: विविध भारती पर यह है कार्यक्रम सखी सहेली।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
4: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
3: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह

0: और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर इस समय सखियां सहेलियां और सखा सुन रहे हैं सखी सहेली कार्यक्रम और बात अब डायरी की चल पड़ी है। डायरी लिखना एक कला भी है और डायरी लिखने से तनाव दूर हो जाता है, मन हल्का हो जाता है और एक फायदा और होता है कि कई बरस बाद, जैसे मान लीजिए आज आपने कोई बात लिखी डायरी में, अब से 20 साल बाद आपकी आने वाली पीढ़ी उसे देखेगी, पढ़ेगी, तो आज क्या क्या हुआ वो जानेगी और क्या माहौल था घर का। माँ डायरी लिख रही, पिता डायरी लिख रहे हैं तो बच्चे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो तो वो एक जानकारी मिलती है और एक अलग अनुभव होता है।
2: बिल्कुल,
1: है ना,
2: बिल्कुल। डायरी जो लिखने की आदत है उसमें बहुत सारी बातें आपके जीवन की आ जाती हैं। उस वर्ष आपने, उस महीने आपने क्या चीज फेस करी अपने जीवन में, सुख दुख सब, हंसी खुशी सब कुछ उसमें रहता।
1: सूखा पड़ा, बारिश हुई बहुत ज्यादा,
2: बिल्कुल,
1: और बहुत खुशगवार दिन था, शादी ब्याह, दुनिया भर की बातें आ जाती है। अब हमारी एक सखी है जिन्होंने एक बात लिखी है, लिखा है कि 10वीं क्लास पास करते ही मुझे भी डायरी लिखने का खूब शौक चढ़ा था। एक युवा लड़की की डायरी में जो जो लिखा जा सकता था वो सब मैं रोज लिखती थी। जैसे कि आज शाम गजब की बारिश हुई, कल रात मेरे कमरे में घुप अंधेरा, एकाएक जानी पहचानी खुशबू मेरे चारों तरफ फैल गई, मेरी आंखों में चमक सी जागी। स्कूल जाते समय एक लड़का रोज मेरा पीछा करता है, कल तक जो बेरंग था आज सब कुछ रंग बिरंगा लग रहा है। मेरे मन में एक कविता आकार ले रही है मगर शब्द साथ नहीं दे रहे। फिर मैंने कविता के ख्याल को झटक दिया। चाहतों से भरी जिंदगी में डायरी अपनी किसी सहेली की तरह होती है और जब हकीकत के थपेड़े पड़ते हैं तो डायरी लिखने में बड़ा सुकून मिलता है। डायरी में फिल्मी गीत भी बहुत लिखे हैं पर अब डायरी नहीं लिखती। वे क्यों नहीं लिखती हैं?
2: जो लिखा है उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, मैं तो उसी में डूब गई थी।
1: अब सवाल ये है कि क्यों नहीं लिखती हैं?
2: लिखना चाहिए,
1: लिखना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, ये जरूर है कि अगर कागज कलम साथ में नहीं होता है तो आपके पास बड़ा अच्छा यंत्र है, मोबाइल यंत्र। आप कहीं बाहर हैं, रस्ते में जा रहे हैं, ट्रेन में है, विमान में है, या फिर कार में, गाड़ी में, बस में, ऑटो रिक्शा में, तो वहां भी आप डायरी लिख सकते हैं। बोल के टाइप करने की भी सुविधा है तो।
2: जी बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि डायरी लिखना अच्छा भी है और कुछ हद तक नहीं भी अच्छा, इसलिए कि दिन भर की अच्छी बुरी बातों को लिख कर रख देना और मन को हल्का कर लेना। 6 महीने पहले का पन्ना पलटो तो लगता है उस समय की यही बात कितनी बुरी लगती थी कि, लेकिन समय की धूल ने उस पर पर्दा डाल दिया। डायरी लिखने से यादें जिंदा रहती हैं, बच्चे की पहली हंसी से लेकर पिता की आखिरी नसीहत मानो सब कुछ कह रही हो। लेकिन यही आदत तब बुरी बन जाती जब डायरी में सिर्फ दुख, नफरत और शिकायतें लिखते रहो, तो यही डायरी जिंदगी को दलदल बना देती है। वाकई सही बात आपने कहा है और व्यक्ति उसी में धसता चला जाता है, इसलिए हर दिन जैसा व्यक्ति व्यतीत होता है उसको स्वीकार करो और डायरी में लिखो। लेकिन इतना ध्यान रहे कि जब भी पिछले पन्ने पलटो तो अच्छे और बुरे दोनों तरह के दिनों को बराबर सम्मान दो। उन पन्नों में सिर्फ सुख के ही पन्नों को महत्व ना दो। मुझे डायरी लिखने की आदत है पर व्यक्तिगत जीवन पर नहीं, सिर्फ अपनी कृषि भूमि में किस सीजन में कौन सी फसल बोई थी उसकी और शाप की हर दिन के आय और व्यय का हिसाब भी लिख।
1: कहा जाता है कि डायरी और संस्मरण ईमानदारी से लिखा जाता
2: बहुत
1: है,
2: ईमानदारी से,
1: और उसमें डायरी में जो भी बात लिखें सच लिखें, क्योंकि झूठ लिखने का कोई मतलब नहीं होता।
2: नहीं।
1: कुछ लोग डायरी भी आत्मश्लाघा में लीन होकर लिखते हैं पर अपनी तारीफ, तो उससे कोई मतलब नहीं होता। सच को सच की तरह लिखें, झूठ को झूठ लिखें कि ये गलत था,
2: तो उस समय का पता चलेगा कि आपने जीवन में क्या बिताया।
1: अब हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे नाना जी को डायरी लिखने का बड़ा शौक था। एक बार उनकी सीट पर बैठा तो उनकी डायरी हाथ आ गई। मैंने खोल कर देखी तो जो पढ़ा वो सच में गजब ही था। नाना जी का स्वतंत्रता संग्राम में जेल के दिन, उनके साथियों के साथ क्रांति के दिन, मैं तो एक्साइटेड हो गया था। और खोजा तो वो डायरी भी मिली जिसमें मेरी माँ की शादी के बारे में भी पूर्ण ब्यौरा लिखा गया था। उसे पढ़ा तो लगा जैसे मैं उन दिनों के लम्हों को जी रहा था। सच में डायरी लिखना बहुत बड़ी बात है, वर्षों बाद भी आपके पुराने दिन जीवित रहते हैं। आजकल जो मोबाइल में नोटपैड पर लिखना डायरी का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि मोबाइल 5-7 साल में बदलना ही पड़ता है, जबकि डायरी आपके साथ है तो उसके बाद भी रहती है। बिल्कुल सही है, डायरी का तो कोई मुकाबला नहीं है, कागज और पन्नों का कोई मुकाबला नहीं है। वो कलम से जो बैठ के लिखते हैं तो जो हौले हौले जज्बात निखर के आते हैं, कागज पर चमकते हैं, तो वो बात निराली होती है। लेकिन न से तो बेहतर है कुछ, तो इसलिए कि अगर आप लिखते ही नहीं तो कम से कम मोबाइल के नोटपैड पर लिख सकते हैं।
2: बिल्कुल।
1: और डायरी अगर

0: लिखने की आदत है तो बहुत अच्छी बात है।
1: बिल्कुल। और देखिए हमारी साथी लिखती है कि डायरी लिखना मैंने 8th क्लास से शुरू किया था, मुझे क्लास और घर की दिन भर की सभी घटनाओं को रोज लिखा करती थी और आज भी कायम है, सोने से पहले डायरी लिखकर बड़ा सुकून मिलता है। बहुत अच्छी सी बात इन्होंने लिखी है और मुझे लगता है कि आपको भी डायरी लिखने का शौक
0: भाई,
1: है
0: अगर डायरी लिखने से कई बार लिखने की ताकत मिलती है,
1: जी
0: प्रेरणा मिलती है, तो इसलिए हम सबको डायरी लिखनी चाहिए,
1: बिल्कुल
0: हमें आपको भी लिखनी चाहिए।
1: नहीं।

0: लिखे जो खत तुझे, खत लिखना भी एक आदत है और आजकल खत लिखने का चलन भी खत्म हो रहा है, तो उसे भी जिंदा रखना चाहिए। इसीलिए विविध भारती ने जिंदा रखने के लिए शुरुआत की है मन चाहे गीत की। मन चाहे गीत कार्यक्रम में फिर से चिट्ठियां आनी शुरू हो गई और एक दो नहीं, बहुत ढेर सारी चिट्ठियां आनी शुरू हो गई हैं और अब फिर वही स्थिति हो गई कि कौन सी वाली चिट्ठी ले पहले, कौन सी वाली बाद में ले, तो बस वो आंख मूंद के उठाने वाली नौबत आ
1: गई।
0: तो हमें चिट्ठियों से प्यार होता है, इससे ये जाहिर है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि डायरी लिखना मुझे बहुत पसंद है, जब हम पन्ने पलट कर पढ़ते हैं तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। डायरी के अंदर मैंने कुछ पुराने पत्रों को भी संजो कर रखा है, उसे पढ़कर भी बहुत अच्छा लगता है। डायरी तो जरूर लिखनी चाहिए, मन में नए विचार भावनाएं जागृत होती हैं, दुख लिख देने से वो कम होने लगता है। डायरी हमारी मित्र है जो हमारे राज किसी से नहीं कहती है और हम पूरे विश्वास के साथ उसे अपनी सारी बातें कह देते हैं। लेकिन कई बार अपनी प्रेम कहानी जब लिखते हैं और छुपाते हैं तो वो जब उजागर होता है तो फिर वो दोस्त नहीं रह जाती है डायरी।
1: देखिए ममता जी, एक ऐसा भी उस समय भी ऐसा चला था, भाई लिखते तो थे ही डायरी सब लोग, लेकिन उसमें भी अपने दिल की बातें लिखते थे प्यार भरी।
0: आपने लिखी कभी?
1: तो ये बात तो बताई नहीं जा सकती है क्योंकि ये बात को रहने
0: उजागर राज को राज रहने
1: रहने देते हैं। तो लेकिन हम वो ये कह रहे थे ममता जी कि जो उस समय भी डायरियां बड़ी डिजाइनर डायरियां आती थी और कुछ डायरियां ऐसी आती थी ममता जी उसमें लॉक होता था, तो मैंने खुद देखा है कि वो लॉक वाली रहती थी, उसमें वो स्पेशल खास
0: वो अभी भी आती है।
1: हाँ,
0: बस शौक होना चाहिए डायरी खरीदने का, डायरी लिखने का और डायरी तोहफे में देने का भी एक अलग मजा है।
1: सोचते हैं यही हम आपको दे देते हैं, आप मुझे दे दो। फिलहाल तो हम कमेंट्स पढ़ लेते हैं, है ना?
0: बिल्कुल।
1: तो एक साथी लिखते हैं कि मुझे डायरी लिखने का शौक है। कोई आवश्यक कार्य नोट करता हूँ। 2005 में हमारे पूरे परिवार करीब 45 लोग और सहायक बस चलाने वाला, रसोई, मैनेजमेंट, 6 लोग, कुल 50 व्यक्ति ने बद्रीनाथ तक का 21 दिनों का प्रवास किया था। उनका सभी वर्णन मैंने लिखा हुआ है। आज भी कभी डायरी देखता हूँ और पढ़ता हूँ तो पूरा प्रवास के स्थलों, कहाँ रुके, भोजन का मेनू, सभी

0: विवरण पढ़ते हैं तो नजर समक्ष पूरा प्रवास याद ताजा हो जाती है। बिल्कुल सही लिखा है आपने।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि आपका मन हल्का होता है एक तो डायरी लिखने से। वैसे मैं लिखती हूँ कुछ लेन देन की बातें, कुछ वैसी बातें जो मुझे याद रखनी चाहिए, यानी मैं पेन जरूर उठाती हूँ। आजकल स्लेट और पेंसिल पर सुरीला सफर के इबारत पढ़कर गाने और क्या कुछ कहना है लिखती हूँ। क्या बात है भाई, जब मैं लिखती रहती हूँ तो मेरी हेल्पर आ जाती है तो पूछती है कि चाची अब आप क्या पढ़ती रहती हैं, लिखती रहती हैं, तो मैं हंस के कह देती हूँ बस ऐसे ही कुछ कुछ बातें लिखते हैं और फिर मिटा देते हैं। और ये जो लिखी है कि लेन देन की बातें लिखते हैं, अभी भी बहुत सारे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं जो बाकायदा कागज कलम लेकर जो घर की जरूरी चीजें हैं उसकी लिस्ट बनाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और उस लिस्ट को देते हैं अपने बच्चों को कि ले जाओ ये सामान लेकर आओ। हम अमूमन क्या होता है कि सीधे स्टोर में जाते हैं या मॉल में जाते हैं और चीजें दिखती हैं, सामान रखते जाते हैं, भरते जाते हैं, कई बार अनावश्यक चीजें आ जाती हैं।
0: हमें याद है ममता जी, जो आपने बुजुर्गों की बात की आदत बताई है, तो वो लोग इसलिए भी लिखते थे कि महीने में हमने कितना खर्च किया, अगले महीने हमें कहाँ पे कटौती करनी है, तो वो एक पूरा बजट बना के चलते थे। तो हमने भी अपने बड़ों से यही सीखा है, तो वो डायरी उस तरह का हम भी नोट बनाते हैं घर पे कि हम अगले महीने किस चीज को माइनस करते हैं, तो एक बजट बना के जब चलते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है और गृहस्थी में तो बहुत जरूरी होता है।
1: पढ़ाई की बातें और गानों की बातें, संगीत की बातें और तो और संगीत सरिता जो प्रोग्राम प्रसारित होता है आज भी, हम जब छोटे थे सुनते थे तो अपनी डायरी में संगीत सरिता से जुड़ी जो बातें होती, जानकारियां, वो डायरी में नोट करते थे और उन जानकारियों के आधार पर अपनी बातें लिखा करते थे।
0: क्या बहुत
1: तो
0: अच्छी बात।
1: ये हम सबकी आदत में शुमार है ये सब डायरी लिखना, लेकिन अब कहीं विलुप्त हो रहा है ये चलन।
0: बिल्कुल। लेकिन हमारे साथी लिख रहे हैं कि डायरी लिखना एक बहुत अच्छी उपयोगी आदत है, ये हम अपने दैनिक अनुभवों, विचारों और भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने का अवसर देती है। डायरी लिखने से आत्मचिंतन की क्षमता बढ़ती है और हम अपनी गलतियों तथा उपलब्धियों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। ये हमारी लेखन कला को भी निखारती है और स्मरण शक्ति को मजबूत बनाती है। कई वर्षों बाद जब हम अपनी पुरानी डायरी पढ़ते हैं तो जीवन के अनेक यादगार पल फिर से ताजा हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को नियमित रूप से डायरी लिखने की आदत को अपनाना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्तित्व विकास और मानसिक संतुलन के लिए अत्यंत लाभदायक है।
1: और साथ में संगीत सुनते रहें तो ये और ज्यादा लाभदायक होता है। सुनिए ये गाना।

0: छाया फिल्म का ये गाना था और डायरी लिखने पर हमारे श्रोता बहुत सारे टिप्पणियां लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि अगर डायरी लिखने की बात है तो महात्मा गांधी जी के जो सचिव हैं उनको कैसे भुला सकते हैं। उन्होंने साल 1917 से 1942 तक नियमित रूप से डायरी लिखी थी, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम और गांधी जी के जीवन का सबसे प्रामाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज दर्ज है।
1: क्या बात है। और हमारे साथी लिखते हैं कि एक जमाना था, मुझे भी डायरी लिखने की आदत थी, जो मेरे ससुर जी से प्रेरणा मिली थी। अब तो डायरी लिखना छोड़ दिया है, भले ही अब डायरी लिखना छूट गया है, लेकिन वो शौक आज भी दिल के किसी कोने में एक मीठी सी याद बनकर जिंदा है। डायरी लिखना छोड़ देने से शायद हम अपनी रोज की बातें दर्ज करना भूल गए हों, लेकिन ये वो आदत हमें अपने विचारों को गहराई से समझना सिखा गई है।
0: मंजरी जी, एक हमारे श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि डायरी लिखने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे पतिदेव डायरी लिखते थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने उन्हें बहुत पसंद था डायरी लिखना। आज जयपुर में वो नहीं है, उनके न रहने पर जब मैं डायरी उठाकर देखती हूँ तो एक एक दिन का हाल दर्ज है। जब हम लोगों की लव स्टोरी चलती थी तब से लेकर जब बच्चे हुए, घर की कोई बात हमेशा उसमें दर्ज है, जो पढ़कर ऐसा लगता है कि पुराने सालों में जिंदगी पहुंच गई है। वाकई बहुत अच्छी आदत है डायरी लिखना।
1: बिल्कुल। और हमारे जो और साथी हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि अगले विषय की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा जो हमने शब्द दिया था
0: प्रोत्साहन,
1: प्रोत्साहन,
0: डायरी लिखने के लिए एक तरह का प्रोत्साहन था आज।
1: प्रोत्साहन भी था ये, और हमने प्रोत्साहन लिया है। तो ममता जी, प्रोत्साहन वो शक्ति है जो किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने, बेहतर करने और कठिन परिस्थितियों में भी हार ना मानने की प्रेरणा देती है। जीवन में हर व्यक्ति कभी ना कभी निराश, असफलता और कठिनाइयों का सामना करता है, और ऐसे में यदि हम किसी का उत्साह बढ़ाने वाले शब्द, सहयोग या विश्वास मिल जाए, तो वही प्रोत्साहन उसके लिए एक नई ऊर्जा बन जाता है।
0: बिल्कुल। अब प्रोत्साहन, हमने डायरी के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन हमारी एक सखी
1: जी
0: है जिन्होंने लिखा है कि मैंने डायरी लिखनी चाहिए पर जब उसको उठाओ पढ़ो तो पुरानी यादें जिंदा हो जाती हैं, तो दुख कुरेद जाता है, तो मैंने छोड़ दिया। आज भी कभी मन होता है तो लिखने बैठ जाती हूँ, बस अपने भाव सहेज लेती हूँ। ये तो दोनों
1: दोनों
0: सकारात्मक
1: चीजें
0: नकारात्मक दो
1: जी
0: पहलू होते हैं, तो आपके दुख, अगर दुख को पलटेंगे बार बार तो वो तो आपके मन में भी वो घाव ही पैदा करेगा।
1: बिल्कुल सही बात है। तो कुछ अच्छी बातें भी सोच के आप लिखना शुरू कर दीजिए, है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे कि प्रोत्साहन, तो हमारे साथी भी लिख रहे हैं, देखिए प्रोत्साहन पर, कि प्रोत्साहन वो शक्ति है जो किसी व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और उत्साह का संचार करती है। जब कोई हमारा हौसला बढ़ाता है तो कठिन से कठिन कार्य भी आसान लगने लगते हैं, और एक छोटा सा प्रशंसा का शब्द या विश्वास भरा साथ किसी के जीवन की दिशा भी बदल सकता है। हमारे साथी लिख रहे हैं, और प्रोत्साहन जो है वो केवल बड़े कार्यों के लिए आवश्यक नहीं होता है ममता जी, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक बच्चे को पढ़ाई के लिए, खिलाड़ी को जीत के लिए, और कलाकार को अपनी कला के लिए, और कर्मचारी को बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। और जब किसी व्यक्ति के कार्य की सराहना की जाती है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो अधिक मेहनत करने के लिए भी प्रेरित होता है। जैसे कि हम लोग करते हैं प्रोग्राम, तो अगर हमारी प्रशंसा होती है या प्रोत्साहन दिया जाता है कि इसको और अच्छे से करो, उत्साह बढ़ता है, तो लगता है कि नहीं, अगली बार हम और अच्छा करेंगे।
0: बिल्कुल,
1: तो ये चीज हर के साथ होती है।
0: प्रोत्साहन बहुत जरूरी है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रोत्साहन सफलता की ओर बढ़ने का महत्वपूर्ण साधन है, ये व्यक्ति के मनोबल को मजबूत करता है और उसे अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा भी देता है। इसीलिए हमें सकारात्मक रहना चाहिए और दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कई बार तो लोग बहुत अच्छे काम में भी कुछ न कुछ मीन मेक निकाल ही देते हैं
1: जी
0: कि अरे इसमें ये कमी रह गई, तो वो सही चीज बताने

0: ये सही गलती की ओर इशारा करना अच्छी बात है, आपकी सही निंदा करना अच्छी बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से मिन मेक निकालना ठीक नहीं होता है, बल्कि काम को प्रोत्साहित करना चाहिए।
1: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि प्रोत्साहन एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा है जो किसी व्यक्ति के सोए हुए आत्मविश्वास को जगाकर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करती है। ये केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि प्रेरणा का वह पुंज है जो कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का संबल देता है।
0: और हमारे एक श्रोता ने ये बात लिखी है कि बच्चों को प्रोत्साहन देने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी छोटी छोटी सफलताओं की भी सराहना की जाए। जब बच्चे कोई अच्छा कार्य करें, मेहनत करें, नई चीज सीखने का प्रयास करें तो उनकी प्रशंसा करें, उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि ये गलतियां सीखने का एक हिस्सा है और निरंतर प्रयास से सफलता प्राप्त की जा सकती है। माता पिता और शिक्षक बच्चों की बात ध्यान से सुने, उन्हें प्यार और सम्मान दें और उनकी रुचियों को आगे बढ़ाने में सहयोग दें। इसीलिए तो स्कूल कॉलेज में पुरस्कार की व्यवस्था
1: जी,
0: की जाती है ना, कि
1: बच्चों का
0: आप
1: उत्साह बढ़ जाता है उस तरह
0: जी
1: से। और हमारे एक साथी लिखते हैं, पौधों को और खेत में पानी देने से प्रोत्साहन मिलता है, वो फूलता फलता है। जी हाँ, प्रोत्साहन यानी एक स्फूर्ति, पुरस्कार या उत्साह भरे शब्दों में शाबाशी देना जो किसी व्यक्ति या समूह को खास काम करने या व्यवहार में कार्यक्षम और सकारात्मक बनने में प्रेरित करती है। याद रखें, पौधों को उतना ही खाद पानी दे जितना जरूरी, अधिक मात्रा से वो मुरझा जाता है। अत्यधिक प्रोत्साहन से काम बिगड़ने की संभावना रहती है। बहुत गुड़ बात इन्होंने अच्छी बात लिखकर भेजी है। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि प्रोत्साहन सफलता की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये व्यक्ति के मनोबल को मजबूत करता है और उसे सपनों को साकार करने के लिए प्रेरणा देता है। इसलिए हमें सकारात्मक रहना चाहिए, दूसरों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए।
0: और अब देखिए, डायरी लिखने के लिए भी एक टिप्पणी हमारे श्रोता ने लिखी है कि बचपन में दी डायरी, आप सबने पूछा कि कोई ऐसी डायरी भी पढ़ी है, तो लिखा है कि बचपन में दी डायरी ऑफ यंग गर्ल पढ़ी थी, जो एक किशोर वय बच्ची एनी फ्रैंक द्वारा लिखित बहुत मार्मिक अभिव्यक्ति है। वे एक यहूदी थी और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नीदरलैंड पर जर्मनी के कब्जे के समय अपने परिवार के साथ छिप कर रही थी। उन बिताए समय का वृत्तांत उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है। तो डायरी किस तरह से
1: जी
0: महत्वपूर्ण हो जाता है कई बार, और एक लंबा दस्तावेज होता है। अब प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं ये गाना।

0: मॉडर्न गर्ल फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजें थी। और अब बिल्कुल भी वक्त नहीं कि गाना सुनवाएं या कुछ बोलें बतियाएं, तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।

0: दोस्तों, आज हमारे मेहमान हैं फिल्म अभिनेता विजय राज। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
1: विजय भाई, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के इस कार्यक्रम में आपका। नमस्कार।
2: नमस्कार। मैं बता नहीं सकता मुझे कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि रेडियो एक ऐसी चीज रही है बचपन से, कहीं आपके भीतर कुछ पैदा कर देता है। वो लगता है जैसे कि आप ही के भीतर से कोई आवाज आ रही है, और मैं यहाँ पे हूँ, मैं पहली बार आया हूँ रेडियो में।
1: अच्छा,
2: तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार।
1: लेकिन रेडियो के साथ में बतौर श्रोता आपका रिश्ता पुराना रहा है।
2: मैं जब छोटा था तो मुझे बड़ा शौक था रेडियो का, और पैसे चूंकि होते नहीं थे तो मैंने एक दो बार पैसे इकट्ठे किए और मैं रेडियो लेके आया था, छोटा पॉकेट रेडियो 110 रुपए, जो मेरे लिए इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी। रात को मैं सुनता था उसको, और वो सुबह खर खर करता हुआ पाया जाता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था, स्पेशली 10 बजे कोई कार्यक्रम आता था, छाया गीत, करेक्ट
1: जी। हाँ, और उसमें हम पुराने पुराने गाने
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: विद कॉमेंट्री पेश करते हैं। तो ये जो उसमें आप कॉमेंट्री वगैरह भी, क्योंकि उन दिनों तो हॉकी और क्रिकेट की कॉमेंट्री के लिए रेडियो बड़ा सहारा हुआ।
2: बिल्कुल बिल्कुल। हाँ,
1: और कौन कौन से रेडियो स्टेशन सुना करते थे विविध भारती के अलावा?
2: मेरे ख्याल से वही एक ज्यादा
1: पॉपुलर
2: हुआ करता था उस समय। और चूंकि जैसे क्रिकेट का मुझे बड़ा शौक था, तो कमेंट्री उस पे आती थी, वो सुनते थे। और टेलीविजन तो उन दिनों बहुत कम हुआ करता था, किसी के घर में पाया जाता था तो वहाँ इतने सारे लोग जमा हो जाते थे कि भाई चलिए टीवी देखा जाए।
1: आपके यहाँ टीवी कब आया पहली बार?
2: हमारे यहाँ आया 83 में, जब ये एशियाड हुए थे।
1: कलर आए थे, ब्लैक एंड व्हाइट था वो?
2: ब्लैक एंड व्हाइट।
1: अच्छा, चूंकि रेडियो की बात कर रहे हैं हम, और रेडियो के स्टूडियो में आए हैं आप, विविध भारती के स्टूडियो में आए हैं, क्यों ना आपकी फरमाइश के गाने से?
2: मुझे एक्चुअली पुराने गाने यार बहुत बहुत अच्छे लगते हैं,
1: और विविध भारती के पास विजय भाई पुराने गीतों का जबरदस्त खजाना है।
2: तो मुझे एक मन्ना डे साहब का एक गाना है, ऐ मेरे प्यारे वतन, जो मन्ना डे साहब क्या क्या गाया है,
1: अद्भुत,
2: बाप रे। और
1: लेकिन जो कुछ भी गाया, कव्वालियां गाई, भजन गाए, रोमांटिक सॉन्ग्स गाए, और शास्त्रीय संगीत पर आधारित गाने जो उन्होंने गाए हैं वो भी अद्भुत हैं। उनका गाना ये काबुली वाला फिल्म का गाना है, पेशवन साहब का लिखा हुआ है और सलील चौधरी साहब का संगीत है। सुनवा दिया जाए?
2: बिल्कुल।
1: ऐ मेरे प्यारे वतन।

0: और इस समय सिर्फ वतन में ही नहीं, वतन के बाहर भी लोग आपको सुन रहे हैं। विजय भाई, ये मैं जानना चाहूंगा कि पहली विजय कब प्राप्त हुई आपको फिल्मों के लिए, कहाँ मिला?
1: मैं दिल्ली में पैदा हुआ, पला बड़ा वहीं पे। और मेरी मतलब जैसे कहते हैं ना कि बचपन में पूछा जाता है कि भाई क्या बनेगा बच्चा बड़ा होके। तो मैं ऐसा कह लें कि मुझसे ये सवाल नहीं किया गया था कभी कि क्या बनेगा। मेरी समझ में हिंदुस्तान में इतने सारे परिवार हैं जिनकी संख्या करोड़ों में है, जहां शायद ही कभी बच्चे से ये सवाल किया जाता है। इट्स अ वेरी ग्लैमराइज

0: बेस्ड क्वेश्चन एक्चुअली कि क्या बनेंगे आप। इस सवाल तक तो ध्यान जाता ही नहीं है, बहुत करोड़ों परिवार ऐसे हैं वहां ध्यान कुछ और ही रहता है कि खाना आज मिलेगा कि नहीं,
1: बस ये
0: तो सवाल मेरे ख्याल से पेट भरने के बाद शुरू होते हैं।
1: और कई परिवारों में तो थोपा भी जाता है कि हम इसको इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, ये बनाएंगे, बच्चे से कोई नहीं पूछता।
0: हाँ, और ये अनजाना अनदेखा कर देते हैं हम कि हम ही तय करते हैं कि बच्चा क्या करेगा। जैसा आपने कहा ना कि बच्चे से पूछा नहीं है, और बच्चे से पूछना भी नहीं चाहिए। बच्चा भी उस मेरे ख्याल से उस जगह तक पहुंचा नहीं कि जहां वो इस सवाल को झेल पाए। इतना बड़ा सवाल है
1: जी जी।
0: और छोटा सा बच्चा नन्ना वो भी जी रहा है, और ये सवाल उन लोगों का है जो एक्चुअली जी नहीं पाए, मुझे ऐसा लगता है। वरना ये सवाल कभी कोई सेंसिबल आदमी नहीं पूछेगा, क्या बनना चाहते हैं, क्या बनना है। अभी तो जीने का समय है, अभी तो जी ले कम से कम,
1: रास्ते में है अभी तो।
0: मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं क्या बनूंगा। मैंने ये सोचा कि यार मेरा होगा क्या। जब धीरे धीरे हम बड़े होने लगे कि यार अब तो बड़े हो गए, पढ़ाई वढ़ाई खत्म होने वाली, अब तो फ्री की रोटी मिलेगी नहीं।
1: पढ़ाई में थे कैसे आप?
0: मैं यार ठीक ठाक था, मतलब मन मेरा लगता नहीं था पढ़ाई में,
1: मन कहीं और लगता था।
0: मन मेरा खेलने कूदने में, और अकेले बहुत समय बिताया मैंने। मैं घर बहुत बाद में जाता था, कह लें कि सिर्फ सोने के लिए जाता था।
1: इस आवारगी का ताल्लुक किससे था? मतलब अपने आसपास के, कभी मौसम से बात करना, पेड़ों से बात करना, हवाओं से बात करना, कुछ ऐसी बात थी क्या?
0: जहां मैं पैदा हुआ पूसा इंस्टीट्यूट, वो खेत खलियान वहां बहुत है, हालांकि है दिल्ली के अंदर, बट आप वहां अगर गए हों कभी या जाने का मौका मिले आपको तो आपको लगेगा नहीं कि आप दिल्ली में। बड़ी शांति है वहां, बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे मतलब अमरूद, आम, जामुन और पता नहीं क्या क्या, मतलब बाग बगीचे वहाँ पे हैं। लोगों की संख्या बहुत कम है। उस माहौल में मेरी पैदाइश हुई, और पूरी जो सराउंडिंग थी वो नेचर से पूरी भरी हुई थी। उसने शायद कह लें आप, या मैं पीछे से कुछ लाया होऊंगा, मुझे एकांत बड़ा पसंद था हमेशा ही।
1: जिस तरह से आप आए हैं और आपकी शख्सियत को देख रहा हूं, मैंने पर्दे पर तो आपको कई फिल्मों में देखा, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे एक मलंग पना जो है वो आपको बड़ा पसंद है। वो
0: हाँ वो है।
1: कड़पन वही जिंदगी की जो होती है, अलमस्त जो एक स्वभाव सा होता है। और आपने अभी कुछ देर पहले कहा भी कि इस वक्त जो है उसे हम जी लें।
0: बिल्कुल, मतलब इससे बड़ा सच मेरे ख्याल से है नहीं। जैसा कहा भी आता ना, इस सच को हम उसका सामना करने में बड़ा कतराते हैं कि हमेशा आगे कुछ तय हो जाए, हम पहले तय कर लेना चाहते हैं, जबकि वो हो नहीं पाता कभी। ये अजीब सा भ्रम है जो हमेशा बना रहता है हमारे हमको कि हो जाएगा तय, जबकि होता नहीं। तो मैं खुद वैसी प्रवृत्ति का आदमी हूँ, वैसी प्रकृति है मेरी, मुझे अच्छा लगता है। जब भी समय होता है मैं निकल जाता हूँ गाड़ी वाड़ी लेके हाईवे पे, कहीं गाड़ी रोक के फिर खेत वेत में थोड़ा घूम लिए, वहाँ चेयर डाल के बैठ गए, मुझे बड़ा मजा आता है।
1: ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अभी भी आपको अपनी वो जो जड़ें हैं उनसे जुड़े रहना बहुत पसंद है। आपने अभी कहा कि ये पल जो है वो जी लें, और इस पल में मैं समझता हूँ कि जब हम पल की बात करते हैं तो संगीत हमारे बहुत सारे पलों को सुरीला बनाता है, उसके साथ जीना भी बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम उसके उसकी नदी में बस बहते चले जाएं। तो आपने कहा कि पुराने गानों का बड़ा शौक है आपको।
0: हाँ, चूंकि बात अब चल रही है पलों की, तो एक गाना तो बन गया।
1: कौन सा?
0: पल पल दिल के पास तुम रहते हो।
1: क्या बात। बहुत खूबसूरत गाना है, और धर्मेंद्र जी पर फिल्माया गया है ना, ब्लैकमेल फिल्माया गया है।
0: फिल्मों के बगैर मुझे नाम नहीं मालूम है, बट गाना वाकई बड़ा खूबसूरत।
1: आइए सुन।

0: पढ़ते ही समा गया।
1: हाँ, जिसको हम इंस्टिंक्ट जो एक वर्ड
0: जी
1: इजाद किया है, मेरे ख्याल से वो वही है कि तमाम चीज़ें आपके कंट्रोल में होती नहीं, हमको हमको लगता रहता है ऐसे कि कंट्रोल में है, वहीं से वो आपके भीतर टपकती हैं चीज़ें और वो एक ख्याल पैदा करती हैं, वो पकड़ना कई बार बड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना, यार आपने मेरे बारे में सोचा उस समय, टेलीपैथी इसको बोलते हैं। तो खैर वो समय चला गया, जितना समय उन्होंने दे के, यार उन्होंने मुझसे समय मांगा है 7 दिन का, उसके बाद वो बताएंगे मुझे, अगर वो नहीं होते हैं तो हम बात करेंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद वो समय पीरियड चला गया, मैं भूल भी गया बात। उसके बाद एक दोस्त था मेरा उस पिक्चर में, जो मेरे साथ तीन लोग जो काम करते हैं उनमें से एक, वो आया रिहर्सल के लिए बम्बई, तो मेरे घर पे ठहरा। उसने कहा यार ऐसे मीरा जी की फिल्म कर रहा हूँ। मैंने कहा अरे वाली फिल्म? हाँ। तो मैंने वो रोल कौन कर रहा है? कि वो परेश रावल साहब कर रहे हैं। मैंने अरे यार तो कमाल हो जाएगा यार, बड़ा मजा आ जाएगा। वो तो मैं ये सोच रहा हूँ, रिहर्सल हो गई, वो लोग वापस चले गए। मुझे एक फोन आता है कुछ समय के बाद, मतलब कुछ दिनों के बाद, मोबाइल पे, और नंबर पहले कोड 011। मैंने यार ये तो दिल्ली का फोन है और ये मीरा जी का फोन है, लैंडलाइन से नंबर है। जबकि मैं फोन उठाता हूँ और एक लड़की कहती है कि मीरा जी आपसे बात करना चाहते हैं। और मीरा जी फोन पे आते हैं और कहते हैं विजय हाय कैसे हो ये सब, और करके कि मैं चाहती हूँ कि आप वो रोल करें। मैंने नहीं मैडम, परेश जी बहुत अच्छी कास्टिंग है।
0: क्योंकि उन्होंने तो बताया नहीं था आपको।
1: कि नहीं, दैट आई नो, बट या मैं चाहती हूँ आप करें। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे। रोल हो गया, हम दिल्ली चले गए,
0: शूटिंग कहाँ हुई इसकी?
1: दिल्ली में।
0: उसी
1: और
0: में आपने पहली बार कैमरा फिल्म कैमरा फेस
1: नहीं, उससे पहले
0: किया?
1: मैं फिल्म कर चुका था, उससे
0: अच्छा
1: पहले मैं जंगल फिल्म कर चुका था, अक्स
0: अच्छा
1: भी कर चुका था, भोपाल
0: हाँ,
1: एक्सप्रेस मेरी पहली फिल्म
0: हाँ
1: थी।
0: हाँ भोपाल एक्सप्रेस
1: हाँ,
0: मुझे।
1: ये मेरी चौथी फिल्म थी। फिर शूटिंग शुरू हो गई और कब शूटिंग खत्म हो गई, कब क्या हो गया पता ही नहीं चला।
0: लेकिन वो
1: और
0: रोल आपका बड़ा चर्चित हो गया दुबे जी वाला।
1: हाँ, वो अच्छी बन पड़ी, और फिल्म जब अच्छी बन जाती है तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें भी काउंट हो जाती हैं,
0: जी
1: और वाकई बड़ी खूबसूरत फिल्म। मेरे ख्याल में इंडियन सिनेमा को वेस्ट में जो पहचान बननी शुरू हुई है, जो अब दिख रही है आपको,
0: जी
1: उसमें दो फिल्मों को बहुत बड़ा हाथ है, मॉनसून वेडिंग और बैंडिट लाइक बेकम। ये
0: जी
1: ऑलमोस्ट एक साथ की फिल्म है,
0: जी जी
1: कि वेस्ट में इंडियन सिनेमा को एक जगह दी गई, एक प्लेटफॉर्म दिया गया। उसमें काफ़ी घुमा हूँ, जो फेस्टिवल सर्किट होता है उसमें मेरी, जैसे मॉनसून वेडिंग, रघु रोमियो मेरी एक फिल्म है जो
0: जी
1: फेस्टिवल्स में काफ़ी गई, हरिओम एक फिल्म है जो भाग्य या कह लें दुर्भाग्य कह लें वो रिलीज नहीं हुई है, एक बहुत अच्छी फिल्म भरत बाला ने बनाई थी, वो काफ़ी रही है फेस्टिवल्स में।
0: उसमें आप ऑटो वाले बनते हैं तो
1: हाँ, तो मैंने वो सब देखा है। तो अभी वो एक स्पेस जो मिला है इंडियन सिनेमा को, उसमें इन दो फिल्मों का बहुत हाथ है। मैं बड़ा आभारी हूँ मीरा जी का और नसीर साहब का कि मुझे ऐसा मौका दिया उन लोगों ने। गुजारा हो रहा
0: लेकिन हमारा गुजारा नहीं होगा अगर हम संगीत नहीं सुनवाएंगे। तो गाना सुनाना बड़ा जरूरी है। आपकी पसंद का गाना है?
1: गुलजार साहब मुझे बहुत पसंद है, गुलजार साहब ने कमाल लिखा है। मतलब उनके लिए मैं अगर तारीफ करूं मेरे जैसा व्यक्ति, तो वो बड़ी अजीब सी बात होगी कि
0: गुलजार
1: वो
0: साहब की एक फिल्म है खामोशी, बहुत पहले आई थी, उसमें हेमंत कुमार साहब ने संगीत दिया है और लता जी ने उसमें एक बढ़िया गाना गाया है, हमने देखी है उन आंखों की मेहती
1: क्या
0: मुझको,
1: बात।
0: कही तो बजाय

0: मानसून वेडिंग के बाद क्या चेंज आया, उससे क्या फर्क पड़ा?
1: फर्क अभिनेता के तौर पर, चूंकि फिल्म चल पड़ी, लोग जाने लगे, थोड़ा काम देने लगे, और एक मेरे ख्याल से जिस फील्ड में आप हैं वहाँ ये आपके लिए काफ़ी अहम होता है कि आपको काम मिले, तभी आप चीज़ें आगे कर पाएंगे। और चूंकि आपकी रोजी रोटी भी यही है, आप का प्रोफेशन भी यही है, तो वो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है जीने के लिए भी। उस पिक्चर ने बड़ा, मतलब वो सिनेरियो थोड़ा सा बदला, थोड़ा काम मुझे मिलने लगा और मैं थोड़ा ज़्यादा काम करने लगा।
0: लेकिन जो आपने अरसा बताया, उस अरसे में आपकी बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन ये सारी जितनी फिल्में मैं देख रहा हूँ, इनमें जितने भी नाम मैं देख रहा हूँ, उनके टाइटल जो है पढ़ना, बड़ा ऑफ बीट सी हैं सब।
1: हाँ, कमर्शियल जो फिल्में आती हैं वो फिल्में कम हैं, उनकी तादाद कम है। पर्सनली मुझे अच्छा लगता है जब कुछ ऐसा करने के लिए मिलता है जहाँ पे मैं कुछ कह सकूँ।
0: ये तो आप मानिएगा कि ये सिनेमा की जब हम बात करते हैं, सारी के सारे धारा से हट करके बनी फिल्में हैं, और जाहिर है कि इसमें बहुत सारी फिल्में, बहुत अच्छी फिल्में हैं, क्योंकि सिनेमा में इस बीच हम देखते हैं एक बहुत बदलाव सा आया है। मुख्य धारा का सिनेमा तो है, उस मुख्य धारा की सिनेमा में भी रहते हुए लोगों ने बहुत अच्छा सिनेमा बनाया है, और अब नए नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, कहानी को नए आयाम दे रहे हैं, एक्टर्स बहुत अच्छे आए हैं, कहानी कहने की कला जो है खासतौर से सिनेमा की वो बदल रही है। पहले जैसे एक कन्वेंशनल तरीका था, कुछ चीजें तय थी कि ये रहेगा, ये सारी चीजें फिक्स थी, अब नई तरह की कहानियां जो है उनको भी कहने का खतरा मोल ले रहे हैं लोग, बेशक कि भाई फिल्म में चले ना चले, लेकिन अच्छा सिनेमा इस बहाने कम से कम आते रहा हमारे सामने। इन दिनों आप क्या कर रहे हैं?
1: अभी एक फिल्म है जो ईस्ट इज ईस्ट, एक फिल्म आई थी
0: जी, जी,
1: उसका सीक्वल बन रहा है वेस्ट इज वेस्ट, जो अगले महीने मैं उसके लिए जा रहा हूँ। इंग्लिश फिल्म है, चंडीगढ़।
0: अच्छा अच्छा, इसको कौन निर्देशित कर रहा है?
1: एंडी डायरेक्टर का नाम है, चूंकि फिल्म जिन्होंने पहले प्रोड्यूस की थी वही प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म को दोबारा। फैमिली ड्रामा है, रिलेशनशिप की कहानी है, तो एक बार दोबारा मौका मिलेगा बाहर के लोगों के काम करने के तरीके के साथ दोबारा काम करने का मौका, मजा आएगा।
0: क्या फर्क कुछ महसूस किया? इतनी सारी फिल्में की हैं और बाहर के लोगों के साथ में भी काम किया है।
1: फर्क तो है, फर्क ये है काम करने का तरीका अलग है, उनकी जो स्क्रिप्ट पे जो वो लोग काम करते हैं उस पर काफी समय वो लोग लगाते हैं, तमाम चीजें वो, ऐसा तो नहीं कह सकते कि 100% आप पहले से तय कर लेते हैं सब कुछ, ऐसा नहीं है, बट 90% चीजें तय होती हैं, स्क्रिप्ट तैयार होती है उनकी, उस पर काफी काम वो लोग कर चुके होते हैं, बट कुछ चीजें इंप्रोवाइज हो जाती हैं सेट पे, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं। हमारे यहाँ उस तरह के सिनेमा की संख्या अब होने लगी है, अब बढ़ने लगा है वैसा, कि अब स्क्रिप्ट पे काम करने लगे हैं लोग, वरना सेट पे ही

0: खा जाता है सब कुछ। कई बार एक आइडिया होता है किसी दिमाग में, चूंकि कमर्शियल सिनेमा की जो बात करें वहां पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कहानी से, कि आपके पास 50 करोड़ रुपए हैं तो 50 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि कहानी इंपॉर्टेंट। पब्लिक जिन लोगों को देखने जाती है वो लोग बड़े इंपॉर्टेंट है ना कि कहानी इंपॉर्टेंट है। कपड़े वो क्या पहनेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि वो कपड़े क्या कहते हैं या क्यों पहने गए हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप उस सिनेमा से क्या कहना चाहते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो एक इट्स अ बिजनेस, व्यवसाय है, और वहां कि कैसे बेचना है बेचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अब बदल रहा है।
1: विजय भाई आपके लिए भी तो ये एक रोजी रोटी का जरिया है, लेकिन थिएटर भी आपको संयोग से मिला, सिनेमा में भी काम संयोग से ही आया।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन इस सिनेमा की जब हम बात करते हैं, सिनेमा आपके लिए क्या है, कितनी गंभीरता से आप उसे लेते हैं?
0: मैं ऐसा मानता हूं कि बड़ा स्ट्रांग मीडियम है। असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है ये बड़ा मुश्किल है इसके बारे में बता पाना। कुछ मुद्दों को लेकर इतना कॉन्ट्राडिक्टरी है कि ये नहीं दिखा सकते ये नहीं दिखा सकते, बट वो बेचा जा सकता है। उसको बेचना ही क्यों बंद नहीं किया है, उसको बनाना ही बंद क्यों नहीं किया जाता है? अगर आप इतनी सीरियसली लेते हैं इस बात को, समाज के लिए आप एक विचार हैं, आप एक सोच, आप हैं जो सोचते हैं समाज के लिए, तो ये क्यों नहीं सोचते हैं आप? वो क्या चीज है जो रोकती है?
1: आपने असर की बात की, अगर असर नहीं होता तो लोग सिनेमा, हमारे यहां तो बहुत बड़ा आकर्षण है आज भी।
0: हाँ।
1: शायद वो आकर्षण ही उसे सिनेमा हॉल तक खींच करके लाता है। सिनेमा का जादू, उसका तिलस्म तो मैं समझता हूं कि लगातार बढ़ता चला गया है। टिकटें महंगी हुई बावजूद इसके लोग
0: नहीं, लोगों ने जैसे कहा ना कि जैसा मैं कह रहा था कि जो बुरी चीजें हैं वो सिनेमा ने सिखाई हैं समाज को, ऐसा मानते हैं लोग। बड़ा फिल्में उठाए हैं, बुराई को कभी जीतते हुए दिखाया नहीं, अंत में सच की ही जीत होती है। हर सारे मुद्दे उठाए, वो चाहे राजनीति का हो, चाहे वो भूख का हो, प्यास का हो, रिलेशंस का हो, वहां से तो सोसाइटी ने कुछ नहीं सीखा।
1: विजय भाई कुछ और आने वाले प्रोजेक्ट्स के नाम जानना चाहेंगे?
0: एक फिल्म है डोंट वरी जस्ट बी हैप्पी जो बन रही है, अभी आएगी, रिलीज होगी। एक है फिल्म अता पता लापता, इसकी शूटिंग चल रही है, वेस्ट इज वेस्ट जो शूटिंग करूंगा मैं। और रिलीज होने वाली 2-3 फिल्में हैं, द फ्लैग एक फिल्म है जो अगले साल जनवरी में रिलीज होगी, बड़ी प्यारी सी कहानी है, प्री इंडिपेंडेंट की कहानी है। फितरत चूंकि मलंग है मेरी, इसलिए मैं भूल जाता हूँ करने के बाद चीजें, बहुत ज्यादा मैं याद रखता नहीं और उनको, चूंकि बहुत बोझा हो जाता है यार।
1: शुभकामनाएं देते हैं कि लोग हमेशा याद रखें, और आपका तो नाम ही ऐसा है, मैं तो यही कहूंगा कि विजय भाई आपको जीवन में हर समय विजय मिले और पर्दे पर राज करें। आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए, अपना बहुमूल्य समय दिया है, इसके लिए मैं अपनी ओर से और तमाम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत
1: शुक्रिया।
2: आज के मेहमान कार्यक्रम के अंतर्गत ये थी फिल्म अभिनेता विजय राज से कमल शर्मा की बातचीत। इस कार्यक्रम में सहयोग PKA नायर ने दिया, संयोजन शकुंतला पंडित ने किया, कार्यक्रम के लिए विशेष सहयोग विजय दीपक छिब्बर ने दिया, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है, नमस्कार।
3: आज के

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती देने संबंधी तंत्रों के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की जरूरत पर बल दिया। सभी के लिए संतुलित, समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने पर केंद्रित इस सत्र में उन्होंने अफ्रीका, लातिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने संपर्क और व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 भारतीय प्रतिभाओं और विकासशील तथा अल्प विकसित देशों को एक साथ लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारत की विकास गाथा के बारे में भी बताया। इसमें G7 सदस्य देश, सहभागी देश, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर सभी की नजरें हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडब्रू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो, फ्रांस।
0: इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत और फ्रांस ने पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एनेली हेनाम्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक प्रभावशाली वृद्धि है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेल मंत्रालय ने कहा कि ये परियोजना सिग्नलिंग अवसंरचना के आधुनिकीकरण और रेलवे सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले विद्यार्थियों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया।
2: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 46 ओवर में 6 विकेट पर 380 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन ने शतकीय पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हो चुके हैं। श्रोताओं, आइए कार्यक्रम संबंधी जानकारी आज आपको दे देते हैं।

अब से थोड़ी ही देर में शाम 5:10 पर आप सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। शाम 5:30 पर हम लेकर आएंगे महिलाओं का मनपसंद कार्यक्रम घर आंगन। इसमें बहनों से बातें होंगी घर परिवार में बढ़ते बच्चों का पोषण, और प्रेरक महिला में सिंधु ताई सबकाल के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। रसोई घर से हरी सब्जियों के व्यंजन आपको बताए जाएंगे। गीत संगीत और भी बहुत कुछ इस कार्यक्रम में शामिल है। कार्यक्रम के आज के सूत्रधार हैं मंजू बाला और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं संतोष कुमार। शाम 6:00 आप सुनिएगा भोजपुरी लोकगीत, और शाम 6:05 पर पटना से भोजपुरी बुलेटिन समाचार का प्रसारण होगा, और शाम 6:10 पर हमारे ग्रामीण भाई सुनेंगे कार्यक्रम गांव घर। इसमें चर्चा होगी उपजाऊ जमीन से मरुस्थलीकरण और सूखे से बचाव कैसे करें। मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का विश्व दिवस पर ये आप चर्चा सुनेंगे। लोकगीत भी हम आपको सुनवाएंगे, और वार्ता सुनिएगा जन संरक्षण नियंत्रण वार्ताकार भूपेंद्र नारायण सिंह से, और एक जानकारी में पानी की बचत है ज़रूरी, इस पर आपको जानकारी मिलेगी। इस कार्यक्रम में आज के सूत्रधार हैं सुषमा सिंह और प्रस्तुतकर्ता हैं कार्यक्रम के संतोष कुमार। शाम 6:40 पर सांझ गीत में भोजपुरी फिल्मी गीतों का आप आनंद लीजिएगा।

शाम 7 बजे आप सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस, और शाम 7:15 पर आप सुनेंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। शाम 7:25 पर पटना से प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल का प्रसारण होगा, और शाम 7:50 पर आप सुनेंगे फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मनपसंद।

8:45 पर रात्रि आप सुनेंगे दिल्ली से समाचार संध्या का प्रसारण, जो हमारे केंद्र से रिले होगा। रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे शास्त्रीय गायन का कार्यक्रम सुर सौरव, और इसमें आज आप सुनेंगे संतूर वादन पंडित शिव कुमार शर्मा से, और तबला पर होगा संगत अनिदो चटर्जी का। राग सोहनी में आप ये शास्त्रीय गायन संतूर वादन आप सुनेंगे। रात्रि 9:30 पर विविध भारती से सुनिएगा कार्यक्रम आज के फनकार, और रात्रि 10 बजे हिंदी एल्बम सॉन्ग का कार्यक्रम हम लेकर हाजिर होंगे रस रंग। रात्रि 10:30 पर चित्रपट तराने कार्यक्रम में हिंदी फिल्मी गीतों का आप आनंद लेंगे, और रात्रि 10:55 पर अगले दिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। रात्रि 11 बजे दिल्ली से हिंदी में समाचार प्रसारित होगा, और अंग्रेजी में समाचार रात्रि 11:05 पर। सभा का समापन हम करेंगे रात्रि 11:10 पर। तो श्रोताओं, ये थी कार्यक्रम संबंधी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 5:10 हो चुके हैं। अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

0: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

सभी श्रोता बहनों को मंजू बाला का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम घर आंगन में। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगी, खुश होंगी, अपने घर परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ। बहनों, बच्चे तो हमारे घर रूपी बगिया के वो फूल हैं जिनकी खुशबू से हमारा घर महकता है, हमारे घर के खुशहाल आंगन का निर्माण होता है। कहते हैं ना कि स्वस्थ बचपन ही सफल भविष्य की नींव होता है। बढ़ते बच्चों के लिए सही पोषण की आवश्यकता बहुत मायने रखती है। उनका पोषण कैसा है, उनकी दिनचर्या कैसी है, उनके पोषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सही पोषण से उनका शारीरिक विकास, मानसिक क्षमता और रोगों से लड़ने की ताकत बेहतर होती है। बहनों, इसी महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, बढ़ते बच्चों का पोषण कैसा हो। जानेंगे कि बच्चों की थाली में कौन कौन से खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए, किन आदतों को अपनाना चाहिए और माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए। माता पिता उनकी सेहत का बेहतर ध्यान कैसे रख सकते हैं, हम इस बात पर आज चर्चा करेंगे। बहनों, कहते हैं बच्चे देश का भविष्य है और यह बिल्कुल सही है। उनका स्वस्थ विकास सही पोषण पर निर्भर करता है। जीवन के शुरुआती वर्षों में शरीर और मस्तिष्क का विकास तेजी से होता है। ऐसे में यदि बच्चों को संतुलित और पौष्टिक आहार मिले तो वे शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से सक्रिय और भावनात्मक रूप से स्वस्थ बनते हैं। पोषण का अर्थ केवल पेट भरना ही नहीं होता बहनों, बल्कि ऐसा भोजन लेना होता है जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक सामग्री जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और फाइबर उचित मात्रा में उपलब्ध हो। अक्सर देखा गया है कि बच्चे फास्ट फूड, जंक फूड, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक तथा चॉकलेट टॉफी की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं, लेकिन इनका अधिक सेवन स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। इसलिए घर का ताज़ा और संतुलित भोजन खाने की आदत विकसित करना बहुत ज़रूरी है।

घर का ताज़ा और संतुलित भोजन बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, यह उनके लिए अधिक लाभकारी होता है। समय पर भोजन करना और परिवार के साथ बैठकर खाना खाने की आदत भी अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। बच्चों के भोजन में दालें, दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, साबुत अनाज, अंकुरित अनाज और पर्याप्त मात्रा में पानी शामिल करें। अंडा भी प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है, इसलिए बच्चों को अंडा प्रतिदिन खिलाने चाहिए। साथ ही बच्चों को नियमित खेल कूद, पर्याप्त नींद और स्वच्छता की अच्छी आदतें सिखाना भी हमारा दायित्व है। स्वस्थ जीवन शैली और सही पोषण मिलकर उनके सर्वांगीण विकास में सही भूमिका निभाते हैं। यदि भोजन संतुलित हो तो बच्चे अधिक ऊर्जावान रहते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और वे पढ़ाई में भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इसलिए बहनों, याद रखिए, आज का सही पोषण कल के स्वस्थ और सफल भविष्य की नींव है। तो हम सभी का यह दायित्व है कि हम अपने बच्चों को पौष्टिक आहार दें और बेहतर जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करें। अब इस चर्चा के बाद आइए सुनते हैं एक बड़ा ही प्यारा सा गीत।

बहनों, हम अपने कार्यक्रम में हमेशा ऐसी प्रेरक महिलाओं से आपको रूबरू करवाते हैं जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही महिला से, महिला के बारे में जिन्होंने अपने जीवन के कठिन संघर्षों को हजारों अनाथ बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक महान समाजसेवी सिंधु ताई सपकाल की, जिन्हें प्यार से अनाथों की माँ भी कहा जाता है। सिंधु सपकाल का जन्म 14 नवंबर 1948 वर्धा के पिंपरी मेघे गांव में हुआ था। उनका बचपन अत्यंत गरीबी में बीता और आर्थिक तंगी के कारण उनकी पढ़ाई बहुत कम हो सकी, यानी वो बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं सकी। कम उम्र में विवाह हो गया। वैवाहिक जीवन में उन्हें अनेक कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना पड़ा। जीवन की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना जीवन अनाथ, बेसहारा और ज़रूरतमंद बच्चों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। समय के साथ उन्होंने अनेक बच्चों को आश्रय दिया, उन्हें शिक्षा दी, उन्हें स्नेह प्रदान किया तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनने की राह दिखाई। उनके लिए हर बच्चा अपना था और बच्चे की हर मुस्कान उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उनका मानना था कि सच्ची महानता दूसरों के जीवन में आशा की किरण बनना ही है। सिंधु ताई का स्पष्ट संदेश था कि यदि हम किसी एक ज़रूरतमंद का हाथ थाम लें तो समाज में बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। उनका जीवन करुणा, त्याग और मानवता की अनमोल मिसाल है। सिंधु ताई का जीवन हमें यह सिखाता है बहनों कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि मन में सेवा का भाव और दृढ़ संकल्प हो तो असंभव काम को भी संभव बनाया जा सकता है, जैसा कि उन्होंने कर दिखाया। अत्यंत गरीबी और सामाजिक कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में कई संस्थाओं की स्थापना की और उसके संचालन में योगदान दिया। उनके निस्वार्थ कार्यों के लिए उन्हें अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। उनका कहना था कि हर बच्चे को प्यार, सुरक्षा और शिक्षा का अधिकार है और यह उसे मिलना ही चाहिए। उनका जीवन संघर्ष, करुणा, साहस और मानवता की मिसाल है। आज भी वे लाखों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और यह संदेश देती हैं कि एक व्यक्ति का समर्पण अनेक लोगों का जीवन बदल सकता है।

तो बहनों आइए हम भी सिंधुताई सबकाल के जीवन से प्रेरणा लेकर आसपास के ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें और समाज को अधिक संवेदनशील तथा समावेशी बनाने में योगदान दें। तो चलिए इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ आइए सुनते हैं पुनः ये गीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: और अब बारी है रेसिपी की, तो चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं रसोई घर में, जहां हम बात करेंगे हरी सब्जियों के व्यंजन की। बहनों, हम सभी जानते हैं कि हरी सब्जियां हमारे लिए कितना ज़रूरी हैं। हरी सब्जियां न केवल हमारे भोजन का स्वाद बढ़ाती हैं, बल्कि शरीर को स्वस्थ भी रखती हैं। इनमें मौजूद विटामिन्स, खनिज और फाइबर हमें ऊर्जा देते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि हमारे बच्चे और कभी कभी तो कुछ बड़े लोग भी हरी सब्जियां खाने से कतराते हैं। लेकिन यदि इन्हें स्वादिष्ट तरीके से बनाया जाए तो बच्चे और बड़े दोनों इन्हें खुशी खुशी खा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कुछ आसान और पौष्टिक हरी सब्जियों के व्यंजन की। सबसे पहले बात करते हैं पालक पराठा। बच्चों को ऐसे पालक का साग बनाकर दिया जाए तो वो नानुकुर करेंगे, नहीं खाएंगे। लेकिन उसी पालक का हम पराठा बनाएं तो उसे वो चाव से खाएंगे। तो पालक पराठा बनाने के लिए बारीक कटा या पिसा हुआ पालक गेहूं के आटे में मिला लीजिए और उसमें हल्का मसाला डालकर पराठा बेलकर सेक लीजिए। इसे दही या घर की बनी चटनी के साथ सर्व करें। उसी तरह से मेथी रोटी, हम सभी जानते हैं मेथी का साग कितना स्वास्थ्यवर्धक है। मेथी रोटी बनाने के लिए ताजी मेथी की पत्तियों को तोड़ लीजिए और उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट लीजिए और उनको आटे में मिलाकर नरम रोटी या पूड़ी बना लीजिए। मेथी पराठा या मेथी पूड़ी स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत फ़ायदेमंद है। मिक्स वेजिटेबल की बात करें तो यह रंग बिरंगा पौष्टिक व्यंजन बच्चों को बहुत पसंद आता है। पालक, मटर, गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर जैसी सब्जियों को हल्के मसालों के साथ पका लीजिए। स्वाद के साथ सेहत का यह भरपूर खजाना है और इसे बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। साग का सूप, इसकी बात करते हैं। पालक, हरा धनिया और थोड़ी सी लौकी या मटर को उबालकर पीस लीजिए। अब उसमें अंदाज से पानी डालकर थोड़ा सा उबाल आने तक खौला लीजिए।

हल्का नमक और काली मिर्च डालकर गर्मा गर्म सूप तैयार है। बहनों, याद रखिए कि हरी सब्जियों को बहुत अधिक पकाने से उनके पोषक तत्व कम हो सकते हैं, इसलिए उन्हें धोकर उचित समय तक ही पकाएं और ताज़ा ताज़ा परोसें, क्योंकि बासी होने पर उसका स्वाद बदल जाता है, वो बात नहीं रह जाती जो ताज़ा में होता है। तो बहनों, हरी सब्जियों को रोज़मर्रा के भोजन का हिस्सा बनाइए और परिवार को दीजिए स्वाद और पोषण का उपहार। ऐसा करने से आपके घर के लोग स्वस्थ रहेंगे और खुशहाल रहेंगे। और आइए चलते चलते सुनते हैं पुनः ये प्यारा सा नगमा।

तो बहनों अब बस सावन का ही इंतज़ार है। इतनी तपिश तपिश के बाद अब सावन ही हमें राहत देगा। तो अब कार्यक्रम के समाप्त होने का समय भी हो गया है। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपनों का। और चलते चलते हम आपको बता दें बहनों कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी संतोष कुमार की। और अब अपनी रेडियो सखी मंजू बाला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

प्रणाम। ये आकाशवाणी पटना है। अब रहुआ आशुतोष से सुनी भोजपुरी समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज कहले कि केंद्र सरकार से बिहार के मिले वाला 4,000 करोड़ रुपया के बकाया राशि 30 जून तक उपलब्ध करा दहल जाय। श्री चौधरी पटना के फुलवारी शरीफ स्थित नदिया

छावा में आयोजित प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर के संबोधित करे के बेरा ई बात कहले श्री चौधरी। राजधानी पटना में विकसित होखे वाला नया टाउनशिप के नाम पाटलिपुत्र रखे के घोषणा कैले। मुख्यमंत्री शिविर में पहुंचल लोगन के शिकायत सुनले आ ओकरा समाधान खातिर अधिकारी लोग के जरूरी दिशा निर्देश दहले। वो आगे कहले कि बिहार के ऐतिहासिक आ सांस्कृतिक धरोहर के पुनर्जीवित करे के प्रयास कैल जा रहल बा। यह मौका पर वो कहले कि जल्दीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथे भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के शिलान्यास करावल जाए। मुख्यमंत्री जानकारी दिहले कि कोइलवर से भागलपुर ले 83 किलोमीटर लंबा गंगा पाथवे बनावल जाए जेकरा पर लगभग 17,000 करोड़ रुपया खर्च हुई। समारोह में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी आ सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव भी मौजूद रहले। केंद्रीय कृषि आ किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पटना के नौबतपुर स्थित राज्य बीज उत्पादन फार्म में आयोजित खेत बचाओ अभियान में शामिल भइले। कार्यक्रम के दौरान वो किसान लोग से बात कैले। ए दौरान कहले कि बिहार में कृषि खातिर इंटीग्रेटेड फार्मिंग के मॉडल अपनावल जाए। बिहार में छोट किसान के संख्या ढेर बा जौना चलते इहवा ई मॉडल सफल होई। ए कार्यक्रम में शामिल होके के पहले केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ उच्च स्तरीय बैठक कैले। बैठक में कृषि ग्रामीण विकास विकसित भारत अभियान पीएम आवास योजना आ केंद्र राज्य समन्वय से जुड़ल मुद्दा पर चर्चा भइल। हमार संवाददाता बतौलने कि श्री चौहान आज सवेरे पटना के गोलघर परिसर में स्वच्छता कार्यक्रम में हिस्सा लेले। साथ ही एमएलए फ्लैट परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम में भी शामिल भइले। मद्य निषेध कारा आ परिवहन विभाग में सिपाही या कक्षपाल के नियुक्ति खातिर आज 2 गो पाली में परीक्षा भइल। परीक्षा के लेके सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कैल गेल रहे। केंद्रीय चयन परिषद के जानकारी के अनुसार पूरा राज्य भर में कुल 544 गो परीक्षा केंद्र बनाओल गेल रहे जहां परीक्षा सम्पन्न भइल। एह बीच अभ्यर्थियों के सुविधा खातिर रेलवे के तरफ से 25 गो विशेष ट्रेन चलावे की व्यवस्था कैल गेल बा। ये ट्रेन पटना बक्सर गया सोनपुर सहरसा मधुबनी आ बेतिया समेत कई गो स्टेशन से चलावल जाए। रेल प्रशासन अभ्यर्थियों से समय से पहले स्टेशन पर पहुंचे आ निर्धारित ट्रेन के उपयोग करे के अपील कैले बा। रेलवे सोशल मीडिया पर वायरल खबर के गलत बतौलस जेमे पाटलिपुत्र स्टेशन पर ट्रेन में बैठल एगो विद्यार्थी के मरे के बात कहल गेल रहे। राज्य में आज दोपहर बाद मौसम बदल गेल बा। राज्य के 11 गो जिला में तेज हवा के साथे बरखा बरसल। बेतिया मोतिहारी मुजफ्फरपुर सहित 11 गो जिला में बरखा बरसल। उहे राज्य के रोहतास भभुआ भोजपुर सहित राज्य के बाकी जिलन में भीषण गर्मी रहे। बरखा बरसला से उत्तर बिहार में गर्मी से राहत मिलल बा। बरखा कम होखे के चलते पटना समेत 7 जिला में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल गेल बा। पिछला 24 घंटा में 42.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ भभुआ राज्य के सबसे गर्म जगह रहे जबकि किशनगंज के तैयबपुर में सबसे अधिक 12.2 मिलीमीटर बरखा दर्ज भइल। मौसम विभाग के अनुसार गोपालगंज पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर वैशाली शिवहर सारण सीतामढ़ी नालंदा आ शेखपुरा जिला में तेज हवा बरखा आ वज्रपात के आशंका बा। एकरे अलावा कैमूर जमुई समस्तीपुर दरभंगा बांका नवादा आ लखीसराय जिला खातिर ऑरेंज अलर्ट जारी कैल गेल बा। रेलवे गोपालगंज छपरा थावे रेलखंड पर स्थित दिघवा दिभौली स्टेशन पर ताप्ती गंगा एक्सप्रेस के 2 मिनट के ठहराव दहले बा। ये अवसर पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ताप्ती गंगा एक्सप्रेस के दिघवा दिघौली स्टेशन पर पहुंचला पर लोको पायलट के माला पहिरा के सम्मानित कैले। वहां कहले कि यह ट्रेन के रुकला से यात्रियों के काफी सुविधा मिली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज पुणे के हड़पसर रेलवे स्टेशन से पुणे दानापुर साप्ताहिक अमृत भारत ट्रेन के हरी झंडी देखा के रवाना कैले। ये ट्रेन शुरू होखला से बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच यात्रा आवरी आसान हो जाए। ट्रेन हर शनिचर के दोपहर के 3:30 पर पुणे से दानापुर खातिर रवाना हुई आ सोमवार के दानापुर पहुंची। वही तिया दानापुर से हर सोमवार के भोरे 3:30 पुणे खातिर रवाना हुई। एकरे साथे आकाशवाणी पटना केंद्र से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एहिजा समाप्त भइल।

कार्यक्रम गांव घर के साथ हम ही रनिया बहिन तो सबसे पहले करें जा स्वीकार हमार नमस्कार। श्रोता सभे हमरा उम्मीद बा कि रुआ लोग खुश हो खब जा, स्वस्थ हो खब जा, अपने परिवार बाल बच्चन के साथ एकदम मस्त हो खब जा। श्रोता सभे देखी आज 17 जून हुए आ हर साल आज के दिन मरुस्थलीकरण आ सूखा से बचाव खातिर के सूखा से निपटे खातिर के विश्व दिवस मनावल जाला। श्रोता सभे एकर उद्देश्य लोगन के जागरूक करे के होखेला आ जमीन का धीरे धीरे जौन बंजर जमीन में बदल जाला वही एकरा के कि हमने के मरुस्थलीकरण का मतलब होखेला। यानी कि जहाँ पर पहले श्रोता सभे खेती होत रहे, हरियाली रहत रहे, पानी रहत रहे, वही जा हर माटी देखतनी कि अब कौनो तरह का माटी होखे एकदम सूखा रहत बाटे आ खेती कैलो जंगा समझ लें कि एकदम मुश्किल हो गई बाटे। यह तरह से सूखा एगो ऐसा स्थिति होखेला जब लंबा समय तक बरखा नहीं होला आ पानी का कमी हो जाला। श्रोता सभी आज के समय में ये समस्या बहुत ही तेजी से बढ़ रहा बा जेकरा वजह से किसान परेशान हो रहा बा ना, फसल खराब हो रहा बाटे आ लोगन के पिए के पानी तक दिक्कत होखे लागल बाटे। श्रोता सभी अपने जमीन आ पानी के कैसे बचा सकत नहीं जा आज 17 जून के पूरा दुनिया में मरुस्थलीकरण दिवस मनावल जाला ताकि लोग समझ सकें कि धरती के बंजर होखे से रोकल कितना जरूरी बाटे। श्रोता सभी मरुस्थलीकरण के कई गो कारण बाटे जैसे कि पेड़ के कटाई अंधाधुंध हो रहा बाटे, माटी का गलत उपयोग, पानी का लोग गलत उपयोग कर रहा बाना, जलवायु परिवर्तन एकदम हो रहा बाटे। श्रोता सभी जब पेड़ कम हो जाला तो माटी कमजोर हो जाला आ बरखा के पानी जमीन पर सही से नहीं समाला, मतलब कि जब पानिए नहीं होखे तनी मनी होखे तो ऊपरे ऊपरे धूरे खाली मर जाए, भीतर अंदर जमीन में जैबे नहीं करी। ऐसे कहला कि जमीन जौन बा कि एकदम दिनों दिन बंजर होखल चल जात बाटे। मरुस्थलीकरण आ सूखा से बचे खातिर कि हमने के पानी का सही उपयोग करल बहुत जरूरी बाटे। आजकल लोग पानी के बेकार बहवा देत बाना जेकरा से कि धीरे धीरे पानी के कमी होखे लगल बाटे। हमने के हर बूंद पानी के बचावे के चाहे जैसे नहात समय, कपड़ा धोवत समय, खेत में सिंचाई, माने हर तरह से हमने के पानी के बचाव जरूरी बाटे। एकरे अलावा श्रोता सभी वर्षा जल संचयन भी बहुत अच्छा तरीका हुए जेकरा में कि बरखा के पानी के इकट्ठा करके जमीन के अंदर यानी कि टैंक में जमा कर दहल जाला जेकरा से कि पानी के कमी के हद तक काफ़ी हद तक कम कर दहल जाला। पेड़ पौधा लगावल बहुत जरूरी बाटे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगावे से वातावरण में नमी बनल रहेला आ बरखा होखे के संभावना भी बढ़त रहेला, पेड़ माटी के कटे से बचावेला आ जमीन के मजबूत बनौले रखेला। मरुस्थली आ सूखा से रोके खातिर कि हमने के अपने आदत में भी कुछ बदलाव ले आवे के होके जैसे कि हमने के प्राकृतिक संसाधन का जरूरत से ज़्यादा उपयोग नहीं करे के चाहिए। अगर हमने के पेड़ के अंधाधुंध कटाई कर रहल बनी जाए तो जाहिर सी बात बाटे कि जमीन कमजोर होइए जाए आ बरखा का संतुलन बिगड़बे करे। आजकल देखत नहीं कि फैक्ट्री गाड़ी से निकले वाला प्रदूषण भी जलवायु परिवर्तन के बढ़ा रहल बाटे जेकरा से कि मौसम अनियमित हो जात बाटे आ कई जगह पर तो सूखा पड़े पड़ ही लगत बाटे। ऐसे

प्रदूषण के कम कईल भी बहुत जरूरी बाटे। श्रोता सभे आगे हमने के और ही सुनल जाई, आई सुनल जाओ एक ठे लोकगीत। आज के लोकगीत के कलाकार बनी प्रभा कुमारी।

0: श्रोता सभी लोकगीत खातिर के यहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा बढ़िया लोकगीत सुनैली हम। अब हमने के अपने कार्यक्रम के आगे बढ़ावल जाए, ओकरा से पहले हमने के कुछ जान लेल जाओ कि देखिए विषय बाटे एकर जनसंख्या नियंत्रण। आज के वार्ताकार बनी भूपेंद्र नारायण सिंह। वैसे भी हमने के श्रोता सभी देखी जनसंख्या पर तो हमने के भाई ध्यान दे वहीं के पड़ी, जैसे कि हमने के अगर ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाए तो हमने के जितना आमदनी नहीं रही उतना से अधिक हमने के खर्चा होखे लगी। दूसरे में कि बढ़िया से ना पढ़ाई हो पाई, ना उन लोगों का भरण पोषण हो पाई, ना खाना दाना बढ़िया से मिल जाए, ना कपड़ा लत्ता मिल जाए। तो यही सोच करके हमने के ये ध्यान में रखे के चाहिए कि हमने के अपने क्षमता के अनुसार ही बाल बच्चन के जन्म दही, कितना हमने के जरूरी बाटे, कितना हम कर सकीला, ओकरे अलावा ही ओकरे तरफ ध्यान देकर के ही हमने के अपने जनसंख्या पर आगे बढ़ावे के चाहिए। कहे कि पढ़ाई लिखाई सबसे ज़्यादा जरूरी होला। तो आई हमने के सुनल जाओ वार्ता, विषय बटे जनसंख्या नियंत्रण, वार्ताकार बढ़ी भूपेंद्र नारायण सिंह।
1: विश्व के पैमाने पर जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे नंबर पर है। भारत की ताज़ा गणना रिपोर्ट के मुताबिक जनसंख्या 1 अरब 10 करोड़ को पार कर चुकी है। जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है संसाधन काफ़ी पीछे रह जाते हैं, फलस्वरूप देश की अधिकांश आबादी अभाव में जीने को विवश है। भारत गाँव का देश है और विकासशील होने के बावजूद लगभग 70% आबादी गाँव में बसती है। जाहिर है कि जनसंख्या वृद्धि में गाँव में औसतन ज़्यादा हो रही है। ग्रामीण परिवेश में आज भी साक्षरता की दर काफ़ी कम है। कृषि, मजदूरी अथवा छोटे मोटे व्यवसाय करने वाले लोग शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं हैं। अशिक्षित होने के कारण लोग जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं के प्रति लापरवाह हैं। हालांकि सरकारी तौर पर प्रत्येक उम्र के पुरुष, स्त्री एवं बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त पारंपरिक अवधारणाएं इसमें बाधक बन रही हैं। लोगों के बीच शिक्षा से ज़्यादा महत्व घर चलाने को दिया जाता है। अधिक से अधिक आमदनी को प्रमुखता देते हुए आबादी वृद्धि को उसका आधार मान लिया जाता है। परिवार में ज़्यादा सदस्य होंगे तो अधिक कमाई करेंगे, ऐसी सोच से जनसंख्या वृद्धि होती चली जा रही है। जबकि आज के इस वैज्ञानिक युग में संख्या बल से अधिक महत्व शिक्षित युवा वर्ग को दिया जा रहा है। अगर घर में एक ही युवा हो और शिक्षा प्राप्त कर ले तो पूरे परिवार का भरण पोषण हो सकता है। परिवार में अधिक संख्या में लोगों का होना आज के युग में आवश्यक नहीं है। परिवार में जितने लोग बढ़ेंगे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बोझ बढ़ेगा, नतीजा उनका विकास ठप हो जाएगा और गरीबी की मार झेलनी पड़ेगी। भारत में आदिकाल से गृह में पुत्र का होना पारंपरिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवधारणा को लेकर एक पुत्र की आशा में कई पुत्रियां जन्म ले लेती हैं। परिवार का आर्थिक पक्ष इससे काफ़ी प्रभावित हो जाता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और फिर वही वंशानुक्रम चल पड़ता है। आज बेटे और बेटियों में कोई फर्क नहीं, प्रत्येक क्षेत्र में बेटियां बढ़ चढ़कर कार्य कर रही हैं और किसी भी मायने में बेटों से कम नहीं है। इसलिए स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। पिछले कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ सफलता प्राप्त कर रही हैं। पारंपरिक अवधारणा और रूढ़िवादी सोच से ऊपर उठकर बेटा और बेटी के फर्क को पाटना नितांत आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्र

जनता आज भी रूढ़िवादी विचार से ऊपर नहीं निकल पा रही है। हालांकि सरकारी स्तर पर परिवार नियोजन को लेकर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन हो रहा है, इसके बावजूद संतान उत्पत्ति को दैवीय आशीर्वाद मानते हुए लोग उसे अपनाने से पिछड़ रहे हैं। शहर से लेकर ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों तक गर्भ निरोधक वस्तुओं की उपलब्धता सरकार द्वारा निःशुल्क कराई जा रही है, लेकिन उसके उपयोग को लेकर अशिक्षित वर्ग में तरह तरह की भ्रांतियाँ व्याप्त हैं। फलस्वरूप इससे वंचित होकर एक बड़ी आबादी जनसंख्या वृद्धि में निरंतर अपनी भूमिका अदा कर रही है। कुछ वर्ग के लोग गर्भ निरोधक अथवा परिवार नियोजन अपनाने को लेकर धार्मिक मान्यताओं को आगे खड़ा कर देते हैं। उनके मुताबिक परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाना धर्म के विरुद्ध जाता है और ऐसा करने से उनके इष्ट देव नाराज हो जाएंगे, ऐसी सोच विकसित की जाती है। ऐसी काल्पनिक बातों को फैलाकर एक बड़ी आबादी इन कल्याणकारी योजनाओं से खुद को अलग रखती है। फलस्वरूप इनकी आबादी तेजी से बढ़ती चली जा रही है और गरीबी की मार को झेलते हुए लोग बेरोजगारी तथा आपराधिक चरित्र के शिकार होते चले जा रहे हैं। इन सब रूढ़िवादी विचारधाराओं को छोड़कर देश की मुख्यधारा में जुड़ना चाहिए तथा जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणामों पर विचार करना चाहिए ताकि भविष्य सुरक्षित हो सके। भारत जैसे विकासशील देश के प्रबुद्ध नागरिकों का यह दायित्व बनता है कि भविष्य के प्रति अनजान एवं लापरवाह लोगों को जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के बारे में जागरूकता अभियान चलाएं व चलवाएं। भले ही सरकारी स्तर पर परिवार नियोजन अथवा गर्भ निरोधक कार्यक्रम निःशुल्क चलाए जा रहे हैं, लेकिन आम लोगों का झुकाव उस ओर नहीं है। भले ही उनके बीच अशिक्षा, रूढ़िवादी सोच, लापरवाही, बहुवंशवाद जैसी सोच घर कर रही हो, लेकिन उनके बीच ईमानदार प्रयास कालांतर में अवश्य अपना रंग दिखाएगा। आम लोगों के बीच अभी भी इस जानकारी का अभाव है कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्र अथवा सरकार द्वारा नामित स्वास्थ्य केंद्रों पर नसबंदी कराने वालों पुरुषों अथवा बंध्याकरण कराने वाली महिलाओं को नगद राशि देने का प्रावधान किया गया है। पुरुषों में यह भ्रांति है कि नसबंदी कराने के बाद उनकी पौरुष क्षमता समाप्त हो जाती है, साथ ही शरीर में कमजोरी आ जाती है। यह बिल्कुल गलत संदेश है और नसबंदी के बाद पुरुष की सेहत में कोई भी फर्क नहीं आता। अधिकांश पुरुष यह विचार रखते हैं कि केवल महिलाओं को ही वंध्याकरण का दायित्व है, जो कि अत्यंत शोचनीय है। जनसंख्या नियंत्रण में पुरुषों की सहभागिता महिलाओं से ज़्यादा होनी चाहिए, यह विचार विकसित करने की ज़रूरत है। गरीबी एवं अशिक्षा की चक्की में पिस रही आबादी काफ़ी कम उम्र में ही बेटियों की शादी करके निश्चिंत हो जाना चाहती है। शरीर और मन दोनों से अपरिपक्व दंपति जब तक समझदार होते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। 14-15 वर्ष की आयु में विवाह हो जाने से 25 वर्ष की उम्र होते होते वे 4-5 बच्चों के माता पिता हो चुके होते हैं, लेकिन अब उनके पास कोई चारा नहीं होता और फिर से एक पीढ़ी मुफलिसी की भेंट चढ़ चुकी होती है। कम उम्र में विवाह की परंपरा नितांत बकवास है और इससे हर हाल में बचने की ज़रूरत है। प्रबुद्धजनों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं प्रत्येक जागरूक नागरिकों को बाल विवाह अथवा अवयस्कों की शादी जैसी क्रियाकलापों को रोकने में आगे आना चाहिए। बेटी की 18 वर्ष और बेटे की उम्र 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए जब उनकी शादी हो रही हो। इससे कम उम्र की शादी को कानूनी रूप से जुर्म माना गया है, लेकिन जागरूकता के अभाव में ऐसी शादियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः देखी जाती हैं, जहाँ अशिक्षा एवं गरीबी ने पूर्व से ही अपना डेरा डाल रखा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी जानकारी देने और लोगों को इसके दुष्परिणामों से अवगत कराने में जब तक आम जन सहभागी नहीं होंगे तब तक यह समस्या बढ़ती ही जाएगी। चाहे पारंपरिक अवधारणाएँ हों, धार्मिक मान्यताएँ हों अथवा रूढ़िवादी सोच, अगर इनकी समाप्ति के लिए ईमानदार प्रयास

0: तो देश की सबसे बड़ी इस समस्या पर निस्संदेह काबू पाया जा सकता है। केवल सरकारी प्रयासों व कार्यक्रमों के भरोसे इस समस्या का निदान संभव नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। यदि हम खुद आधा दर्जन बच्चों के पिता हैं, तो फिर मेरा पड़ोसी जनसंख्या नियंत्रण की सलाह मेरे द्वारा क्यों मानेगा? हमें तो खुद से इसकी शुरुआत करनी होगी, स्वयं के परिवार में इसे अपना कर दिखाना होगा, तभी समाज और गांव इसे अपनाएगा। जब एक एक नागरिक जनसंख्या नियंत्रण के मूल मंत्र को समझकर इसे स्वीकार करेंगे, तभी इस भीषण समस्या से निजात मिल सकेगी। सुरसा के मुँह की भांति लगातार बढ़ती जा रही जनसंख्या विस्फोट को रोकने में प्रत्येक पुरुष और महिला को अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाना होगा और उसमें सहभागी बनना होगा, तभी हम जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं।
1: श्रोता सभी, अभी हमने के जनसंख्या नियंत्रण पर वार्ता सुनत रही जा। वार्ता कर रही हैं भूपेंद्र नारायण सिंह। यहाँ के इतना सुंदर बढ़िया वार्ता बतैनी सुनैनी, सबके समझैनी, जनसंख्या नियंत्रण हमने के कैसे ढंग से करे के चाहिए आ कितना तेजी से बढ़ भी रहा बाटे। यह वार्ता खातिन के भूपेंद्र नारायण सिंह के बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमने के अपने कार्यक्रम के आगे बढ़ावे से पहले सुन लेवे के संदेश।

0: तक पहुँचे के सस्ता असुलभ माध्यम बा आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का केंद्रन से करें विज्ञापन का माध्यम से अपन उत्पादित माल आ सेवा का प्रचार।
0: स्थानीय आ देश स्तर पर कहीं करी अपन बिजनेस के प्रसार।
1: काहे कि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग भइला आसान।
0: घर दफ्तर या दुकान पर बैठल अब करी विज्ञापनन के बुकिंग।
1: डायल करें 8700014242।
0: नंबर फिर लिखी 8700014242।
2: श्रोता सभी अब हमने के अपने कार्यक्रम की ओर चलल के और अब जाने के कि पानी का बचत बा जरूरी यह विषय पर हमने के आगे बढ़ल जाओ। श्रोता सभी देखी हाँ पानी हमने के जीवन खातिर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हुए काहे कि एकरे बिना कोई भी जीवित प्राणी जीवित नहीं रह सकल। हमने के रोज खाना बनावे नहाए धोवे कपड़ा लत्ता खेती बारी पशु पक्षी सबकर उपयोग खातिर के हमने के पानी ही जरूरी होला। ऐसे कहल जाला कि जल बा त कल बाटे। आज के समय में पानी का समस्या धीरे धीरे इतना बढ़त जा रहा बाटे श्रोता सभे। कई गांव आ शहर में लोगन के पानी का मने साफ पानी पिए खातिर के नहीं मिलत। कहीं कहीं गर्मी के दिन में तो कुआँ तालाब पोखरा नदी सब सूखा जा रहा बाटे। ऐसा समय में श्रोता सब है लोगन के पानी खातिर के लंबा दूरी देखेला के कहीं कहीं तय करे के पड़ेला। ये स्थिति हमने के ये बतावेला कि पानी का बचत हमने खातिर के कितना जरूरी बाटे। देखिए अक्सर जाने अनजाने में हमने के बहुत सारा पानी के बर्बाद कर दही ला जा। कई लोग नल खुला छोड़ देवे ना जरूरत से ज़्यादा पानी खर्चा करे लगे ना चाहे पानी के स्रोत के गंदा कर देवे ना। अगर मोटरसाइकिल धोए शुरू कई ना तो अब कितना पानी गिर रहा बाटे कोनो निश्चित नहीं है कोनो ओकर तुलना नहीं है कि कितना आदमी पानी गिरा रहा बाटे। अगर हमने के आज पानी का कदर नहीं कई जाए श्रोता सभे तो आवे वाला पीढ़ी बड़ परेशानी का सामना करे के पड़ सकेला। पानी बचावे खातिर हमने के छोट छोट आदत के अपनावे के चाहिए। जैसे कि नल अगर बेवजह खुला बाटे ओकर टूटी टूट गई बाटे तो भाई ओकरा के ठीक करा लही दुरुस्त करा लही पानी के इसलिए खुला मत छोड़ी। बरखा के पानी के जमा करे के भी ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके प्रयास करत रही। खेत में पानी का स्रोत जवन भी सोच समझ करके उपयोग करे के बाटे बस उतने तक रखी। तालाब कुआँ नदी तालाब जवन भी बाटे ओकरा के साफ रखे के चाहिए। पेड़ पौधा भी अधिक लगावे के चाहिए कहे से कि पेड़ बरखा के बढ़ावे आ पर्यावरण के संतुलित रखे में बड़ा मदद करेला। श्रोता सभे देखिला कि गांव में पहले लोग तालाब कुआँ का संरक्षण करत रहा ऐसे कि पानी

कमी कबो कम मत होखे। आज फिर से उहे माने परंपरा अगर हमनी के अपनावे लगल जाई तो समझ लें कि पानी हमनी खातिर के बड़ा कठिन थी नहीं कि पानी हमनी के मिलबे नहीं करी। अगर हमनी के बचावे शुरू कर दही जाए तो पानी जरूर मिले लगी, साफ पानी मिले लगी। पानी के बचत खाली हमनी के घरे तक सीमित नहीं है श्रोता सभे, बल्कि पूरा समाज एकरा खातिर के जागरूक होके के चाहिए, समाज के जागरूक होके के चाहिए। अपने बच्चन के बचपन से ही पानी के महत्व के सिखावे के चाहिए, तबे हमनी के बड़ा होकर के ओकर रक्षा कर सकेलन जा। स्कूल भइल, गांव भइल, मोहल्ला भइल, समय समय पर लोगन के पानी बचावे के बारे में भी बतावे के चाहिए, जागरूक करे के चाहिए। जितना अधिक लोग जागरूक हुई हैं श्रोता सभे, उतने अधिक पानी बचावल जा सकत बाटे। आज देखी कई जगह पर भूजल स्तर जनबा लगातार नीचे चलल जा रहल बाटे। पहले जहाँ थोड़ा गहराई पर पानी मिलत रहे, देखें कि अब काफ़ी नीचे तक बोरिंग करे के पड़त बाटे। एकर कारण बाकी पानी का अधिक जोन बाकी उपयोग आ लंबा समय तक जोन बाटे कि हमनी के कर रहल बनी जाए, पानी के बर्बाद कर रहल बनी जाए। वर्षा के पानी के सही ढंग से संरक्षण नहीं खींच जा करत। अगर हमनी के बरसात के पानी के जमीन में पहुँचावे के व्यवस्था कर दही जाए तो भू जल स्तर जोन बाटे कि वो बढ़ावे में हमनी के मदद मिल सकत बाटे। खेती करे वाला किसान की जिम्मेदारी भी बहुत महत्वपूर्ण बाटे श्रोता सभी। खेत में जरूरत के अनुसार सिंचाई करी, ऐसा तकनीक का उपयोग करी जरा में कि पानी का कम हो कर खपत। पानी बचावे का मतलब खाली पानी बचावे के नहीं, बल्कि अपने भविष्य, अपने खेत, अपने पशुओं, अपने जीवन के सुरक्षित भी करे के बाटे। देखें अब हमने के थोड़ा सा मौसम की ओर चल जा। मौसम के पूर्वानुमान पर भी हमने के एक नज़र डाल रहा जा। देखिए भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अवधि माने 17 से 21 जून के दौरान जिला में एक दो स्थान पर गरज चमक के साथ आंधी आ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तेज हवा भी चले के संभावना बाटे। हल्का मध्यम बरखा भी होखे के संभावना बाटे। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड आ न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना बाटे। सापेक्ष आर्द्रता सवेरे 70 से 80 प्रतिशत, दोपहरिया में 25 से 30 प्रतिशत रहे के संभावना। पूर्वानुमान अवधि में 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से दक्षिण पूर्वा हवा भी चले के अनुमान बाटे। श्रोता सभी आगामी दिन में वर्षा के संभावना के देख करके खड़ा फसल में सिंचाई स्थगित कर दें आ खाद कीटनाशक का छिड़काव आसमान के साफ रहला पर ही करें। खड़ा फसल में सिंचाई स्थगित कर दें आ खाद कीटनाशक का जबन छिड़काव बटे उकरा के आसमान जब साफ रहे तबे करें। अभी हमने के खरीफ मक्का का बुआई कर सकतानी। खेत में जुताई में 10 से 15 टन गोबर का सड़ल खाद प्रति हेक्टेयर के दर से व्यवहार करी। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फुर और 50 किलो पोटास का व्यवहार करी। अनुशंसित मक्का का किस्म जैसे कि सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3, गंगा 11 ये सब बाटे रुआ बुआई कर सकतानी। गला घोटू आ लंगड़ी रोग के पशुओं के बचाव खातिर के टीकाकरण जरूर लगवा लें, तबे दुधारू पशुओं में टीकाकरण अवश्य लगवावे के चाहिए। नया गेहूं के भूसा के खियावे से पहले करीब 2 घंटा पानी में फुला दही आ 50 ग्राम खनिज मिश्रण आ 50 ग्राम नीमक चारा मिला करके ओकरा के अपने मवेशी के दही तो हमनी के बहुत बढ़िया मवेशी भी रही हम। आ देखें अब हमने के कार्यक्रम का समय एकदम अब समाप्त हो रहा बाटे, अब इजाज़त नहीं देत बोले के तो यह कार्यक्रम के गांव घर कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही संतोष कुमार। यही के साथ आज के गांव घर कार्यक्रम का समय अब खत्म होत बाटे। सभी श्रोता लोगन के रनिया बहन का नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे गांव घर कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। श्रोताओं अब आइए सुनते हैं सांझ गीत में भोजपुरी फिल्मी नगमे।

उदित नारायण, मनोज मिश्रा और इंदु सोनाली की आवाज़ों में सुन रहे थे ये प्यारा गीत साथी संघाती फिल्म से। गीत के बोल लिखे थे विनय बिहारी ने और संगीत था राजेश गुप्ता का। अगला गीत इसी फिल्म से सुनते हैं, उदित नारायण और कल्पना की आवाज़ों में विनय बिहारी के बोल, राजेश गुप्ता का संगीत।

0: नदिया के पार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जसपाल सिंह, हेमलता और साथियों की आवाज़ों में। गीत और संगीत दोनों ही रविंद्र जैन के थे।
1: बिजनेस बढ़ावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग, देहियों के बुलंदियन के पांख।
2: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का, आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
1: अब घर दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग।
2: आकाशवाणी का चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता असुलभ।
1: ता बुकिंग खातिर संपर्क करी 8700014242 पर।
2: जी हाँ, नंबर बा 8700014242।
0: और श्रोता, इसी के साथ भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 7 बज चुके हैं और अब आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
4: नमस्कार।

0: मैं हूं राजेश और एक बार फिर से आप सबों के घर आंगन में आज बुधवार का दिन है और लेकर आ गया पैरामेडिकल है पारस। जी हाँ, पैरामेडिकल है पारस में हम बातें करते हैं हेल्थ सेक्टर में पढ़ाई लिखाई की और उसके बाद रोजगार की भी स्वरोजगार की भी। अगर जो रोजगार है तो सरकारी क्षेत्र के रोजगार और निजी क्षेत्र के रोजगार की भी बात करते हैं। कहते हैं कि कोविड के बाद से इतना वाइब्रेंट हो चुका है हेल्थ सेक्टर कि पढ़ते पढ़ते ही रोजगार मिल जाता है या कमाना शुरू कर दिया जाता है। पैरामेडिकल है पारस हम लेकर आते हैं राज्य की एक विशिष्ट संस्था है पैरामेडिकल की, श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जो पटना के जक्कनपुर पुलिस स्टेशन के ठीक सामने है। उनकी तरफ से उनका मानना है कि बिहार के अंतिम युवा तक बातें पहुंच जानी चाहिए कि अगर वो हेल्थ सेक्टर की पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए रोजगार ले लेना बहुत कठिन कार्य नहीं है। हम नंबर बताते हैं इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद, आप चाहे तो डायल कर सकते हैं, नंबर नोट करें 9155558888 और दूसरा नंबर है 9162413233। ये नंबर है, इस पर आप बातें कर सकते हैं। और हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी, तो चलिए इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। किस मुद्दे पर बात होगी हम हाँ जोड़ते हैं। डॉक्टर साहब, क्या बात करना चाहिएगा पैरामेडिकल के बारे में बताइए।
1: देखिए राजेश जी, बहुत अच्छे अच्छे जो बैचलर का कोर्स आ गए हैं, हाँ। बच्चे लोग के पास अभी तक जानकारी का अभाव है और नहीं कर पाता है,
0: जानकारियों का अभाव है। हाँ।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और बहुत सारे बच्चे लोग को ये ऐसा पता भी नहीं कि ऐसा भी कोर्स होता है।
0: जी,
1: जैसे हुआ बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब जो कोर्स हैं ये बहुत ही उपयोगी कोर्स है। और इस बच्चे ये सब कर करके बच्चे निश्चित रूप से अपने जो सपना देखा है उसके तरफ बढ़ जाता है।
0: जी।
1: तो ऐसे ऐसे कोर्स को ऑप्ट करना चाहिए। सिर्फ आईएससी बायोलॉजी और बीएससी करने से उसके जो टेक्निकल कोर्स अगर नहीं करेगा तो आज के समय में उसका बहुत महत्व नहीं रह गई।
0: जी।
1: तो निश्चित रूप से किसी भी बच्चे को अगर डॉक्टर नहीं बन पाया है या डॉक्टर की चाह नहीं है, उतना उसके सामर्थ्य नहीं है, उतना मार्क्स नहीं ला पाता है, उतने पैसे का जुगाड़ नहीं हो सकता है, तो निश्चित रूप से उसको सेकंड ऑप्शन चुनना चाहिए पैरामेडिकल का कोर्स। और पैरामेडिकल में देखिए दो तरह से होते हैं, एक डिप्लोमा कोर्स होता है, एक डिग्री कोर्स होता
0: जी,
1: है
0: जी।
1: तो डिग्री कोर्स जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है, आसपास होता है। तो ऐसे बच्चे को निश्चित रूप से वह कोर्स चुनना चाहिए और उसमें पढ़ाई कर करके अपने करियर को बनाना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: जिसमें से मैंने पहले भी बताया कि बीपीटी हुआ, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हुआ, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ, ये भी बैचलर का कोर्स है, और उसके बाद बीएचएम हुआ, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट हुआ। तो इस तरह से ये जो कोर्सेज है जो बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है और लगातार बहुत मांग हो रही है इसकी, और ऐसे ऐसे जो कोर्स है वो आगे और भी मांग होते जाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।
0: जी, एक बात बताइए, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी तो हमेशा से बहुत वाइब्रेंट रहा है ना, इसकी मांग इधर कुछ कम हुई है क्या?
1: बिल्कुल नहीं, इसकी मांग कभी कम भी
0: तो
1: नहीं होगी।
0: मार्केट में इस तरीके से क्यों बातें फैल रही हैं कि फिजियोथेरेपी के कोर्स की यूटिलिटी नहीं रह गई?
1: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, फिजियोथेरेपी की यूटिलिटी कभी कम नहीं हो सकती है, जिस तरह से मेडिकल की यूटिलिटी कम नहीं हो सकती है और जिस तरह से नर्सिंग की यूटिलिटी नहीं कम हो सकती है, उसी तरह से फिजियोथेरेपी की भी यूटिलिटी कम नहीं होगा, और जहां तक और बढ़ ही रही है।
0: हाँ हाँ।
1: मोटापा बढ़ रहा है, घुटने का ये सब जितने भी बीमारियां है सब बढ़ रही है, तो उसकी उसको ठीक करने वाले को कम कैसे माना जा सकता है?
0: नहीं माना जा सकता है, लेकिन लोग कह रहे हैं इसलिए हमने पूछ लिया।
1: नहीं तो उसको जानकारी का अभाव है इसलिए ऐसा कह रहे हैं।
0: तो जानकारी दीजिए युवा साथियों को, थोड़ा डिस्करेज कर रहे हैं।
1: निश्चित रूप से बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब कोर्स जो है अभी और वाइब्रेंट होगा और ज्यादा होगा, यहाँ तक कि डिप्लोमा छोड़ करके लोग डिग्री में कर रहे हैं
0: जी।
1: और डिप्लोमा पहले चलता था, अब डिग्री आई है तो डिग्री सब लोग कर रहे हैं, डिप्लोमा तो किए हुए हैं ही, डिग्री लोग करना चाहते हैं। जो बच्चे आता है कि कहता है कि नहीं, तो अगर हमारा 2 साल बर्बाद होगा ही, 2 साल करने का मतलब लगेगा ही, तो 2 साल और कर करके डिग्री कर लेते हैं।
0: हाँ।
1: और डिग्री करने से वो जो होता है राष्ट्र स्तर पर वो अपने आप को

0: बिखेर लेता है और उस तरह से वो जहाँ चाहे जिस विधा में चाहे वो जाकर करके आगे बढ़ सकता है।
1: तो फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी एक बार थोड़ा फिर से दे दीजिए। जैसे जनरल कोर्स में जर्नलिज्म को लोग बर्बाद कर रहा है, बदनाम कर रहा है कि इम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसी तरीके से फिजियोथेरेपी की भी चर्चा हो रही है, तो उसके बारे में एक बार फिर से विस्तृत जानकारी।
0: एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ की देखिए हर समय हमेशा रहा गुरुकुल शिक्षा का भी ले लीजिए या कोई भी शिक्षा का ले लीजिए, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सभी जगह मांग है
1: जी।
0: और जनरल एस्पेक्ट में कहिए तो अगर आप उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे लेते हैं और निश्चित रूप से आप पढ़ लेते हैं तो आपकी मांग कभी घटेगी नहीं। और हेल्थ प्रोफेशनल तो एक ऐसा कोर्स है कि नौकरियां आपके पीछे पीछे चलती है, बाकी सब में तो उसको बुलाया जाता है लेकिन ये हेल्थ प्रोफेशनल है कि आपके पीछे आपकी नौकरियां चलती है। अगर आप अच्छा करते हैं तो यू वेलकम टू एवरी हॉस्पिटल, अगर आप अच्छा नहीं करते हैं तो एक सीट फ्रॉम एवरी हॉस्पिटल, ये तो निश्चित रूप से है कि अगर आप अच्छा नहीं करेंगे अपने अपने प्रोफेशन में तो आपको कहीं मांगे नहीं होगी। अगर आप बेहतर अच्छा करेंगे, जितना और अच्छा करते जाएंगे उतना और अब मांग बढ़ते जाएगी
1: जी।
0: तो ये तो निश्चित रूप से ये परंपरा रही है और हेल्थ का। और जहां तक रही बात की टोटल की बात है तो टोटल देखिए कि लगातार जो ये हमारा जो खान पान आहार विहार पर्यावरण ये सब जो है लगातार दूषित होते जा रहा है, इससे बीमारियां भी तरह तरह की बढ़ रही है, तो इसको देख रेख करने वाले भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से अगर देख रेख करने वाले लगातार बढ़ रहे हैं तो आप कम कहां से होंगे।
1: सही।
0: अब फिजियोथेरेपी का इतना एस्पेक्ट बढ़ गया है, जैसे आप खेलों में भी जा सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, सभी जगह कोई ऐसा बताइए कि जहां पर फिजियोथेरेपी की जब आवश्यकता नहीं है, अनुमंडल अस्पताल में, सदर अस्पताल में, खेल के कोई भी क्षेत्र में, अब लगातार खेल की भी संख्या कितनी बढ़ गई है, अब उसमें हर में एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है। अगर इसी प्रकार से देख लीजिए तो लगता है कि हजारों हजार की संख्या आ जाती है।
1: सही सही सही बात।
0: इतने अनुमंडल अस्पताल है, इतने रेफरल अस्पताल है, इतने सदर हॉस्पिटल है, उसके बाद इतने मेडिकल कॉलेज है, इतना एक पूरा विभाग ही है। तो जिस तरह से ऑर्थोपेडिक का नहीं हटेगा, जिस तरह से गायनेकोलॉजी का नहीं हटेगा, जिस तरह से मेडिसिन नहीं हटेगा, उस तरह से ये ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी कैसे हटेगा।
1: सही बात है।
0: और इसकी महत्ता बढ़ते ही जाएगी, तो इसलिए बिल्कुल बिल्कुल अगर कोई कहता है तो ये बेकार बातें हैं, वो उसको पढ़ने की जरूरत है और अच्छा से पढ़ने की जरूरत है। मैं आग्रह यही करता हूँ, मैं हमेशा इम्फेसिस करता हूँ सभी बच्चों को कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आपकी नौकरी आपकी रखी हुई है कोई भी विषय हो। जैसे अगर हम लोग मैट्रिक का ही उठा लेते हैं तो मैट्रिक में 120 बच्चे होते हैं तो सबका मार्क्स एक समान तो नहीं आता है राजेश जी,
1: बिल्कुल नहीं।
0: लेकिन जो अच्छा से पढ़ता है निश्चित रूप से उसका मार्क्स अच्छा रहता है और वो उसी में से कुछ लोग और अच्छे कर जाते हैं। तो मैं ध्यान यही केंद्रित करना चाहता हूँ बच्चों को कि आओ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो और कुछ नहीं, और तुम्हारा भविष्य यही से निर्णायक हो जाएगा और तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम अपने मुकाम पर पहुंच जाओगे। जो तुम्हारे गार्जियन तुम्हारे परिवार ने तुमको सपना देखा, जो सोसाइटी ने तुम्हारे लिए सपना देखा है, उसको साकार करो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और आगे बढ़ जाओ।
1: पैरामेडिकल है पारस, ये कार्यक्रम चल रहा है, मैं हूँ आपका अपना राजेश और डॉक्टर NP प्रियदर्शी जो है ना इस कार्यक्रम में बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से। कितने लोगों ने इस कार्यक्रम को सुनकर ऑप्ट किया प्रोफेशनल कोर्स, चाहे वो पैरामेडिकल के कोर्सेज हो, नर्सिंग के कोर्सेज हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हो, और आज अपने लिए एक अच्छा करियर चुन लिया है, आज भी लोग कर रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चों, आपको हम ये बताना चाहते हैं जिनको करियर निर्माण करना है 1-2-3 साल के अंदर, आपके लिए ये कार्यक्रम बहुत ही उम्दा साबित होगा। नोट करें, अगर अभी से ही आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो डॉक्टर NP प्रियदर्शी से बात करके उसे दूर करें। नंबर नोट करें 9155558888 9155558888 और दूसरा नंबर है 9162413233 9162413233। और अब डॉक्टर प्रियदर्शी, फिजियोथेरेपी में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स, 4 साल का डिग्री कोर्स, यही है ना
0: जी?
1: इसी में आपको 4 साल तक मेहनत करनी है। श्री राज नर्सिंग में ये है क्या फिजियोथेरेपी उच्च स्तर का
0: 2023 से
1: पढ़ाई लिखाई के बारे
0: जी,
1: में
0: जी, जी।
1: पढ़ाई लिखाई के बारे में
0: बिल्कुल, मैं तो पहले ही इसके पहले भी

0: एपिसोड में मैंने बताया था कि जो आपने चर्चा किया था तो कि पढ़ाई का क्या स्तर रहता, हमने पहले ही बताया था कि हम पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर कब डेवलप करते हैं, जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है तभी हम कोई कोर्स को लॉन्च करते हैं और लोगों और जगह से हम बेहतर रिजल्ट देंगे। ये हमेशा लगातार 10 साल से हमारा ये कीर्तिमान रहा है और आगे भी कीर्तिमान रहेगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ।
1: एंड जॉब अपॉर्चुनिटी, फिजियोथेरेपी करके नौकरी या फिर स्व व्यवसाय,
0: उसकी इच्छा उसकी इच्छा, अगर वो नौकरी में जाना चाहे तो नौकरी में जाए, उसको स्व व्यवसाय करना है तो स्व व्यवसाय करे, मल्टीनेशनल में जाना चाहे तो मल्टीनेशनल जाए, एब्रॉड जाना चाहता है तो एब्रॉड जाए,
1: कहीं
0: उसकी
1: भी
0: इच्छा, कहीं भी नौकरियां सभी जगह है,
1: नौकरियां सही जगह है, डॉक्टर साहब ने कहा। इसीलिए ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि लोग मार्केट में क्या कह रहे हैं, डॉक्टर साहब ने कहा जिस तरीके से डॉक्टर्स की कभी मांग कम नहीं होगी, नर्सिंग की कभी मांग कम नहीं होगी, उसी तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट की मांग कभी भी कम नहीं होगी, इस बात को सोचने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में क्या है पहले ये बताइए और फिर आगे चर्चा करेंगे।
0: देखिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी को सीधे शब्दों में समझिए तो ये फिजियोथेरेपी का अपना भाई है, अपना भाई है, दोनों का बंटवारा हो गया।
1: क्या पढ़ाई होती है?
0: दोनों में सब कुछ सामान्य है, सब कुछ समान है, उसमें से बस यही डिफरेंट है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो तो करते ही हैं, जितने भी विधा है हाइड्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी सारे देते ही हैं, उसमें ऐड क्या हो गया ऐसा समझिए, ऐड हो गया मतलब जो जिस लायक का है उसके लायक का कुछ रोजगार के बारे में बता देना उसको।
1: अच्छा,
0: ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ कि ऑक्यूपेशन बना देना,
1: ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन व्यवसाय
0: उसके लायक बना देना। जैसे मान लिया कि कोई पढ़ा लिखा अगर हो गया है, अपंग हो गया है, तो उसको कुछ कंप्यूटर चलाने, कुछ और भी काम जो जिसमें उसकी रुचि है,
1: जॉब ओरिएंटेशन,
0: जिसमें उसकी रुचि है उसके लायक उसको बना देना।
1: अच्छा,
0: अगर मान पैर कट गया तो वो दौड़ तो नहीं सकता है, जा तो नहीं सकता है, लेकिन वो क्या कर सकता है, उसको और क्या क्या ऑक्यूपेशन है जिसको वो समझाता है, बताता है और इस पर उसको आगे बढ़ा देता है, तो यही ऑक्यूपेशन थेरेपी है। और ये आजकल आज जो है, आज चूंकि हम लोग के नजरों में नहीं आता है, लेकिन एक जगह कलेक्टिवली अगर देखते हैं तो रोज इस भागदौड़ की जिंदगी में कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितने अपंग हो जाते हैं, कितने क्या हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से उसको जिस लायक है उस लाइक को बनाने का काम ऑक्यूपेशनल थेरेपी का है।
1: यही काम ऑक्यूपेशनल थेरेपी का है, बिल्कुल। ये फिजियोथेरेपी, हाँ, जो है ना उसका सगा भाई है ऑक्यूपेशनल थेरेपी और उससे कुछ कदम आगे है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज वक्त नहीं है, आज हमने फिजियोथेरेपी के बारे में जो भ्रांतियां फैली थी कि जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, नीचे की ओर जा रहा है, पढ़ाई करना मुश्किल है, ये सारी चीजें आपने दूर की कि ये सारी चीजें गलत है, इस पर कहीं से विचार करने की जरूरत नहीं है, जमकर पढ़ाई कीजिए, आगे सोचिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में आगे हम बातचीत करेंगे अगले आने वाले एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, लगातार हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर बहुत ही उम्दा है, आप इसमें अपना करियर आजमा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे तो नंबर नोट कर लें, एक बार फिर से बता रहे हैं 9155558888, 9155558888 ये पहला नंबर। दूसरा नंबर है 9162413233, 9162413233 ये नंबर है, इस पर बात कर लीजिए और इसे कहीं से विज्ञापन नहीं समझिए, ये सहूलियत है आप युवाओं के लिए। फिलहाल चलने का वक्त हो गया, राजेश आज निकलता है, अगले बुधवार को फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
3: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस, हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम। गुड इवनिंग रोहतास।

स्वागत है आप सभी का इस सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम में। और आइए जान लेते हैं, हरा भरा होगा रोहतास जिला। वन विभाग ने बनाया 10 लाख पौधे लगाने का रोड मैप। हरित आवरण के विस्तार और पर्यावरण संरक्षण के तहत जिले को अधिक से अधिक हरा भरा बनाने के उद्देश्य से वन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए व्यापक पौधारोपण अभियान की तैयारी पूरी कर ली है। इस वर्ष जिले में 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह लक्ष्य पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 2 लाख अधिक है। वन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न नर्सरियों से पौधे तैयार कर लिए गए हैं और मानसून की शुरुआत के साथ ही बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान शुरू किया जाएगा। बताया जाता है कि जुलाई माह में पौधारोपण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस अभियान के तहत कैमूर पहाड़ी क्षेत्र से लेकर जिले के मैदानी इलाकों तक विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले में लगभग 8 लाख पौधे का रोपण किया गया था। पौधारोपण अभियान को मिले सकारात्मक परिणामों को देखते हुए इस बार लक्ष्य बढ़ाकर 10 लाख पौधे कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि लगातार बढ़ते तापमान, पर्यावरणीय चुनौतियों और वन क्षेत्र के संरक्षण की आवश्यकता को देखते हुए इस वर्ष अधिक पौधे लगाने का निर्णय लिया गया है। इससे जिले के हरित क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। वन विभाग द्वारा संचालित जिले की 9 नर्सरियों में विभिन्न प्रजातियों के पौधे तैयार किए गए हैं। इन नर्सरियों में महीनों से पौधों की देखभाल की जा रही है ताकि मानसून के मौसम में उन्हें रोपण के लिए तैयार किया जा सके। विभागीय अधिकारियों के अनुसार सभी नर्सरियों में पर्याप्त संख्या में पौधे उपलब्ध है और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पौधों की व्यवस्था भी की जाएगी। कैमूर से मैदानी क्षेत्रों तक चलेगा अभियान। जिले के भौगोलिक दृष्टि से विविधताओं से भरा हुआ है। एक ओर कैमूर की विशाल पहाड़ियां हैं तो दूसरी ओर उपजाऊ मैदानी क्षेत्र। वन विभाग ने दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग रणनीति तैयार की है। कैमूर वन क्षेत्र और पहाड़ी इलाकों, सड़क किनारे, सरकारी कार्यालय परिसरों, विद्यालय एवं महाविद्यालय परिसरों, पंचायत भवनों और सार्वजनिक स्थलों, नदी एवं जल स्रोतों के किनारे, खाली सरकारी भूमि पर, सामुदायिक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पौधारोपण किया जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि विभिन्न क्षेत्रों में पौधारोपण से पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ भूक्षरण रोकने और जल संरक्षण में भी मदद मिलेगी। विभिन्न प्रजातियों के लगाए जाएंगे पौधे। वन विभाग इस वर्ष केवल संख्या पर ही नहीं बल्कि पौधों की विविधता पर भी विशेष ध्यान दे रहा है। अभियान के तहत फलदार, छायादार, पर्यावरणीय दृष्टि से उपयोगी प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। नीम, पीपल, बरगद, शीशम, सागवान, अर्जुन, जामुन, आम, कटहल, करंज, अमरूद, सहजन आदि नर्सरी में उगाए गए हैं। वन विभाग ने रोहतास को ग्रीन जिला बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत न केवल पौधारोपण किया जाएगा बल्कि लगाए गए पौधों की नियमित निगरानी और संरक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। बड़े पैमाने पर पौधारोपण से वायु प्रदूषण कम होगा, तापमान नियंत्रण में मदद मिलेगी और भूजल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा वन्य जीवों के लिए बेहतर प्राकृतिक आवास उपलब्ध भी हो सकेगा। और श्रोताओं, वाइए कार्यक्रम में सुनते हैं एक प्यारा गीत फिल्म मासूम से।

0: पैगाम, सुनहरा रंग, मधुर महक, मन को भाए अपार, जरदालू मालदा का मेला सजा हमारा बिहार, दुधिया गुलाब खास, कृष्ण भोग है स्वाद, एक से बढ़कर एक किस्म रहेगी चिरयाद।
1: बामेती पटना में 3 दिवसीय भव्य आयोजन, 19, 20, 21 जून, सादर है आमंत्रण।
0: अब खेती हुई स्मार्ट, देखें तकनीक का कमाल, QR और AI से सुलझे हर सवाल, ड्रोन ऐप और विज्ञान आम का है नया अंदाज, परंपरा में है जड़े गहरी पर डिजिटल का आगाज,
1: बच्चों हेतु चित्रकला और क्विज की भरमार, आम खाइए इनाम पाइए है यह त्योहार।
0: परिवार सहित पधारिए, मित्रों को भी लाइए, प्रवेश है पूर्णतः निशुल्क, उत्सव का आनंद उठाइए, हर आम की है विशेष पहचान, आम महोत्सव बढ़ाए बिहार की शान, विशेष जानकारी हेतु जाएं horticulture.bihar.gov.in पर। उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: और इस गीत के बाद
3: छाया गीत।

is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा को मंजूरी दी। पटना, राजगीर, मां मुंडेश्वरी और वाल्मीकि नगर भ्रमण के लिए उपलब्ध होगी हवाई सेवा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, केंद्र सरकार के सहयोग से मनरेगा की सभी लंबित राशि का भुगतान 30 जून से पहले सुनिश्चित कर दिया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना जिले के नौबतपुर

0: खेत बचाओ अभियान का किया शुभारंभ और मद्य निषेध कारा और परिवहन विभाग में सिपाही तथा कक्षपाल की नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इस योजना के तहत मां मुंडेश्वरी, राजगीर, वाल्मीकि नगर और पटना के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर सैलानियों को घूमने के लिए हवाई सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने हाल ही में लोगों के लिए प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर आगामी 15 जुलाई से हवाई सेवा के माध्यम से भ्रमण कराने की घोषणा की थी। मंत्रिमंडल ने एक अन्य फैसले में बिहार नागरिक सुरक्षा क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग नियमावली 2026 का गठन करने को भी स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत आशुलिपिक के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष हो जाएगी। साथ ही इस पद के लिए परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष के स्थान पर 1 वर्ष हो जाएगी। कैबिनेट ने कुल 29 एजेंडों को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार के सहयोग से मनरेगा की सभी लंबित राशि का भुगतान 30 जून से पहले सुनिश्चित कर दिया जाएगा। श्री चौधरी ने पटना के फुलवारी शरीफ के नदियावा में प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में आश्वासन दिया है।
1: 1 तारीख से जी राम जी का महाअभियान शुरू होने वाला है और उसमें लगभग 10,000 करोड़ का फंड का एलोकेशन हमारे लिए 9 महीने के लिए हुआ है, जिसमें से लगभग 6,700 करोड़ रुपया भारत सरकार देगा और लगभग 3,000 से अधिक करोड़ रुपया हम राज्य सरकार से देंगे।
0: इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि शीघ्र ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का शिलान्यास करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोइलवर से भागलपुर तक 17,000 करोड़ रुपए की लागत से 83 किलोमीटर लंबे गंगा पाथवे का निर्माण कराया जाएगा। श्री चौधरी ने राजधानी पटना में विकसित होने वाले नए टाउनशिप का नाम पाटलिपुत्र करने की भी घोषणा की,
1: क्योंकि पटना का पहचान एक नए शहर पाटलिपुत्रा के नाम से होना चाहिए। कई लोग मुद्दा बनाते हैं कि ये मगध का राजधानी था, इसका नाम पाटलिपुत्रा था, इसका नाम बदल देना चाहिए। मैंने तो इससे बड़े पटना की कल्पना की है और उसका नाम भी पाटलिपुत्रा रखने का काम किया है साहब।
0: इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिविर में पहुंचे लोगों की शिकायतें सुनी और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। समारोह में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना जिले के नौबतपुर स्थित बीज गुणन प्रक्षेत्र में खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। इस अवसर पर श्री चौहान ने किसानों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना। इस मौके पर किसान कृष्ण कुमार ने केंद्र सरकार की किसानों से सीधे संवाद के पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: जब तक किसानों के बीच जाकर के किसान की बात नहीं सुनेंगे कोई भी मंत्री, तब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाएगा। ये पहल बहुत बहुत बहुत बढ़िया से सुनी, लेकिन हम किसानों की बात को सुना और हम भी जो भी बातें थी किसानों से संबंधित उस पर उन्होंने सहमति भी जताया।
0: एक अन्य कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि बिहार में कृषि के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली बनाई जाएगी। पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि छोटे किसानों की संख्या अधिक होने के कारण यह मॉडल यहां सफल रहेगा।
3: बिहार में ज्यादातर किसान हमारे छोटे किसान हैं। छोटे जमीन के टुकड़े में कैसे फायदे की खेती करें, इसके लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल बिहार में हम अपनाएंगे। अब एक साइंटिफिक रोड मैप और बनाने का हमने फैसला किया है कि जिसमें बिहार की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से यहाँ कौन से फल, कौन सी सब्जियाँ, कौन सी उपज, लेकिन उसके साथ साथ फूलों की, फलों की, सब्जियों की खेती के साथ साथ हम बाकी और क्या गतिविधियाँ खेत पर कर सकते हैं ताकि छोटे किसान की आजीविका चल सके, उस पर भी विस्तार से बातचीत।
0: इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने श्री चौहान से प्रदेश के कृषि क्षेत्र

0: में आदर्श केंद्र की स्थापना का आग्रह किया। पटना में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने श्री चौहान से बक्सर और लखीसराय में टमाटर तथा प्याज के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का आग्रह किया। मद्य निषेध, कारा और परिवहन विभाग में सिपाही तथा कक्षपाल की नियुक्ति के लिए आज दोनों पालियों की परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गई। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती से प्राप्त जानकारी के अनुसार परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 544 केंद्र बनाए गए थे। इधर रेलवे ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आज 25 विशेष ट्रेनों के संचालन की व्यवस्था की है। ये ट्रेनें पटना, बक्सर, गया, सोनपुर, सहरसा, मधुबनी और बेतिया समेत विभिन्न स्टेशनों से परिचालित की जा रही हैं। रेल प्रशासन ने अभ्यर्थियों से समय से पहले स्टेशन पहुंचने और निर्धारित ट्रेनों का उपयोग करने की अपील की है। रेलवे ने मीडिया में प्रसारित उन खबरों को निराधार बताया है जिनमें पाटलिपुत्र स्टेशन पर ट्रेन में सवार एक छात्र की मौत की बात कही गई है। भारतीय रेलवे ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वीडियो में दिखाई देने वाला व्यक्ति किसी स्वास्थ्य समस्या या थकान से ग्रस्त प्रतीत हो रहा है। रेलवे के अनुसार सभी रिकॉर्ड की जांच कर ली गई है और पाटलिपुत्र स्टेशन पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
1: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
2: कंडक्टेड इन अ फ्लॉलेस मैनर।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक सैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मानसून की सक्रियता में कमी आने से 1 जून से अब तक सामान्य से 32% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली मानसून की दोनों शाखाएं कमजोर हैं। बारिश की कमी के कारण पटना समेत 7 जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 42.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ लगातार दूसरे दिन राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। बक्सर का अधिकतम तापमान 41.5, डेहरी का 41, गया जी का 40.7, शेखपुरा का 40.6, औरंगाबाद का 40.5, पटना का 40.4 और छपरा का अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान अररिया, कैमूर, रोहतास, सुपौल, पूर्णिया, भागलपुर और मधेपुरा जिले के कुछ स्थानों पर आंधी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। प्रदेश के 13 महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम AEDP की शुरुआत हो रही है। राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में इस संबंध में आज पटना में बैठक हुई। बैठक में 5 विश्वविद्यालयों के कुलसचिव तथा 13 महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य मौजूद रहे। सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स एंड पॉलिसीज हैदराबाद के संस्थापक सदस्य RS जुलानिया ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए इस पाठ्यक्रम को शुरू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस पाठ्यक्रम के लिए चयनित महाविद्यालयों में 7 विषय चुने गए हैं।
1: बिहार राज्य ने 13 कॉलेजेस चुने हैं जहां 7 सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनमें ये प्रोग्राम चलाए जाएं। एक बैच में 40 से 60 बच्चे हो सकते हैं।

0: और दो साल क्योंकि यहां चार साल का प्रोग्राम है इसलिए ढाई से तीन साल उनके क्लासरूम में लर्निंग होगी और आखिर का मैक्सिमम डेढ़ साल और मिनिमम एक साल उद्योग जगत में उसको अप्रेंटिसशिप मिलेगी। क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, इसके लिए हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर मटेरियल डेवलप करा करके डाल दिया।
1: विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने गया को खेल अवसंरचना और प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। खेल विभाग के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में श्री कुमार ने गया जिले तथा मगध प्रमंडल में खेल अवसंरचना के विकास, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और खेल सुविधाओं के विस्तार की जानकारी ली। इस बैठक में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। शिवहर जिले के पुलिस लाइन में आज प्रशिक्षु सिपाहियों के लिए दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 208 आरक्षी सिपाही बिहार पुलिस में औपचारिक रूप से शामिल हो गए। इस दौरान तिरहुत प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक

0: शिवहर जिले के पुलिस लाइन में आज प्रशिक्षु सिपाहियों के लिए दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 208 आरक्षी सिपाही बिहार पुलिस में औपचारिक रूप से शामिल हो गए। इस दौरान तिरहुत प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक चंदन कुशवाहा, जिलाधिकारी प्रतिभा रानी और पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने दीक्षांत परेड की सलामी ली। साथ ही सभी आरक्षियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मुंगेर जिले के असरगंज थाना क्षेत्र के मसूदानपुर कमराय में दो पक्षों के बीच हुए विवाद में 15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय बच्चे के अपहरण और हत्या के मामले में स्थानीय अदालत ने आरोपी विभोर कुमार उर्फ अंकुर कुमार को आजीवन कारावास और ₹10,000 जुर्माना की सजा सुनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा योजना को मंजूरी दी। पटना, राजगीर, मां मुंडेश्वरी और वाल्मीकि नगर भ्रमण के लिए उपलब्ध होगी हवाई सेवा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, केंद्र सरकार के सहयोग से मनरेगा की सभी लंबित राशि का भुगतान 30 जून से पहले सुनिश्चित कर दिया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना जिले के नौबतपुर में खेत बचाओ अभियान का किया शुभारंभ। और मद्य निषेध, कारा और परिवहन विभाग में सिपाही तथा कक्षपाल की नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रसारित।
4: और इस गीत के बाद
5: छाया गीत।

is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पटना जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष रंजन।
1: पटना जिले के सभी 23 प्रखंडों में सहयोग सह जन कल्याण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। फुलवारी शरीफ प्रखंड के नदियामा में आयोजित शिविर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया तथा आम लोगों की समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहयोग शिविर जनता की समस्याओं के समाधान और सरकारी योजनाओं के लाभ को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
2: इस जन कल्याण शिविर के माध्यम से साथियों, ये जो आयुष्मान भारत कार्ड है इसका निर्माण आप जरूर कराएं, जिनका भी छूट गया हो। वैसे 90% से अधिक हमारे जितने परिवार हैं उनके एक प्रमुख साथी का हम लोगों ने आयुष्मान भारत कार्ड बनाने का काम किया है। दिव्यांग कल्याण के लिए योजना चल रही है, उसके भी आवेदन आप दे सकते हैं।
1: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंचे। अपने दौरे के दौरान उन्होंने कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। नौबतपुर में आयोजित खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने किसानों से संवाद किया। इस दौरान कृषि भूमि संरक्षण, टिकाऊ खेती और किसानों के आय बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई। असम के जोरहाट एयरबेस में हुए इन 32 विमान हादसे में शहीद हुए बिहार के 2 वीर सपूतों फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार और अग्निवीर दानिश आलम का पार्थिव शरीर बिहटा एयरफोर्स स्टेशन लाया गया। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की ओर से दोनों शहीदों को सैन्य सम्मान दिया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपने वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीदों की अंतिम घर वापसी पर पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल देखा गया। देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न स्थानों पर राज्य सरकार के मंत्रियों ने मंदिरों में पूजा अर्चना कर प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। वहीं विक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा यज्ञ और हवन का आयोजन किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत युवा संगम के 6ठे चरण में बिहार के विभिन्न जिलों से चयनित 50 छात्र छात्राएं पंजाब के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक भ्रमण के लिए रवाना हुए। IIT पटना में आयोजित फ्लैग ऑफ समारोह में राज्य सरकार के मंत्री संजय कुमार ने युवाओं को रवाना किया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम युवाओं को देश की विविध संस्कृति, इतिहास और विकास की प्रक्रिया को समझने का अवसर प्रदान करेगा।
3: यहाँ आने में गर्व महसूस हो रहा है। हमारे बिहार के कई अन्य जिलों के 50 छात्र छात्राएं चयनित होकर पंजाब में जा रहे हैं। हमारे बिहार की संस्कृति को, पंजाब की संस्कृति को एकजुट करने की भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये मिशन है। एक राज्य से दूसरे राज्य के छात्र आपस में अन्य राज्यों में जाकर वहाँ अपने राज्यों का साझा करें। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बच्चे आगे बढ़े।
1: उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने हाल ही में बेहटा स्थित इरेडिएशन सेंटर और इनलैंड कंटेनर डिपो का दौरा किया। उन्होंने वहां खाद्य उत्पादों की सुरक्षित पैकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण और आधुनिक तकनीकों का अवलोकन किया। अधिकारियों ने बताया कि मखाना, लीची और जर्दालू आम जैसे बिहार के प्रसिद्ध उत्पादों की वैज्ञानिक पैकेजिंग से किसानों को लाभ मिल रहा है तथा राज्य के निर्यात को भी बढ़ावा मिल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार के 7 निश्चय 3 कार्यक्रम के तहत पटना जिले के सभी 23 प्रखंडों में एक एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिलाधिकारी त्यागराजन SM ने इन विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक प्रयोगशालाओं, समृद्ध पुस्तकालयों और डिजिटल शिक्षण संस्थानों के विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सभी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। इधर पटना में भीषण गर्मी और लू का असर लगातार बना हुआ है। जिले में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 5 तक की पढ़ाई 20 जून तक स्थगित कर दी है। मौसम विभाग के अनुसार 20 जून के बाद मौसम में बदलाव आने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है।
0: अभी आप सुन रहे थे पटना जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता आशीष रंजन।

0: FM 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, भाई सुनते हैं फोन इन फरमाइश कार्यक्रम हेलो मनपसंद।
1: हेलो

0: हेलो मन पसंद, स्वागत है आप सभी का हमारे इस फॉरेन फार्मेसी कार्यक्रम में। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त लाल बहादुर। नमस्कार श्रोताओं, फोन की घंटी बजनी शुरू हो गई है, देखते हैं यह पहला कॉल किनका है। हेलो मन पसंद।
1: हेलो नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोना मार्ग से लतीफ अहमद रैना।
0: लतीफ अहमद रैना बोजी बोल रहे हैं कश्मीर से, क्या हालचाल है?
1: बस मैं तो अपनी खेती बाड़ी करता हूँ और यहाँ कुछ बागवानी केसर है, खुबानी है, बहुत यहाँ
0: ठीक है, अच्छी बात है। किस चीज की खेती बाड़ी है आजकल?
1: आजकल मक्का और धान लगा है सर।
0: अच्छा, मक्का अभी तैयार नहीं हुआ है?
1: नहीं तैयार नहीं हुआ, लगभग अप्रैल में यहाँ पे बुआई करते हैं।
0: अच्छा,
1: सितंबर आखिरी सितंबर हफ्ते में यहाँ काटते हैं मक्का, धान भी काटते हैं सितंबर आखिरी हफ्ते में।
0: ठीक है, लगे रहिए खेती बाड़ी में। कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज हमारे इस कार्यक्रम में?
1: प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, कभी मरते नहीं।
0: जी बहुत खूब।
1: हाँ और मेरे साथ ही,
0: हाँ लीजिए नाम।
1: शेख हसन जफर वहीं का लिस्टर एक है, वो हमें दोस्त है।
0: अपने दोस्त के साथ सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो मनपसंद,
1: हेलो मनपसंद, मैं धनेर से बोल रहा हूँ सर। नूरे नजर धनेर गांव से बोल रहा हूँ। दर्जी
0: नूरे नजर जी क्या करते हैं?
1: का काम करते हैं, टेलर मास्टर का काम करते हैं और रिपेयरिंग करते हैं सिलाई मशीन।
0: दर्जी का काम मैंने जेंट्स करते हैं या लेडीज?
1: नहीं, मैं जेंट्स करता हूँ।
0: कोट पैंट वगैरह भी सिलते हैं?
1: मैंने कोट पैंट का काम, हाँ पैंट शर्ट का काम कर लेता हूँ, कोट का काम नहीं करता हूँ,
0: अच्छा कोट।
1: पैंट शर्ट का काम कर लेता हूँ। ये गांव है, धनेज है, रोहतास जिले में पड़ता है।
0: हमारे और कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं?
1: कार्यक्रम तो मशीन पर बैठे रहते हैं, आप शुरू करते हैं वो नमस्ते रोहतास से शुरू करते हैं, तो उसमें तो पूरा 7:30 से 8 बजे तक बढ़िया से सुनते हैं, इसलिए तो बढ़िया बढ़िया उसमें नॉलेज की बात होती है।
0: हाँ, वो हम लोग का इन्फॉर्मेटिव मैंने सूचना परक कार्यक्रम है। चलिए अच्छी बात है,
1: हाँ, प्रोग्राम तो दिन भर ही प्रोग्राम बढ़िया आता है, अब क्या कहना है प्रोग्राम के बारे
0: यानी कि रेडियो बजते रहता है, आपका काम होते रहता है।
1: में। हाँ, बजते रहता है, हम काम करते रहते हैं, सुनते रहते हैं और बहुत लगाव रखते हैं। आज ही नहीं, बहुत नहीं तो हम
0: किस गाने की फरमाइश है आपकी?
1: आज हम सुनना चाहते हैं वो जीवन जो एक फिल्म है, राज खन्ना का है, वो कबूल है।

0: और मुकेश जी क्या करते हैं?
1: हम गवर्नमेंट एम्प्लाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाई है सर।
0: कौन पद पे?
1: डिफेंस,
0: डिफेंस। चलिए ठीक है, आप लोग की बदौलत देश सुरक्षित है। मध्य प्रदेश में कहाँ आपका निवास स्थान हुआ?
1: हम तो है बिहार के सर, मुंगेर जिला के ग्राम बड़े गोविंदपुर के रहने वाले, यहाँ जॉब करते हैं एमपी में, मध्य प्रदेश में।
0: तो ठीक है मुकेश भाई, आकाशवाणी आप सुनते हैं और प्रोग्राम इसके अलावा?
1: हाँ, इस आपका जो 7:50 में एक कार्यक्रम आता है शाम को, जो भोजपुरी फिल्म संगीत, अभी भोजपुरी फिल्मों से बजाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। शाम को 5:10 में भक्ति संगीत का कार्यक्रम आता है, वो भी अच्छा लगता है। तो मतलब कुल मिला के टाइम सुबह से 8:30 तक ड्यूटी रहती है, सुबह जब भी टाइम मिलता है आपके कार्यक्रम को सुनते रहते हैं न्यूज ऑन AI मोबाइल ऐप पे।
0: जी मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस कार्यक्रम में कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: आज सुना दीजिएगा तड़ी पार फिल्म का गाना, आज पहली बार दिल की बात की है।
0: क्या बात है, तो चलिए मुकेश जी, आपके लिए हम भेज रहे हैं जबलपुर में आप ही के पसंद का ये गाना।

0: हेलो मनपसंद।
1: नमस्ते
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सर। बोल रहे हैं आकाशी सासाराम। जी
0: आकाशी सासाराम से बोल रहे हैं। निसार, क्या करते हैं निसार भाई?
1: तैयारी करते हैं कॉम्पिटेटिव।
0: चलिए, मेरी शुभकामना है कि आप जल्दी सफलता प्राप्त करें। कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: अर्जुन पंडित,
0: अर्जुन पंडित फिल्म का कौन सा गाना?
1: गाना का बोल है हर कदम पर कोई कातिल है,
0: हर कदम पर कोई कातिल।
1: कहाँ जाए कोई।
0: तो ठीक है निसार भाई, हम आपके लिए भेज रहे हैं आपके स्थान पर यही गीत सुनिए।

0: हेलो मनपसंद
1: भाई जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन सा आप बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सर मैं पंचीराम शर्मा बोल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर जिला डोडा तहसील ठाठरी गांव कांटी से।
0: पंचीराम जी, क्या हालचाल है?
1: बहुत अच्छे हैं सर, आपकी दुआएं हैं।
0: कश्मीर में तो ठंडक है
1: बिल्कुल कश्मीर में ठंडी, अभी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है।
0: जी। क्या करते हैं
1: सर हम खेती बाड़ी करते हैं,
0: अभी? किस चीज की खेती लगी हुई है?
1: अभी मक्कियां लगा रखी हैं हमने और राजमा लगा रहे हैं, अभी राजमा की बुआई चल रही है।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो आप आकाशवाणी सुनते हैं ऐप के माध्यम से?
1: बिल्कुल, मैं मोबाइल ऐप के माध्यम से सुनता हूँ और आपके जो कार्यक्रम होते हैं मुझे बेहद अच्छे लगते हैं। और
0: हाँ, यही पूछ रहा था कि और बाकी कार्यक्रम सुनते हैं हमारे?
1: जी, मैं सुनता रहता हूँ, अगर कभी फुर्सत पाता हूँ तो जरूर मैं आपके कार्यक्रम सुनता हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। तो आज मैंने सोचा आज आपसे मुलाकात की जाए।
0: जी धन्यवाद। तो चलिए, आपका फोन कॉल लग गया, तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: उपकार फिल्म से, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती।
0: जी क्या बात है, बहुत बढ़िया पसंद है। तो चलिए, हम आपको सुनवा रहे हैं आप ही
1: वो
0: की पसंद।
1: मेरे मेरे साथ में मेरे परिवारजन भी सुन रहे हैं, पुष्कर नाथ जी, रिंकू देवी और आपके वहां से शेख जाफर हसन साहब।
0: तो ठीक है, अपने परिवार के साथ सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो मनपसंद। हाँ, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं
1: रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरवा जिला समस्तीपुर से भाई कारी गहकारीपुर।
0: जी? स्वागत है आपका।
1: आप
0: आप
1: लाल बहादुर शाह जी बोल रहे हैं?
0: जी,
1: जी सर जी, आप मुझे बहुत याद करते हैं, आज भी याद किए।
0: सबको याद करता है आपको, आपकी चिट्ठी आती है, आप नियमित श्रोता हैं।
1: जी, चिट्ठी बार बार भेजते रहते हैं।
0: क्या करते हैं आप?
1: हम तो सर रिटायर कर गए 11 अगस्त में, जो है 11 अगस्त में सेवानिवृत्त हो गए, डिस्ट्रिक्ट कन्वर फोरम में थे सर।
0: आपका रेडियो से बहुत ही लगाव दिखता है। ठीक है, आप हमारे नियमित श्रोता हैं, तो आज इस कार्यक्रम में कौन सा गाना सुनवा दें?
1: आज सुना दे सफर का, जिंदगी का सफर, एक कैसा सफर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं।
0: तो चलिए, कारी रायकारी जी, आपकी बहुत बढ़िया पसंद है, हम आपको सुना रहे हैं आप ही की पसंद पर।

0: हेलो मनपसंद। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: सर प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से। मैं
0: क्या हाल चाल है?
1: बहुत अच्छा हूँ, और अभी हमारे खेतों में ट्रैक्टर चल रहे हैं
0: किस चीज की खेती होनी है?
1: जी। अभी खेतों को समतल बनाया जाएगा और बरसात होने पर सोयाबीन की फसल लगाई जाती है।
0: सोयाबीन की?
1: हाँ जी, और आपको बताऊँ, जैसे कि भरपूर सिंचाई के लिए पानी इकट्ठा हो जाता है, हमारे यहाँ पे कुएं बनाए हुए हैं, तालाब है, नदियाँ है, इसमें पानी पूरा भरा जाता है बरसात का।
0: अभी तो मौसम धान की खेती का भी है, कि आपके यहाँ धान की खेती नहीं होती है?
1: नहीं, हमारे यहाँ पे सोयाबीन की फसल लगाई जाती है, और इसकी कटाई होने के बाद में फिर गेहूं और लहसुन की फसल लगाई जाती है।
0: अच्छा,
1: जब सिंचाई के साधन है हमारे यहाँ पे उपलब्ध, खेत में मतलब कुएं बना रखे हैं कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों ने ट्यूबवेल बना रखे हैं, और मतलब नदी से भी सिंचाई होती है कुछ लोगों को।
0: अच्छी बात है। हमारे इस कार्यक्रम में आपकी कौन सी मनोकामना पूरी करें?
1: फिल्म का नाम रहेगा बरसात और गाने के बोले, इसमें एक बरसात वाला गाना है ना सर, वो सुना दीजिएगा आप।
0: अच्छा, बरसात फिल्म का, वर्षा वाला गाना।
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: तो चलिए प्रेम सिंह जी, हम आपको सुनवा रहे हैं यही गीत।

इस गाने के साथ ही आज का हेलो मनपसंद कार्यक्रम अब समाप्त होता है। जिन श्रोताओं का फोन कॉल आज शामिल नहीं हुआ है वो अब हम शामिल करेंगे हेलो मनपसंद कार्यक्रम के शेष भाग में, जो प्रसारित होगा शनिवार को शाम 7:50 पर। श्रोताओं, हेलो मनपसंद कार्यक्रम के लिए हम रिकॉर्डिंग करते हैं प्रत्येक बुधवार को पूर्वाह्न 11 से 12 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0618422130, 0618422130। तो इस नंबर पर आप अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करा सकते हैं। अब दीजिए इजाजत अपने रेडियो दोस्त लाल बहादुर को। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो मनपसंद। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आइए चलते हैं समाचार संध्या के लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: हैं, तब तक के लिए मुझे
1: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का

0: बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
1: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक

0: श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने
2: महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया, जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 7वीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के समक्ष ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की सातवीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
2: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
3: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये परिवर्तनकारी पहलें भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों NRI पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में NRI विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु,

0: पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सुबोध मिश्र।
1: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर ₹94.53 पर बंद हुआ।
0: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं और श्रोताओं बाई सुनते हैं शास्त्रीय गायन का कार्यक्रम सुर सौरभ। संतूर वादन आज हम सुनेंगे पंडित शिव कुमार शर्मा से।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय गायन का कार्यक्रम सुर सौरभ, और इसमें अभी आप सुन रहे थे सितार वादन पंडित शिव कुमार शर्मा से। तबला संगत था अनिंद्रो चटर्जी का और राग था सोनी। और इसी के साथ सुर सौरभ कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। श्रोताओं, अगले कार्यक्रम के लिए आइए आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से हम सुनेंगे आज के फनकार कार्यक्रम।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से।
1: ये कौन है?
2: कबाब में हड्डी।
0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज जिक्र उस अभिनेता का जिसने सन 1955 में बनी बिमल रॉय की फिल्म देवदास में चुन्नी लाल की यादगार भूमिका निभाई थी।
3: हाय हाय, तुम क्यों रुक गई? तुम रुकी क्या, दिल हमारा रुक गया, गम के मारे आसमां भी झुक गया।
1: ए देवदास, तुम कहाँ चले? घबराने की क्या बात है? बैठो बैठो बैठो। हाँ तो शुरू हो जाओ उस्ताद।

0: है क्या, जिंदगी ख्वाब है।
1: मोतीलाल को हिंदी फिल्मों के बेहद सौम्य और शिष्ट अभिनेताओं में गिना जाता है। सन 1910 में शिमला में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम था मोतीलाल राजवंश। सन 1934 में आई फिल्म शहर का जादू से मोतीलाल की अभिनय यात्रा की शुरुआत हुई थी।

0: पर मूवी टोन के बैनर तले बनी इस फिल्म के निर्देशक थे केपी घोष। 30 के दशक में नायिका सविता देवी के साथ फिल्मों में उनकी जोड़ी बड़ी मशहूर रही। इस जोड़ी की कुछ खास फिल्में थीं डॉक्टर मधुरिका, जिसके लेखक थे जाने माने साहित्यकार कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। रंजीत मूवी टोन की फिल्म अछूत, जयंत देसाई की फिल्में दीवाली और शादी, जिनमें मोतीलाल और सविता देवी नायक नायिका थे। बाद में चतुर्भुज जोशी की सन 1941 में आई फिल्म परदेसी और ससुराल में वे अभिनेत्री माधुरी के साथ दिखाई दिए। भारतीय सिनेमा की यात्रा पर शुरुआती दौर में पारसी रंगमंच और नौटंकियों के बेहद कलाबाजी भरे अभिनय की गहरी छाप पड़ी थी। अभिनय में अति नाटकीयता का समावेश होता था, लेकिन कहा जाता है कि मोतीलाल ने हिंदी सिनेमा में स्वाभाविक और सहज अभिनय की शुरुआत की, जिसमें संवादों की अदायगी उतनी नाटकीय न होकर बिल्कुल आम जिंदगी की बोलचाल जैसी होती थी।
1: देखते हो रंगीन जिंदगी, ये वो लोग हैं जिन्हें सड़कों पर बटुए मिले और उन्होंने लौटाए नहीं।
2: इसे मुझे जानने की जरूरत नहीं, मुझे इजाजत दी।
1: क्या काम करते हो?
2: बेकार।
1: नौकरी चाहते हो?
2: मुझे नौकरी मिलेगी।
1: इस पते पे कल चले जाना और मैनेजर साहब से मिलना।
0: जाने माने फिल्मकार महबूब खान की शुरुआती फिल्मों में मोतीलाल नायक रहे थे, जैसे सन 1943 में आई तकदीर, सन 1937 में आई जागीरदार और सन 1938 में आई फिल्म हम तुम और वो। केदार शर्मा की फिल्म अरमान और कलिया में भी मोतीलाल ने काम किया था। सन 1945 में आई थी फिल्म पहली नजर, जिसमें वीणा मोतीलाल की नायिका थी। हम आपको याद दिला दें कि इसी फिल्म से पार्श्व गायक मुकेश की गीत यात्रा शुरू हुई थी। मोतीलाल मुकेश के चचेरे भाई थे और वे ही मुकेश को फिल्म संसार में लाए थे। फिल्म पहली नजर में संगीतकार अनिल विश्वास के निर्देशन में मुकेश ने गाया था अपना पहला नगमा।

सन 1948 में आई फिल्म गजरे, जिसमें सुरैया मोतीलाल की नायिका थी। इस फिल्म के संगीतकार थे अनिल विश्वास और गीतकार गोपाल सिंह नेपाली। ये है सुरैया का गाया नगमा।

सन 1949 में आई रूप शौरी की फिल्म एक थी लड़की, इसमें मोतीलाल की नायिका थी मीना शौरी। आपका ये दोस्त इस फिल्म का एक दुर्लभ गीत ढूंढ कर लाया है खास तौर पर आपके लिए।

0: मोतीलाल की सबसे उल्लेखनीय फिल्म मानी जाती है सन 1952 में आई जेमिनी प्रोडक्शंस की मिस्टर संपत। आर के नारायण के प्रसिद्ध उपन्यास पर बनी इस फिल्म में मोतीलाल ने एक शरीफ बदमाश का किरदार निभाया था।
1: इतना ही नहीं जनाब, मैं कहता हूँ कि आज आधी से ज्यादा दुनिया 420 है। जिधर निगाह उठा के देखिए, चोर बदमाश डाकू नजर आते हैं, और मजा यह है कि देखने में आपसे और हमसे ज्यादा शरीफ मालूम होते हैं। कौन जाने यहाँ हम लोगों में कौन शरीफ है और कौन 420। ना जाने क्या होने वाला है दुनिया का। 8 आने के 12 केले, लूट मची हुई है चारों तरफ, जिसको देखो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। आपने वो केले वाले को मुझे ना बताया, सीधा पुलिस की हिरासत में भेज देता उसको।
2: अच्छा
1: जी हाँ, आप लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्यों हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि मैं थर्ड क्लास पैसेंजर हूँ। जी नहीं, मैं चाहूँ तो फर्स्ट क्लास में सफर कर सकता हूँ, चलून में भी सफर कर सकता हूँ, लेकिन चाहता नहीं। पूछिए क्यों। मैं ये जानना चाहता हूँ कि थर्ड क्लास के पैसेंजरों को क्या क्या तकलीफें हैं, उनको किन किन सहूलियतों की जरूरत है। मैं आप लोगों का हूँ, जनता का हूँ। बाय द वे, जनता एक्सप्रेस के बारे में तो आपने सुना होगा, वो मेरा ही आइडिया था।
2: आपका आइडिया?
1: ऑफ कोर्स।
2: टिकट प्लीज, टिकट, टिकट प्लीज।
1: पास।
2: क्या मैं देख सकता हूँ?
1: ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। मैंने तुम्हें कहीं देखा है, शर्मा जी के घर।
2: कौन शर्मा?
1: अरे भाई, वो तुम्हारे DTS।
2: आपका मतलब वर्मा जी से है?
1: हाँ, वर्मा जी। वर्मा शर्मा में क्या फर्क है, दोनों मेरे जिगरी दोस्त हैं। क्या तनख्वाह मिलती है तुम्हें?
2: 125 रुपए।
1: 125 रुपए और डियरनेस अलाउंस और भत्ता?
2: 50 रुपए।
1: 50 और 125, 175 रुपए मिलते हैं, और दिन रात बैल की तरह से काम करते हो। जुल्म है, ये सरासर जुल्म है। मैं तुम्हारे लिए वर्मा जी से बात करूंगा। क्या नाम है तुम्हारा?
2: राम प्रसाद।
1: मैं वर्मा जी से तुम्हारे लिए बात करूंगा और तरक्की कराने का इंतजाम करूंगा। अब तुम जा सकते हो।
2: थैंक यू सर, थैंक यू।
0: सन 1954

0: कराने का इंतजाम करूं। अब तुम जा सकते हो।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
2: सन 1954 में एचएस रवेल की फिल्म मस्ताना में मोतीलाल ने एक यादगार भूमिका निभाई। इस फिल्म में उनकी नायिका थी निगार सुल्ताना।

0: सन 1955 में आई मोतीलाल के फिल्म जीवन की सबसे यादगार फिल्म देवदास।
1: अरे देवदास, अरे चुनिंदा हो तुम, ये क्या सूरत बना रखी है, पहचाने भी नहीं जाते, क्या खबर है?
2: खबर बस यही है कि जिंदा है। तुम यहाँ कैसे?
1: भाई कलकत्ता हमें राज नहीं आया, दिल्ली में एक नौकरी कर रखी है, उस सिलसिले में दौरे पर जा रहे हैं, आज यहाँ कल वहाँ। तुम कहाँ जा रहे हैं?
2: ये अभी कुछ तय नहीं किया।
1: मकसद?
2: जिंदगी में अब कोई मकसद ही नहीं रहा चुनी बाबू।
1: तुम रहे वही देवदास। अच्छा ठहरो, इतने दिनों के बाद मिले हैं, मुलाकात को रंगीन किया जाए, क्या ख्याल है? अब तो हम सोडा मिलाने के भी कायल नहीं रहे, क्यों फजूल सोडे पर पैसे जाया किया जाए, लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी, थोड़ा पानी मिला दो।
2: मैंने पीना छोड़ दिया है चुनी बाबू।
1: किसी ने अपने सर की कसम तो नहीं दिला दी?
2: ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस नहीं पीऊंगा।
1: अरे अरे, मगर ये गिलास कहाँ ले जाते हो? तुम नहीं पियोगे तो मैं पी लूंगा। अच्छा, ये वो पुराना मर्ज है या कोई नया रोग लगा लिया? अरे कुछ कहते क्यों नहीं?
2: क्या कहूँ चुनी बाबू, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अब तो बस यही अच्छा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगे।
1: तुम्हें क्या दुख है? मैं अच्छी तरह समझता हूँ देवदास, लेकिन ये ना समझो कि सिर्फ तुम ही इस दुख के शिकार। जब इस दुख की आग सीने में भड़कती है तो इसी का सहारा लेना पड़ता है, इसी आग से उस आग को बुझाया जा सकता है, और कोई चारा नहीं।
0: सन 1956 में फिल्म जागते रहो, जिसमें मोतीलाल के अभिनय की मिसाल आज भी दी जाती है।

0: सन 1959 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनाड़ी में मोतीलाल एक कड़क बिजनेसमैन के किरदार में नजर आए थे।
1: आज ये इस घर में हो क्या रहा? तुम बैठो, मैं भी आता हूँ।
2: ये क्या गाना पूछी हो रही तुम लोग?
3: कुछ नहीं चाचा जी, यूं ही बात कर रहे थे। वो राजकुमार नीचे आए हैं ना।
1: तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उसका नाम राजकुमार है?
3: जी मुझे आशा ने बताया।
1: आशा को कैसे मालूम हुआ कि वो कौन है, क्या है, कहाँ काम करता है?
3: जी मैं जी आरती। घबराओ नहीं आशा, चाचा जी तुम्हें काट थोड़ी खाएंगे, बताओ ना।
1: हाँ, डरने की क्या बात है, राजकुमार को तो मैं खुद पसंद करता हूँ, मेरे यहाँ तो काम करता है वो।
3: सॉरी।
1: हाँ मैं क्या कह रहा था, राजकुमार बड़ा काबिल लड़का है, बड़ा होनहार है, बड़ा ईमानदार है।
3: हाँ और बड़े अच्छे चित्रकार भी हैं और गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं।
1: अच्छा,
3: मुझे आशा ने बताया।
0: सन 1959 में दिलीप कुमार और मोतीलाल एक साथ नजर आए फिल्म।

0: 1960 बिमल रॉय की फिल्म परख, मोतीलाल का यादगार अभिनय।
1: ये क्या पागलपन फिर से शुरू कर दिया है तूने? कहाँ था डेढ़ महीने से?
2: तुम्हारे ही काम के लिए गया था मन।
1: मेरा काम?
2: हाँ, तुम्हें याद नहीं, पिताजी की वसीयत के मुताबिक वो 5 लाख रुपए का चेक जो राधा नगर मैंने भेजा था, उस वक्त तुम्ही ने कहा था कि ये रुपया किसी गलत आदमी के हाथ में ना पड़ जाए, इसलिए मैं वहाँ गया। वहाँ जाके पोस्ट ऑफिस में एक डाकिया की नौकरी कर ली और वहाँ से छुट्टी लेके अब अपनी माँ के दर्शन करने के लिए आया हूँ।
1: लेकिन तुझे इस पोशाक में देख कर मुझे बड़ा डर लगने लगता है।
2: डर लगने लगता है क्यों माँ?
1: कुछ ऐसी ही पोशाक में तेरे पिताजी को वो गांव छोड़ना पड़ा था, इसलिए अब तुझे उस जिंदगी के नजदीक जाके देख मेरा रोम रोम कांपता है।
2: माँ तुम बहुत ही भोली हो, मैं को असली डाकिया थोड़ी बन गया हूँ, ये तो एक स्वांग है, देखो तुझे तमाशा क्या क्या होता है।
0: सन 1965 में मोतीलाल ने एक फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था। ये फिल्म थी छोटी छोटी बातें, जिसमें नादिरा उनकी नायिका थी।

ये फिल्म नाकाम रही थी और मोतीलाल को इससे गहरा सदमा पहुंचा था। इसी साल यानी सन 1965 में मोतीलाल का देहावसान हो गया था।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता मोतीलाल पर। अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: नए दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 10 बज चुके हैं और अब आइए सुनते हैं हिंदी एल्बम सॉन्ग का कार्यक्रम रस रंग।

तेरा प्यार मिले ना मिले, ये गीत आप सुन रहे थे आयुष्मान चौधरी और साथियों से। नरेश कुमार का लिखा गीत था और उन्हीं का दिया हुआ संगीत था। अब आइए सुनते हैं क्या खता थी मेरी, ये गीत दिलराज कौर से। सनी असलम का लिखा गीत है, अज़म अली मुकर्रम का संगीत है।

बहुत ही खूबसूरत गीत हम सुन रहे थे, क्या खता थी मेरी, दिलराज कौर की आवाज़ थी और सनी असलम का लिखा गीत था, अज़म अली मुकर्रम का संगीत था और फिर हमने सुना दिल फिर चला है अनुराग सिन्हा की आवाज़ में, आकाश बरनावस का ये गीत था, रामपाल का संगीत था।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

शेखर सुमन की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे। इम्तियाज़ वफा का लिखा हुआ और इम्तियाज़ वफा का ही संगीत निर्देशन था। और श्रोताओं भाई सुनते हैं ये दूरियां, अगला गीत शौर्य सक्सेना की आवाज़ में, रजनीश पाल का लिखा ये गीत है, पार्थ सैनी का संगीत है।

श्रोता, इसी के साथ रसरंग कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम आइए सुनते हैं, हिंदी फिल्मी गीतों का चित्रपट तराने। स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। और श्रोताओं, आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में इंद्रिवर का लिखा गीत, बप्पी लहरी का संगीत और फिल्म है अरमान।

लेकिन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज़ थी, गुलजार का लिखा ये गीत था। और श्रोता आइए सुनते अगला गीत लता मंगेशकर की ही आवाज़ में, बादल फिल्म से, हसरत जयपुरी की रचना है, शंकर जयकिशन का संगीत है।

गबन फिल्म का ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज़ में हसरत जयपुरी का लिखा गीत था, शंकर जयकिशन का संगीत था। और श्रोता इसी के साथ हिंदी फिल्मी गीतों का खूबसूरत कार्यक्रम चितपट तराने अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब आपको कार्यक्रम संबंधी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की आपको जानकारी दे देते हैं। श्रोताओं, कल 5:53 पर वंदे मातरम से कार्यक्रम की शुरुआत होगी और सुबह 6 बजे आप सुनेंगे दिल्ली से हिंदी में समाचार। सुबह 6:05 पर विविध भारती से वंदनवार, चिंतन, श्री रामचरित मानस पाठ, संगीत सरिता और भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे। सुबह 7:30 पर हम लेकर आएंगे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास और दिल्ली से समाचार प्रभात का प्रसारण होगा सुबह 8 बजे, जो हमारे केंद्र से रिले होगा। सुबह 8:15 पर देशभक्ति गीत आप सुनेंगे और सुबह 8:20 पर आप सुनेंगे फरमाइशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम पसंद आपकी। सुबह 8:45 पर पटना से प्रादेशिक समाचार का प्रसारण होगा। सुबह 9:10 पर गीतमालिक का कार्यक्रम में हिंदी फिल्मी गीतों का आप आनंद लेंगे। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे विविध भारती से सुबह 9:30 पर और सुबह 10 बजे दिल्ली से हिंदी में समाचार प्रसारित होगा। सुबह 10:05 पर आप सुनिएगा हिंदी वार्ता साहित्यिक कार्यक्रम में नशा की बढ़ती प्रवृत्ति और हानियां, वार्ताकार होंगे ददन पांडे और वार्ता सुनिएगा एक और बालपन के कितने पास कितने दूर आज के बाल साहित्य, वार्ताकार डॉक्टर चंद्रमा सिंह से। सुबह 10:30 पर लोक माधुरी में भोजपुरी एल्बम लोकगीत आप सुनेंगे और सुबह 10:45 पर रसधार कार्यक्रम में भोजपुरी एल्बम सॉन्ग आप सुनेंगे। दिन में 11 बजे हम चलेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों के लिए और सुनेंगे रंग तरंग कार्यक्रम। शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन और शाम 5:30 पर आप सुनेंगे युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। शाम 6 बजे आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत और शाम 6:05 पर भोजपुरी समाचार बुलेटिन का प्रसारण होगा आकाशवाणी पटना से। शाम 6:10 पर किसानवाणी कार्यक्रम हम लेकर हाजिर होंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इसमें आज की बातें में वार्ता सुनेगा विषय होगा खेती में जाने से पूर्व कृषि यंत्रों की देखभाल। वार्ताकार होंगे डॉक्टर विकास सिंह, भेंटकर्ता होंगे डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी। इस कार्यक्रम में सूत्रधार होंगे शिवकुमार सिंह और कुमकुम और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे संतोष कुमार। इस कार्यक्रम में बहुत कुछ शामिल होगा।

और शाम 6:40 पर सांझ गीत में भोजपुरी फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा और शाम 7:15 पर सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे गुड इवनिंग रोहतास। शाम 7:25

पूरी एल्बम सॉन्ग आप सुनेंगे। दिन में 11 बजे हम चलेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों के लिए और सुनेंगे रंग तरंग कार्यक्रम। शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन और शाम 5:30 पर आप सुनेंगे युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। शाम 6 बजे आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत और शाम 6:05 पर भोजपुरी समाचार बुलेटिन का प्रसारण होगा आकाशवाणी पटना से। शाम 6:10 पर किसानवाणी कार्यक्रम हम लेकर हाजिर होंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। इसमें आज की बातें में वार्ता सुनेगा विषय होगा खेती में जाने से पूर्व कृषि यंत्रों की देखभाल। वार्ताकार होंगे डॉक्टर विकास सिंह, भेंटकर्ता होंगे डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी। इस कार्यक्रम में सूत्रधार होंगे शिव कुमार सिंह और कुमकुम और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे संतोष कुमार। इस कार्यक्रम में बहुत कुछ शामिल होगा और शाम 6:40 पर सांझ गीत में भोजपुरी फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा और शाम 7:15 पर सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे गुड इवनिंग रोहतास। शाम 7:25